सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योगी योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज का दिन यानी कि हमारे शिविर का अंतिम दिन, 30वां दिन, तो सबसे पहले तो हमें आप सभी मिलकर के एक बार ये बताएं कि 30 दिवसीय योग शिविर में नए नए आसन, नए नए प्राणायामों को हमने एक नए शब्दावली के साथ में किया। हर दिन एक नए शब्द की उत्पत्ति के साथ में हमने हर रोज कुछ न कुछ नया ही सीखा है। तो 30 दिवसीय योग शिविर में आपने आकर के क्या क्या सीखा और क्या क्या प्राणायाम आसन किए, यह सभी आप हमें जरूर से बताएंगे। तो सभी का तहे दिल से स्वागत करती है योगिनी समता। तो आइए आज 30वां दिन योग शिविर का हम करेंगे जागरव। जागरव कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी कसरत नहीं है। जागरव का मतलब होता है बहुत ही आसान तरीके से हम किसी भी चीज को जानते हैं। चेतावनी, जाग, सतर्क, सूर्य के लिए एक नाम मतलब होने का जागरव बहुत ही सुंदर बन जाता है। शास्त्रों में जागरव नाम को काफी अच्छा माना जाता है और इसका मतलब यानी चेतावनी, सतर्क होना होता है। जागरव अपने आप में इसीलिए नाम से ही जाना जाता है क्योंकि अगर हम किसी चीज की चेतावनी करते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह जागरव ही है। जागना, सचेत हो जाना। आज के अंतिम दिन यानी कि योग शिविर के अंतिम दिन में जागरव का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि हम आपको किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण आसनों पर, महत्वपूर्ण प्राणायामों पर कुछ चेतावनी भी करने वाले हैं। जागरव, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर एक प्राणायाम, हर एक आसन के साथ यह शब्द जुड़ा होना चाहिए। हम कोई भी आसन करेंगे, कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमें अपने आप में जागरव होना चाहिए। चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वह कोई भी आसन क्यों ना हो। आसनों की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो मंडूक आसन है, सौंदर्य आसन है, चक्रासन है, और भी बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि हम जब हम करते हैं तो हम उसकी सावधानियों को चेतावनी समझ करके अपना लेते हैं। परंतु प्राणायाम जब हम करते हैं तो श्वास से निर्मित होना चाहिए, श्वासों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। श्वास से निर्मित कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम होता है

0: हमें अपने आप में एक जागरूक की स्थिति बना देता है, एक जागरूक को उत्पन्न कर देता है। एक जागरूक की स्थिति इस तरीके से पनपने लगती है जब हम पूर्ण रूप से उसमें लिप्त हो जाते हैं, जान जाते हैं कि यह हमारे लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्राणायामों की श्रृंखला में जब हम आते हैं तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, उद्गीत और भ्रामरी, भस्तिका, बहुत सारे ऐसे प्रणव प्राणायाम, सारे प्राणायामों का जो मिश्रण होता है वह जागरण में समृद्ध हो जाता है। यानी कि हम कोई भी अगर आसन प्राणायाम करते हैं तो हमें उसके प्रति चेतावनी जरूर से होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि हर किसी की व्यक्तित्व, हर किसी का शरीर, हर किसी के शरीर के ऑर्गन्स जो काम करने की शक्ति पर निर्भर करते हैं वह अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से हर एक मनुष्य का रूपरेखा, चलन, बोलने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, खान पान से सभी कुछ अलग होता है, हम यह कैसे मान लेते हैं कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा होता है? एक जैसा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार हर एक आसन, हर एक प्राणायाम हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग ही होता है। कोई आसन, कोई प्राणायाम हमें उतना अंदर से प्रभावी नहीं बना रहा है या प्रभाव से परिपूर्ण है, तो हम जान जाते हैं कि यह आसन हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हम जान जाते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, तब हम मान लेते हैं कि यह हमारे लिए उतना ही ज्यादा पर्याप्त भी है। तो जागरूक का मतलब यही हुआ कि हम किसी भी आसन प्राणायाम को करें तो हमें उसके प्रति पूर्ण चेतावनी रहे साथ में ही काम करना चाहिए। तो आइए हमें आपसे सबसे एक और महत्वपूर्ण बात करनी है, क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है। आप सभी ने 30 दिन तक बहुत ही प्यार सम्मान हमें हर एक आसन प्राणायाम के साथ दिया। नित सवेरे 6 से 7 योग की योग पाठशाला में आकर के आपने नित्य सवेरे योग को अपनाया, आसन किए और उसके बारे में जानकारियां ली। इसी तरीके से आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे योग योगशाला में आकर के, नित प्रतिदिन इसी तरीके से आप आसन प्राणायाम करते रहेंगे। हम एक नई सीरीज के साथ फिर से आएंगे, एक नए योग शिविर के साथ हम फिर से जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमसे अब अगर कोई त्रुटि हो गई हो किसी भी आसन को लेकर के, किसी भी प्राणायाम को लेकर के, तो आप हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। और आगे एक नई प्रेरणा के साथ में हम फिर से, एक नए उत्साह के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योगिनी योगशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आइए आज हम कुछ ऐसे आसनों को आपके सामने बताने जा रहे हैं जो कि अमूमन हम सिर्फ सुनते ही आए हैं, जैसे कि सूक्ष्म आसन, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म आसन योग की बहुत ही सरल और हल्की कसरतें होती हैं, जिन्हें शरीर को तैयार करने के लिए, लचीला बनाने और ऊर्जा प्रभावित करने के लिए किया जाता है, वह सूक्ष्म आसन या सूक्ष्म व्यायाम कहलाता है। सूक्ष्म आसन वे छोटे छोटे अभ्यास हैं जिनसे शरीर की जोड़ों, नसों और मांसपेशियों में जकड़न कम होती है, रक्त संचार बेहतर होता है। ये मुख्यतः वार्म अप की तरह होते हैं और बड़े आसनों की तैयारी कराते हैं। विशेषताएं इसकी बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे पहले सूक्ष्म आसन के बारे में जानना यह इम्पोर्टेंट होता है। आसन सरल होते हैं ये आपको सभी पता है, लेकिन कुछ आसन को आसान बनाने के लिए हम सूक्ष्म व्यायामों को करते हैं। यह हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, अधिक समय और शक्ति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। शरीर को धीरे धीरे सक्रिय बनाते हैं। सूक्ष्म आसनों के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे ग्रीवा आसन, गर्दन को घुमाना, आगे पीछे घुमाना, स्कंद आसन, कंधों को ऊपर नीचे गोल गोल घुमाना, भुजा आसन, हाथों को फैलाना, घुमाना और ऊपर नीचे करना, कर आसन,
1: कलाइयों और उंगलियों को मोड़ना, सीधा करना, कटी आसन, कमर को दाएं बाएं झुकाना और गोल घुमाना, पाद आसन, पैरों को मोड़ना, सीधा करना, एड़ी पंजों पर खड़ा होना, नेत्र आसन, आँखों को अलग अलग दिशाओं में घुमाना। सूक्ष्म आसनों के ये कुछ प्रकार हैं जो कि हम कर सकते हैं। आइए अब हम बताने जा रहे हैं लाभ। शरीर में जकड़न और अकड़न को दूर करने में यह सहायक सिद्ध होता है। रक्त संचार और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करते हैं। बड़े योगासन, प्राणायाम या ध्यान करने से पहले शरीर को तैयार करते हैं। तनाव, थकान और आलस्य को कम करते हैं। छोटे छोटे शब्दों में अगर हम यूं कहें कि सूक्ष्म आसन बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभप्रद होते हैं। छोटे छोटे हल्के व्यायाम पर बड़े योगाभ्यास की तैयारी कराते हैं। हमने अभी जाना कि सूक्ष्म आसन क्या होते हैं। आइए सूक्ष्म व्यायाम के बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि अब हम आराम से आपको बताते चलेंगे। सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया ग्रीवा संचालन यानी कि गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे पीछे, लेफ्ट एंड राइट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना या ग्रीवा संचालन यानी कि गर्दन का व्यायाम कहलाता है। स्कंध संचालन यानी कि कंधे का व्यायाम। कंधों को ऊपर नीचे घड़ी की दिशा में घुमाना यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंधों की जकड़न और तनाव को कम करता है। भुजा संचालन यानी कि हाथों का व्यायाम। हाथों को सीधा फैलाना, ऊपर उठाना, गोल घुमाना रक्त संचार और चलक बढ़ाता है। करतल संचालन यानी कि हथेली और कलाई का व्यायाम। मुट्ठी खोलना और बंद करना, कलाइयों को घुमाना और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इस दिशा में हम घुमाएंगे। हाथ पैरों में रक्त संचार सही करता है। अगला आसन है हमारा पाद संचालन जो कि पैरों का व्यायाम होता है। पैर की उंगलियों को मोड़ना, सीधा करना, एड़ी पंजों पर खड़े होना पैरों की नसों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। घुटना संचालन घुटनों को मोड़कर गोल गोल घुमाना घुटनों की जकड़न को दूर करता है। कटी संचालन यानी कि कमर का व्यायाम। कमर को दाएं बाएं घुमाना और झुकाना या कटी संचालन यानी कि कमर व्यायाम के अंतर्गत आता है। पीठ और कमर को लचीला बनाता है। और सबसे लास्ट में आता है नेत्र व्यायाम जिसे त्राटक क्रिया भी कहते हैं। आंखों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोल घुमाना और पलके झपकाना आंखों की रोशनी और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह वे आसन हैं जो सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म व्यायाम योग की वह सरल कसरतें हैं जिन्हें बिना किसी कठिनाई के कोई भी किसी भी समय कर सकता है। मुख्यतः शरीर को लचीला, सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए यह व्यायाम और अभ्यास किए जाते हैं। इसे योग की भाषा में मिनी योग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसीलिए आजकल सभी लोग मिनी योग एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं। मन को और मस्तिष्क को शांति देने के साथ साथ हमें तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन भी कम करता है। एकाग्रता और ध्यान भी बढ़ाता है। रक्तचाप और हृदय की धड़कन को भी संतुलित करता है। फेफड़ों की क्षमता, श्वसन तंत्र को साथ ही साथ मजबूत करता है और नींद की समस्या में भी सहायक सिद्ध होता है। पूर्णतः हम आपको ये बता दें कि कोई भी अगर हम आसन और व्यायाम की प्रक्रिया को करते हैं तो वह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि हम उस पे अपना पूर्ण रूप से उसको करने की क्षमता रखते हैं। शुरुआत में 3 से 5 मिनट करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इसी के साथ हम अगले फिर व्यायाम में मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों जैसा कि अभी तक हमने आपको कई ऐसे आसनों के बारे में बताया है जैसा कि उसके लाभ और उसका तरीका। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्टासन। उष्टासन में सबसे पहले करने का तरीका हम बताएंगे और उसके बाद उसके लाभ। हर एक प्राणायाम का लाभ और अपने आप में उसकी उपयोगिता देखी गई है। उसी तरह उष्टासन भी अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय और सभी को पसंद आने वाला यह आसन है। तो आइए हम सबसे पहले उष्टासन करते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने का तरीका वज्रासन होगा। जैसे पहले घुटनों के बल बैठें और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं। अब शरीर को ऊपर उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें और कमर को हल्का सा पीछे झुकाएं। धीरे धीरे झुके और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने सर को झुकाएं। उसके बाद एड़ियों को पकड़ें और जब तक आराम से झुक सकें तब तक आप झुकें और दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। छाती को ऊपर उठाएं, सिर को पीछे की ओर झुकाएं ताकि गर्दन को भी स्ट्रेच मिले। सामान्य श्वास लेते हुए इस स्थिति में 15 से 30 सेकंड रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और फिर पुनरावृत्ति की तरह प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। वापस आते समय धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और पहले कमर सीधी करें, फिर हाथ कमर पर लाएं और वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोस्तों, ये था उष्टासन करने का तरीका। आइए अब हम उष्टासन के लाभ आपको बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन तो ये देता ही है, साथ ही साथ यह आसन स्पाइन को भी मजबूत और लचीला बनाता है। कमर और पीठ दर्द में राहत देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। छाती और फेफड़ों का विस्तार ठीक ढंग से करता है, इससे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। यह आसन रक्त संचार में सुधार करता है, तनाव चिंता और थकान को भी यह कम करता है। मन को शांत करने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी भर देता है। शरीर की आकृति को सुधारता तो है ही, साथ ही साथ पीठ सीधी रहती है और झुके कंधे ठीक होते हैं। पेट के मांसपेशियों को टोन करता है। यह आसन पेट की चर्बी घटाने में भी संपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है। हाइड्रेशन यानी पाचन में सुधार करता है। पेट के अंगों पर खिंचाव करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और रीढ़ की हड्डी और गले के हिस्से को मजबूत करता है। कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं, जिसमें उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके यदि हम करते हैं तो काफी कुछ हमें इसका लाभ मिलता है। आइए अब मैं इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बता देती हूँ। कमर या गर्दन में दर्द हो तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या स्पाइन इंजरी वाले लोग भी इसे बिल्कुल ना करें। यह आसन खाली पेट करना चाहिए और भोजन के 3 घंटे के बाद इस आसन को करना चाहिए। शुरुआती लोग इसे दीवार के सहारे या किसी भी प्रशिक्षण की देखरेख में ही करें। आसन करने के बाद कुछ समय बालासन और जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं उसमें आराम से बैठ जाएं और उष्टासन को पूर्ण करने के बाद ही आराम से धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ही हम इस आसन को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी उष्टासन के लाभ, सावधानियां और तरीका हमने आपको बताया। इस तरीके से यदि आप इस आसन को करते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ लाभ भी मिलेगा। अगली श्रेणी में हम आएंगे एक नए आसन की सावधानियाँ, उपचार, लाभ और तरीका लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना, या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना। पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मलत्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी पिएंगे, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी गैस की समस्या जितनी भी भारी होगी वह धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म तेज करता है। खाली पेट पानी पीने से शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ती है, वजन घटाने में मदद मिलती है। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन लोगों को जिम जाना होता है, भारी से भारी एक्सरसाइज करनी होती है। शायद उनका उद्देश्य यही होता है कि हमें पतला होना है, हमारा पेट अंदर हो जाए, टमी अंदर हो जाए और हम अच्छे से सुडौल होकर के मार्केट में जाएं, यानी कि अपने कार्यक्षेत्र पर जाएं, या फिर हम अपने घर पे रहें, अपने दोस्तों के बीच में जाएं। तो उनके लिए सबसे सरल उपाय गर्म पानी, यानी कि गुनगुना पानी की आदत डाल लेनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म तेज करता है, यानी कि खाली पेट पानी पीने से शरीर की जितनी भी खराब कैलोरी होती है वो बर्न की करने की क्षमता बढ़ जाती है और वजन घटाने में मदद करता है। आप मेरे कहने पे, यानी आज समता के कहने पे, एक महीना लगातार एक गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत सुबह शुरू करें और आप ये आदत को शुरू करने से पहले वेट करें और उसके बाद एक महीने के बाद अपना वजन जरूर करें।
आप देखेंगे कि 1 से 2 किलो वजन आपके शरीर का कम होता हुआ दिखाई देगा, बिना किसी सर्टिफिकेट से, बिना किसी साइड इफेक्ट से, बिना किसी गोलियों से, बिना किसी भी भारी एक्सरसाइज करने से। चौथा पॉइंट आते हैं जो कि हम गर्ल्स के लिए, हम महिलाओं के लिए एक रामबाण जितना काम करता है। जी हाँ दोस्तों, त्वचा को बनाता है ग्लोइंग। आज हर एक महिला, हर एक लड़की की ये चाहत होती है कि हम खूबसूरत दिखें, हमारे बाल लंबे हों, हमारे चेहरे पे कोई मुहासा नहीं हो, कोई पिंपल ना हो और हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड होकर के एक चमकती हुई त्वचा लगे। तो देर किस बात की है, सिर्फ आपको एक छोटी सी आदत को अपनाना है और अपनी जिंदगी में देखना है बड़ा बदलाव। बिल्कुल, एक गिलास पानी गुनगुना आपको नित्य प्रतिदिन योग की क्रिया में, यानी कि योग करने के बाद में आपको अपनी जीवन शैली में इसको अपनाना है, जिससे आपको मिलेगा लाभ, खून साफ होता है। अगर खून साफ होगा, हमारी बॉडी का ब्लड साफ होगा तो पिंपल और मुहासे बिल्कुल नहीं होंगे, ड्राइनेस कम होती है। सर्दियों में ड्राइनेस जिन्हें ज्यादा होती है, यानी कि आपको पानी की कमी है, त्वचा में नेचुरल चमक आती है। आप जितनी भी महंगी क्रीम लगा लें, लेकिन अगर आपकी स्किन पर नेचुरल चमक है तो इसका मतलब है कि आप पानी पीने में सबसे ज्यादा अच्छे हैं और पानी को पी रहे हैं। नेचुरल चमक जानने का सबसे आसान तरीका होता है 2 टाइम पर। बताऊं कैसे? पहला, जब आप सुबह सो के उठते हैं, आप अपने आप को शीशे में निहारें। अगर आपके चेहरे पे हल्की सी भी एक चमक है, यानी कि ये चमक आपके अंदर की है, क्योंकि आपने सोते समय कोई क्रीम नहीं लगाई है और उठते ही आपने कोई क्रीम नहीं लगाई है, जो चमक आती है वो आपकी नेचुरल चमक है। दूसरा, जब आप नहा के निकलते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, अगर आपने अपने फेस को साफ किया है, साबुन से साफ किया है, लेकिन एक खिंचाव, एक चेहरे पे सूखापन आ ही जाता है, जिसके कारण से वो चमक कहीं ना कहीं छिप जाती है। लेकिन अगर वो चमक आपको दिखाई दे रही है, इट मींस कि आपके अंदर पानी की कमी नहीं है। अगर वो चमक नहीं है, त्वचा रूखी हो गई है, इसका मतलब है

नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, वो किरण जो सिर्फ सूरज की नहीं बल्कि उम्मीद, विश्वास और ईश्वर से जुड़ाव भी है। सुबह की इस पवित्र बेला में जब हवा में शांति है और मन अभी भी कल की भागदौड़ से दूर है, तो आइए कुछ पल अपने आराध्य को समर्पित करें। पूजा तभी फलीभूत होती है जब उसमें प्रत्येक विधि विधान का पालन किया जाए। इसलिए आज का जो एपिसोड होगा वो आपकी अपनी आरजी आकांक्षा पूरी तरह से आरती पर केंद्रित करेगी। आरती, आरती वो है जब हम पूरी पूजा करने के उपरांत दो पल ईश्वर को गीत, लय, ताल सभी के द्वारा वंदन समर्पित करते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर आपने मात्र आरती पूरे मन से कर ली तो समझ लीजिए ईश्वर की पूरी पूजा आपने पूरी कर ली। तो चलिए इसी क्रम में आज की सबसे पहली वंदना, सबसे पहली आरती जो हर पूजा में सर्वप्रथम की जाती है, किसकी? प्रथम पूज्य श्री गणेश की। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात हे भव्य शरीर वक्रसुंड, सूर्य की

चमक वाले गणेश जी, मेरे सारे कर्मों को विघ्नों से सदैव मुक्त करते रहना। इस मंत्र का जप अति उत्तम माना गया है। साथ ही गणपति की आरती आइए मिलकर करें।

श्रोताओं, आरती केवल दीपक घुमाना नहीं, आरती है अहंकार का अंधकार हटाना, मतलब मन के मंदिर में श्रद्धा का दीप जलाना। जब हम आरती करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, ऐसा नहीं है, हम कुछ नहीं मांगते बल्कि खुद को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। दीप जले तो भीतर के मन में भी एक उजाला सा हो जाता है, मन की हर नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो चलिए इसी भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना इस आरती के माध्यम से करते हैं। उससे पहले माँ लक्ष्मी का ये सबसे प्रचलित मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए यदि विधिवत माता लक्ष्मी का नित्य पूजन किया जाए तो जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में धन संपदा बनी रहती है। आइए माँ को मनाते हैं माँ की आरती से।

मित्रों, वैसे तो हम अपनी पसंद से कोई भी आरती का चुनाव कर सकते हैं, और एक आरती है जो कि सार्वभौमिक है, जिसके बोल हैं, आरती कीजिए प्रभु की, मन मंदिर में दीप जले, दुख दरिद्र सब दूर हो, जीवन पथ पर सुख फले। तो ये आरती जो सभी धर्मों के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके अलावा आरती हमें ये सिखाती है कि अगर मन सच्चा हो तो हर सांस भी प्रार्थना बन जाती है। आज का दिन किसी से शिकायत नहीं करना, किसी के लिए दुआ बनने का दिन हो जाए, ऐसी भावना के साथ में हमें आज का दिन बिताना है। लेकिन उससे पहले, घर में हो या सफर में, काम पर हो या अकेले, बस मन से एक दीप जला लीजिएगा। किसके लिए? ईश्वर के लिए, जो कि हर जगह व्याप्त है। चलिए तो उन्हीं ईश्वर की वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों की ओर फिर से बढ़ते हैं, और इस बार हम आरती में चयन करके लाए हुए हैं श्री जगदीश्वर यानी जगत पिता श्री विष्णु जी की आरती। उससे पहले ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी मधुरता है और कितनी मिठास है इस प्यारे से मंत्र में। अर्थात, मैं भगवान वासुदेव को नमन करती हूँ। ये मंत्र महर्षि नारद के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, करते हैं ना श्री हरि की आरती।

आप सुन रहे हैं आरती स्पेशल पहली किरण, जहां हर सुबह होती है श्रद्धा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा के नाम। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की, या कर रहे हैं उस परंपरा की, जो शब्दों से नहीं प्रकाश से प्रार्थना करती है, यानी आरती। प्राचीन काल की आरती। प्राचीन समय में जब मंदिर नहीं थे, मंत्र पुस्तकों में नहीं हुआ करते थे, बल्कि मनुष्य के हृदय में बसते थे मंत्र, तब अग्नि ही गुरु थी। ऋषि मुनि यज्ञ की अग्नि के चारों ओर बैठकर दीप और अग्नि के माध्यम से ईश्वर को नमन करते थे। ये आरती यानी प्रकाश को साक्षी मानकर की गई प्रार्थना। तो सबसे प्राचीन जो हमारे ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, यानी भोलेनाथ, चलिए अब उनकी प्रार्थना करते हैं और उनका वो पंचाक्षरी मंत्र जो हम सभी के मुखारबिंदु पर अक्सर होता है, वही ओम नमः शिवाय, अर्थात मैं शिव को नमन करती हूँ। ये वो मूल मंत्र है जो शरीर का शुद्धिकरण करता है और ध्यान की अवस्था लाने में मदद करता है। इसे कई सभ्यताओं में महामंत्र भी माना गया है। तो चलिए फिर करते हैं महादेव की आरती।

दोस्तों अब बात करेंगे मध्यकाल और बाकी धर्मों की आरती पर। समय बदला पर प्रकाश की भाषा वही रही। हिंदू धर्म में दीप और कपूर से आरती की जाती है। बौद्ध परंपरा में दीपदान को आरती मानते हैं। जैन धर्म में जिनेंद्र देव के समक्ष दीप प्रज्वलन ही आरती है। सिख धर्म में आरती शब्द के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित ईश्वर की महिमा ही आरती है। इस्लाम में चराग और नूर की दुआ को आरती कहते हैं। ईसाई धर्म में मोमबत्ती जलाकर प्रभु के सामने मौन प्रार्थना करना आरती है। यानी सभी की आस्थाएं और सभी की श्रद्धा अलग अलग है, पर वो एक है। कौन? हम सभी का ईश्वर। नाम अलग थे पर भावना एक, अंधकार से उजाले की ओर। तो चलिए फिर एक और आरती की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वो मंत्र जो हम सभी अपनी माँ को याद करते हुए पढ़ते हैं अक्सर। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, कोई भी रूप माँ का, माँ तो माँ है ना, तो माँ के लिए ये मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात मंगल कल्याण मनोरथ पूरे करने वाली, भूत भविष्य वर्तमान देखने वाली गौरी व नारायणी यानी भगवान के सभी स्वरूपों के साथ आप ही जुड़ी हो। माँ आपको नमस्कार है।

श्रोताओं, अब बात करेंगे आधुनिक समय की आरती की। आज दीप एलईडी का हो सकता है, मोमबत्ती मोबाइल की स्क्रीन पर भी जल सकती है, पर जब हम किसी के लिए मन से दुआ करते हैं, किसी दुख के लिए दिल से रोशनी मांगते हैं, वही आधुनिक आरती है। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं एक छोटी सी कहानी की ओर। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। हर शाम एक हिंदू वहां दीप रखता, एक मुस्लिम चराग जलाता, एक सिख वाहिगुरु कहता, एक ईसाई मोमबत्ती रखकर मौन खड़ा हो जाता। किसी ने कभी नहीं पूछा किसका भगवान बड़ा है। बस एक बात सब कहते, आज थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। एक दिन किसी बच्चे ने पूछा, ये सब अलग अलग क्यों करते हैं? बूढ़े पीपल की छांव में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जब दीप जलता है तो वह धर्म नहीं पूछता, वह सिर्फ अंधकार मिटाता है। यही है सबसे बड़ी आरती। उस दिन से वो पेड़ गांव का मंदिर बन गया, गुरुद्वारा भी, मस्जिद भी और चर्च भी। चलिए सर्वधर्म को ऊपर रखते हुए ये आरती, उससे पहले ये मंत्र, मंत्र वही है, ओम राम रामाय नमः। मतलब ये वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से विपत्तियां दूर होती हैं और शरीर निरोग रहता है। इसका जप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो चलिए फिर आरती की ओर भी बढ़ते हैं।

दोस्तों, आरती किसी एक धर्म की नहीं है, ये मानवता की लौ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ ईश्वर है। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहाँ हर सुबह हर धर्म हर दिल एक ही उजाले में जुड़ जाता है। चलिए फिर इसी लौ को और आग देते हैं इस मंत्र और आरती के द्वारा। ये वो आरती है जो कि एक नटखट सी भावना को जन्म देती है। उससे पहले ये मंत्र, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, अर्थात हे कृष्ण मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जीवन की बाधाओं से मुझे मुक्ति प्राप्त कराएं। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का आवाहन करता है। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण की आरती की ओर।

दोस्तों, यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तो उनकी सेवा एक छोटे बालक की तरह करें। मंदिर की पवित्रता हमेशा बनाए रखें। कोशिश करें कि वहाँ का वातावरण हमेशा सुगंधित रहे। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक और आरती की ओर, जो है किसकी? उस देवी की जो हमें बुद्धि देती हैं, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रसार करती हैं और साथ ही साथ में हमारे बुद्धि, मन और सभी चीज़ों को स्वस्थ रखती हैं, माँ शारदे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, अर्थात अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती, मैं आपकी वंदना करती हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं माँ शारदे की आरती की ओर।

श्रोताओं, पूजन में आप अक्सर सोचते हैं कि दीप क्यों? तो दीपक को ज्ञान और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन का भाव है। दीपक से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे वातावरण शुद्ध होता है क्योंकि दीपक में गाय का घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है जो घर से रोगाणुओं को दूर भगाता है। देखा ना, इसमें धार्मिक होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रचलन माना जाता है और घर के वातावरण को पवित्र भी बनाता है दीपक। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या नहीं। हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें, दीपक का यही संदेश है। तो चलिए इसी संदेश के साथ में बढ़ते हैं एक और आरती की ओर, जो कि है इस धरती को जीवन देने वाली माँ की आरती, यानी गंगा आरती। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से जातक को वैसे ही पुण्य प्राप्त होते हैं जैसे गंगा स्नान करने से मिलता है। पापों के लिए क्षमा मांगने और मुक्ति के लिए ये अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है। चलिए अब एक बार करते हैं क्या, हर हर गंगे।

दोस्तों चलिए अब आपको ले चलते हैं पूजा विधान में शंख के महत्व की ओर। अक्सर आपने सुना होगा कि वार्तालाप के दौरान हमारे पुराने यानी पौराणिक पंडित और सभी बोलते हैं, घर वाले भी, आस पड़ोस के लोग भी, कि पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग करें या उत्तरावर्ती शंख का प्रयोग करें। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि शंख का महत्व क्या है पूजा विधि में। धर्म शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत प्रेत अज्ञान रोग दुराचार पाप दूषित विचार और गरीबी का नाश होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार शंख बजाने से हमारे फेफड़ों का व्यायाम होता है, श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। पूजा के समय शंख में भरकर रखे गए जल को सभी पर छिड़का जाता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की एक अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। शंख में कैल्शियम फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं। तो इतना सब कुछ होता है शंख में। अब इसी शंख की शक्ति को और हम बढ़ाते हैं एक प्यारे से मंत्र से, जो कि है हनुमान जी का, ओम नमो भगवते अंजनेय महाबलाय नमः। अर्थात मैं अंजना के पुत्र महाबलशाली भगवान हनुमान को नमन करती हूँ तथा उनके समक्ष समर्पण करती हूँ। मान्यता है कि इस मंत्र के जप से असाध्य रोग नष्ट हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं महा आरती यानी महाबली की आरती।

श्रोताओं, इतना कुछ आज हमने सुन लिया, जाना आपके अपने शो पहली किरण में आपकी आरजे आकांक्षा के साथ में पूजा विधान के बारे में। अभी चलते चलते आपसे हम एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि कहाँ हो घर का मंदिर, तो आइए जानते हैं कि घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए। वैसे तो घर के मंदिर पर विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र अनुसार घर में मंदिर का निर्माण ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए और मंदिर ठोस आधार यानी समतल जमीन पर रखा होना चाहिए। उत्तर पूर्व में संभव ना हो तो आप उत्तर या पश्चिम में भी मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मंदिर के नीचे कोई दराज ना बनवाएं। घर में मंदिर के ऊपर ध्वजा का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। जगह ना हो तो घर की छत पर भी ध्वजा लगाई जा सकती है। तो अभी हम बढ़ेंगे एक और आरती की ओर, जो कि है हम सभी की सबसे प्यारी, हाँ, गौ माता की। कहते हैं ना कि गौ माता के शरीर में 33,000 करोड़ यानी 33,000 कोटि देवताओं का वास।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है पहली किरण, जो लेके आई थी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। अभी आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दे मुझे और मिलते हैं आपसे इसी शो के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है कि पूजा विधान अब आपका उत्तम तरीके से होता रहेगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, अल्लाह हाफिज़।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: वाओ क्या बात है, व्हाट अ सॉन्ग भाई। और आज का मौसम प्लस ये सॉन्ग प्लस आज का दिन संडे, कुल मिलाकर के एपिक सा कॉम्बिनेशन है। एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉश आर्ज अरमान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11। अब क्या है, अब है खूबसूरत सा मौसम, बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने और संडे वाली वाइब, सब कुछ तो है आज, किसी चीज की मुझे लग नहीं रहा है कि कब। सो फिलहाल इसी बात के मद्देनजर रखते हुए चलिए आपको ले चलते हैं आज के संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे की तरफ, और जानते कि भाई आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या लेकर आया है, आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज है दिन संडे का, रविवार का, हमारी छुट्टी का, हमारा खुद का, हमारे अपनों का। और इसी में ये हल्की हल्की सी बारिश, क्या बात है, एक मिठास घोल रही है आज के इस दिन में। तो चलिए दिन की शुरुआत हो गई है खूबसूरत, और आज का थॉट क्या है ये भी बता देते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

तो क्या कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे? आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि डर जो है भविष्य को लेकर डरना, यानी फ्यूचर को लेकर के डरना होता है, क्योंकि मन हमेशा उस संभावना को बड़ा करके दिखाता है जो अभी हुई ही नहीं। पर याद रखिए, डर एक संभावना है, भविष्यवाणी है। आज को उस कल के डर में मत खोइए जो अभी आया ही नहीं। एक ऐसा फैक्चुअल सा थॉट जो

डर को फील कर रहा है। सो आज को उस कल के डर में मत होना कि आज जो हम जी रहे हैं, आज जो तारीख है 30 अगस्त, उसको हम कल वाले जो आने वाला कल है उसके डर के बारे में सोच करके नहीं खोना, जो अभी आया ही नहीं। सो जो नहीं आया है उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच करके नहीं करना है कि हमारा आज जो है वो ये कहना है आपके थॉट है, इस संडे स्पेशल थॉट है। एंड आई होप कि आज आप इस संडे की बात करेंगे तो भाई आज का संडे आपसे क्या रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि हम में से सभी लोग इस प्रॉब्लम से ज़रूर जुड़े हैं। हमारे अंदर ये तरह का ज़रूर डर पाया जाता है जो हुआ ही नहीं है उसको लेकर।

चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ, और आपको आज का ये थॉट ऑफ द डे और आपका डर निकालने वाला था।

0: अरे भाई, जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं सुबह सुबह, तो इतना प्यारा महसूस कर लेते हैं कि मुझे लगता है कि यही शायद कसूर हो जाता है अपना। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यस लिटरली आपकी ही बात कर रहा हूँ। चलिए एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो 11.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और आज है संडे स्पेशल। यस, 10 से 11 होने वाला है गायगा गुंडा विद आरजे अदनान। उसके लिए आप तैयार रहिएगा पूरी तरह से टिंच पिंच होकर के। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हमने बताया आज का थॉट ऑफ द डे, जो कि मॉर्निंग वाला था। सो आज का मॉर्निंग का स्पेशल थॉट आपको कितना स्पेशल फील करा चुका है, ये हम चलकर देखने वाले हैं चैट बॉक्स पर। लेकिन आप चूंकि ट्यून करते हैं तो आप सुन रहे हैं हमको फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया के हर कोने से आप एक्सेस करते हैं, ना सिर्फ एक्सेस करते हैं बल्कि आप गोंडा FM के अपने फेवरेट आरजे से लाइव बातचीत भी करते हैं ड्यूरिंग शो। तो चलिए, क्या कुछ लिखा है आपने चैट बॉक्स पर, ये आकर बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

ये किसी ड्रीम वर्क से कम नहीं होगा कि आप सुबह सुबह किसी चीज की शुरुआत करें और उसके बाद इतनी प्यारी प्यारी इतने अच्छे अच्छे लोगों की विशेष पड़ी रहे। यस ऑफ कोर्स, बड़ा ही जबरदस्त सा काम होता है, पता है। चलिए वो तो हम फील कर रहे हैं। सबसे पहले सविता दुबे जी ने लिखा है, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात। इसके बाद दूसरा जो आया है मैसेज वो धर्मेंद्र मोहन जी का, आवास विकास गोंडा से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू एंड दो घूमते हुए दिल। यानी फिलहाल आज इनका दिन जो है वो काफ़ी रोमांटिक सा साउंड कर रहा है इनके मैसेज से, और होना भी चाहिए यार। धर्मेश त्रिपाठी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग धर्मेश, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। अनुष्का जी श्रावस्ती से, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ ग्रेट डे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनुष्का जी, आपका भी दिन मंगलमय हो। हालांकि आज रविवार है, कोई बात नहीं, दो दिन बाद वाला मंगलमय। आवाज़ साफ नहीं आ रही, अच्छा तो मे बी कोई फ्रिक्वेंसी का मसला होगा, क्योंकि लगातार बारिश और मौसम बदलने की वजह से थोड़ा सा असर आता है नेटवर्क पर। अगर आप इंटरनेट पे आएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी मिल पाए, या आप थोड़ा सा अपना स्थान चेंज करेंगे तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू। एंड अरविंद फ्रॉम मनकापुर लिखते हैं, सभी को सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी, स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। एंड अनूप जी लिखते हैं, जिंदगी सवरने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ जिंदगी खड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, वो लम्हा कोई और रही बल्कि आज कही है। 30 तारीख है, 30 अगस्त, आज का संडे है, टाइम 9:13, यही तो वो वक्त है, यही वो लम्हा है जिसमें हमको जीना है, ऑफ कोर्स। सो थैंक यू। इसके बाद सैनी पांडे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सैनी, थैंक यू सो मच। एंड ये लीजिए भाई, हमारे अनूप जी का भी बर्थडे है, उन्होंने बताया आज हमारा बर्थडे है, आप सबकी विशेस को चाहता हूँ। अरे क्या बात है, मतलब आप हम सब लोगों को इतना चाहते हैं, लोग आपको इतना चाहते हैं, विशेस तो क्यों नहीं दिया जाएगा। सो हमारे अनूप मिश्रा जी को उनके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि जब से ये FM शुरू हुआ है, बहुत पुराने फैमिली मेम्बर्स में से एक हैं अनूप मिश्रा जी हमारे, और साथ ही साथ अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से हम सभी लोगों को बहुत बार ऐसे गाने सुना चुके हैं। और आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली, क्योंकि आज संडे है, कि भाई आज आपका बर्थडे भी है तो 10 से 11 के बीच आपकी कॉल ज़रूर आए और हम आपसे बर्थडे बॉय से गाना सुनते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन लोग जो है वो गा गा के डेडिकेट करते हैं, जिसको ऑफकोर्स डेडिकेट करना है वो तो गा के डेडिकेट कर देगा हमारे अनूप जी को, लेकिन आज आपसे भी हम सुनने वाले हैं, आज आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपको हॉस्टलर्स वाली लाइफ तो नहीं याद आ जाएगी, जबरदस्ती वाला है। ऑलराइट, सो सनी लिखते हैं, कल क्या होगा यहाँ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो हमारे कल को बेहतर बनाएगा। बेशक सही बात है कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमारे कल को बेहतर बनाएगा। और देखिए कितने सारे कमेंट्स जो हैं वो विशेज में चले गए, मतलब कितने लोगों ने विशेज भेज दी है। धर्मेंद्र मोहन जी ने भी लिखा है, अनूप जी आपको, अनुष्का जी ने भी लिखा है, अरविंद जी ने भी लिखा है, सनी ने भी लिखा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतनी सारी विशेज मिलने के साथ ही वो लोग जो इस वक्त फ्रिक्वेंसी से या फिर रेडियो गार्डन से ट्यून किए हुए हैं, वो आपको दिल से बहुत सारे विशेज दे रहे हैं अनूप जी। और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी आवाज़ और गले को ठीक रखिए और हमको गाना सुनाते रहिए, ये दुआ हम सभी लोग आपके लिए कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स। और आपने कहा बिल्कुल सर, आज गाऊंगा अपने सारे लिसनर्स के लिए, आपके लिए। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच, मतलब यही प्यार तो मतलब इस FM को अलग बनाता है, जो बिल्कुल अलग है। यानी हम इतना ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के, कि भाई हम ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल करके करना जानते हैं, गाना हो, डेडिकेट करना हो। सो थैंक यू सो मच आपकी हाँ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड यस, फिलहाल बातचीत करने के दौरान अब आइए, आपको वक्त हो गया है अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ ले चलने का, क्योंकि वापस आने के बाद तो बातों का भंडार है। और आज है संडे, और आज के संडे को कुदरत ने रोमांटिक बना दिया है, तो इस गानों की वजह से और रोमांटिक, और हमारी बातों की वजह से और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है आज का मॉर्निंग वाला शो।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: कॉकटेल टू मूवी का ये गाना तुझको, आई होप कि भाई आपने सुना और काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा अपने गुड मॉर्निंग गुंडा शो में, क्योंकि आज है संडे स्पेशल गायक गुंडा विद आरजे अदनान। सो ज्यादा तो नहीं, बस आधे घंटे के आसपास का वक्त और उसके बाद हम फाइनली लाइव कॉल इन प्रोग्राम में एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए है जरूरी, ऐसी कई सारी बातें हम ले आते हैं आपको बताने के लिए। तो चलिए फिलहाल आज हम चलते हैं दालचीनी के पास और जानते हैं कि भाई दालचीनी खाने का क्या फायदा होता है, क्योंकि हर चीज के फायदे और नुकसान आरजे अदनान आकर के बता ही देते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Arjun Khan.

कई बार हमको काफी कम चीजें पता होती है, यानी उसके बारे में जानते तो हैं लेकिन कुछ कम जानते हैं। तो चलिए कुछ कम से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आज आपकी नॉलेज में इजाफा कर देते हैं, ज्ञान में बढ़ोतरी हो जाएगी दालचीनी के फायदे को लेकर के। जी हाँ, सो दालचीनी सिर्फ खाने का टेस्ट और खुशबू बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, जैसे बहुत ज्यादा जरूरी है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। सो ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद कर सकती है ये। जी हाँ, दालचीनी की बात कर रहा है। इसके अलावा पाचन को बेहतर रखने में भी मददगार साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की, अगर डाइजेशन सही है तो लिटरली बाकी सभी चीजें सही है, बेहतर है। इसके अलावा हर किसी को चाहिए होती है इम्यूनिटी, एंड ये इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकती है, इम्यूनिटी की हेल्प कर सकती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको फायदा पहुंचा सकती है। इसके अलावा हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो या ब्रेन नहीं भी होगी तो भी उसकी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल मानी जाती है। इसके अलावा वजन को लेकर के भी ये मैनेज करती है और स्किन हेल्थ को भी सपोर्ट कर सकती है। सो स्किन को लेकर के भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं और साथ ही वजन को लेकर के भी रहते हैं कि भाई हमारा वजन या तो बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम है, मैनेज करने का काम होता है दालचीनी का। इसके अलावा सूजन और दर्द को कम करने में भी मदद कर सकती है। तो अगर कहीं पर कोई स्वेलिंग है या फिर कोई दर्द है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकती है आपकी दालचीनी की लकड़ी। जी हाँ, बचपन में हम यही सोचते थे कि यार ये लकड़ी की छाल जो है वो मम्मी क्यों अपने खाने में बना देती हैं, और उसके बाद लेकिन जब हल्की सी मीठी लगती थी और खाने में आती थी तो मज़ा आ जाता था। सो फिलहाल ये दालचीनी के फायदे कई हैं, और जैसा कि मैंने बताया आपको, ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, सूजन और दर्द को कम करने के लिए, स्किन हेल्थ और वजन को मैनेज करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है आपकी ये दालचीनी की लकड़ी। अगर अभी तक इतना नहीं पता था तो अब कहिए ना कि हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा पता हो गया है दालचीनी के बारे में। देखा, तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो आपको पहले से पता होती है लेकिन उसमें थोड़ा सा इजाफा करने हम बता देते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। क्या आप गोंडा से हैं?
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: ये तो जब मैं खुद को देखता हूँ तो मेरे भी मन में यही सवाल आता है कि यार कोई ठीक है, बाकी आप समझ गए। ऑलराइट, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। वैसे सवाल ये आपके लिए भी है कि किसको देख करके आपके मन में ये बात आती है कोई इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है यार, बताओ ना। चलिए, अगर ऐसा कोई सवाल है, ऐसा कोई मन में जवाब है इसका, तो ये सवाल आपके लिए है। वैसे सवाल एक और है जिसका जवाब मैं खुद आपको खैर देने वाला हूँ, पहले सवाल का जवाब आपको देना है, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, आपके लिए कोई ऐसा है क्या? एंड दूसरा, मैं आपसे ऑफ कोर्स जानना चाह रहा था कि क्या एक गाना जो है वो सच में मूड को चेंज करता है? ये तो हमने हमेशा सुना है, लेकिन क्या सच में स्ट्रेस को भी चुटकियों में गायब कर सकता है? ऐसा है उसके पास जादू कि एक गाना जो है वो स्ट्रेस को चुटकियों में गायब कर दे? सो साइंटिफिकली अगर ये समझने की कोशिश करें तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, चलिए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सुबह सिंपल सी सवाल था कि भाई क्या एक गाना एक मूड को चेंज कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, कई बार हमारा मूड बहुत बार चेंज किया है गाना सुनते सुनते, ये बात तो तय है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन बात ये आती है क्या स्ट्रेस को भी चुटकियों में गायब कर सकता है, इसको जरा समझने के लिए बढ़ते हैं और चलते हैं ये जानने का तरीका कि भाई सिस्टम ये काम कैसे करता है। तो देखिए दिमाग की रीवायरिंग सीक्रेट अगर हम आपको बताएं तो इसको जानने के बाद शायद आपके लिए इजी हो पाएगा इसको जान पाना। सही म्यूजिक जो है वो हमारे ब्रेन को न्यूरो एक्टिविटी को बदल करके स्ट्रेस को शांत करता है। सो न्यूरो की जो एक्टिविटी है जिससे ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं असर पड़ता है कि भाई हम स्ट्रेस में हैं, उसको जो है बदल देने की ताकत है अगर सही म्यूजिक सुनी जा रही है। फिर होता क्या है ब्रेन का रिस्पॉन्स, जी हाँ, सो धुन सुनते ही दिमाग का जो है एमिग्डाला जो है वो एक्टिव होकर के मूड को फौरन बूस्ट कर देता है। अब अगर हम बात करें म्यूजिक में तो शास्त्रीय संगीत का अगर हम जादू उसकी बात करें तो भारतीय जो राग हैं और सितार बांसुरी की धुनें हैं फोकस और याददाश्त बढ़ाती है। हमने रीवायरिंग की बात करी ना दिमाग में, तो जो शास्त्रीय संगीत है उसमें जो राग है और सितार बांसुरी की जो धुन है वो क्या करती है, कंसंट्रेशन और याददाश्त बढ़ाने का काम कर रही है। इसके अलावा रागों का कमाल अगर आप समझेंगे तो भाई बहुत अलग होगा। सो स्टडीज़ के मुताबिक जो है राग वो जोगिया एकाग्रता और राग दरबारी जो है वो स्ट्रेस को दूर करने में मददगार साबित होता है। सो ये बात स्टडीज से पता चली है कि राग जोगिया जो है वो कंसंट्रेशन और राग दरबारी जो है वो स्ट्रेस को दूर करने का काम करता है, उसमें मददगार साबित होता है। अब बात आती है कि यार ये सब अगर कर रहा है तो एक काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेहतर नींद और कम तनाव हो, यार कोई चाहता है, इसके लिए क्या हो सकता है। लो डेसिबल धुनें जो होती हैं वो ओवरथिंकिंग को रोक करके गहरी नींद दिलाती हैं। जो लो डेसिबल पे गाने बनते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो ओवरथिंकिंग होती है ना जो हम लोग सोचते जा रहे हैं उसको रोक करके गहरी नींद दिलाने का जो है इनके अंदर हुनर होता है और ये गहरी नींद लेकर के आते हैं। इसके अलावा स्मार्ट प्लेलिस्ट, जी हाँ, असर बनाए रखने के लिए अपनी प्लेलिस्ट में जो है रेगुलर नए गाने आप जोड़ते रहिए। सो ऐसे क्या होता है, ये स्मार्ट प्लेलिस्ट होता है, आपके पास गाने जो है वो बढ़ते रहेंगे और आप एंजॉय करते रहेंगे। तो अगर आपको स्ट्रेस है या आप कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं और अपना मूड सही करना चाहते हैं तो ऐसे जो सही म्यूजिक है, मतलब वो गाने जो सच में आपके मूड को चेंज कर रहे हैं वो आपके लिए सही है। एंड यस, ये काम करते हैं, ये ज़रूर से काम करते हैं, बशर्ते च्वाइस आपको देखना होगा कि भाई किस गाने को लेकर के आपकी च्वाइस है। यानी गाने के नाम पे कुछ भी जो बना दिया जा रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर गानों की बात कर रहे हैं। और स्पेशली आपको या अगर आप 60s में 70s में जाते हैं, गज़लों में आते हैं आप, शास्त्रीय संगीत में आप आते हैं, रागों में अगर आप आते हैं तो आपको ये सब ज़रूर मिलता है। आज के नए सॉन्ग्स में भी ऐसे कई सारे हैं जो बहुत अच्छे बनाए गए हैं, परफेक्ट डेसिबल पे बनाए गए हैं, जो सच में ब्रेन की रीवायरिंग करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो आई होप कि आपको ये जानकारी मिल गई है और इसको आप समझ गए होंगे। अब आपको पता चल गया है कि हाँ ये जो सॉन्ग्स हैं ये सच में काम करते हैं और ये स्ट्रेस भी दूर करते हैं और इंस्टेंटली म्यूजिक से क्या होता है कि मूड भी बूस्ट हो जाता है। देखा, फिलहाल इस गाने को

0: पीछे।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारीयानसली PG कॉलेज, गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

क्या बात है भाई, वाह। मतलब ऐसा मैच हो रहा है कि जैसे मौसम और ये गाने जो है मिले जा रहे हैं, घुले जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी जुबान पे टेस्ट खुल जाता है। फिलहाल आज आपको टेस्ट मिल रहा है संडे की वाइब का, अर्जुन नान के साथ, क्योंकि आज आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर अर्जुन नान। अब से कुछ ही देर में बस शुरू होने वाला है गायका गुंडा विद अर्जुन नान, सो आज तैयार रहिएगा गाने के लिए भी और साथ ही साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। स्टे ट्यून।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: हाँ जी, तो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने मॉर्निंग वाले स्पेशल शो में। आपके आरजे अदनान करते हैं और देखिए ना, वक्त है ऑफ कोर्स 10 बज रहा बस। सो अब आपकी कॉलिंग प्रोग्राम का वक्त शुरू हो गया है, यानी आपका स्पेशल वाला शो गागा गुंडा विद आरजे अदनान। सो चलिए फिलहाल चलते हैं शो की तरफ और देखते हैं कि भाई अब किन किन लोगों की कॉल्स आने वाली है, क्या बातें होने वाली है और कौन आज इस रोमांटिक से मौसम में सॉन्ग सुनाने वाला है, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है आपके सॉन्ग्स के सुनने का। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप खुद क्या सुन रहे हैं अपने 89.6 FM पर।
1: Now you're listening Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

0: हाँ जी, तो भाई इतने सारी चीज़ों के साथ में अब देखिए वक्त हो गया है आपसे बातचीत करने का, और यस बातचीत भी होती है संडे में, बड़ा मज़ा आता है भाई आपसे बातचीत करते हैं लाइव, क्योंकि आज कई दिन ऐसा होता है जब हम आपके साथ में लाइव बातचीत कर रहे होते हैं कॉल इन प्रोग्राम पर। सो ऑफ कोर्स हम कॉलर्स को भी लेने वाले हैं, क्योंकि आपकी कॉल्स लगातार आती जा रही है, आप जुड़ते जा रहे हैं, और इसी बीच में आज हम संडे को और भी ज़्यादा फंडे बनाने वाले हैं, और कई सारे क्वेश्चंस आपको पता होता है कि भाई हमेशा हमारे पास यानी आरजे अदनान के पास हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं होती है, तो आज भी कोई क्वेश्चन की कमी नहीं होने वाली है, और साथ ही साथ चूँकि अब संडे तो इसको और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएंगे। लेकिन चलिए देखते हैं भाई कौन है पहला कॉलर आज का। हाँ जी हेलो, हाँ जी हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
0: हसीना मंसूरी जी इंदौर मध्य प्रदेश से?
1: जी जी इंदौर मध्य प्रदेश।
0: अरे वाह, कैसी हैं पहले तो अपना हाल चाल बता दें।
1: ठीक है सर, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया, थोड़ा बुखार आ गया था दो तीन दिन से, अब थोड़ा ठीक है।
0: अरे तो आपने आने क्यों दिया, आपने कहा नहीं कि हम बहुत मजबूत हैं? अरे अब देखिए आप तो इतनी समझदार हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, खाना कम खा रही हैं, काम ज्यादा कर रही हैं?
1: भूख नहीं लगती सर।
0: भूख नहीं लगती है तो क्या किया जाए जिससे भूख लगे आपको?
1: और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा।
0: अच्छा, हमें लगा और काम बढ़ाना पड़ेगा।
1: बहुत ज्यादा भी काम कर लो तो भी नहीं लगती सर।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये बताइए कि आपको गोंडा एफएम के बारे में कैसे पता चला?
1: हमको ये अनु जी ने बताया सर।
0: अरे वाह क्या बात है, थैंक यू, थैंक्स टू अनु। तो आप कब से सुन रही रेडियो ज्ञानस्थली?
1: ये तो पहली बार ही सुना, पहली बार ही लगाया था।
0: अच्छा पहली बार सुना और पहली बार लगाया, और पहली बार आपकी कॉल लग गई, कितनी लकी हैं आप देखिए।
1: जी जी।
0: ऑल राइट, सो आप क्या हैं, आप गृहिणी हैं या आप कहीं वर्किंग हैं, क्या करती हैं आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: जॉब करते हैं सर।
0: अच्छा
1: जॉब करते हैं।
0: जॉब करते हैं, किस चीज़ का है आपका कार्य?
1: ये घनी बेग का जूट का काम है
0: सर। अरे वाह क्या बात है। आपका ज़िला वैसे किस लिए फेमस है, जैसे हर ज़िले की अपनी ख़ास पहचान होती है, तो आपके यहाँ क्या है मध्य प्रदेश के जिस ज़िले में आप हैं?
1: इंदौर है सर, यहाँ पर ज़िला तो कोई भी नहीं है।
0: इंदौर में ही है ना आप?
1: हाँ इंदौर में, ये बहुत बड़ी सिटी है सर।
0: जी जी जी, इंदौर का ही नाम तो स्वच्छता में आता है नंबर वन पर।
1: जी जी जी,
0: है ना। तो साफ सफाई को लेकर के, अच्छा थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप बाहर निकलती हैं, आप वर्किंग है, आप देखती हैं, तो कैसा पाती हैं, मतलब इंदौर के लोग किस तरह से सफाई को रखने में, कायम रखने में अपनी मदद करते हैं, क्या करते हैं ऐसा कि वहाँ पे साफ इतना रहता है?
1: अगर इतनी शक्ति नहीं वहाँ पे तो साफ सफाई वापस वैसी हो जाए सर, गंदेवाड़ा वैसे होने लग जाए, मगर इसमें शक्ति है ना, जैसे अगर थूकने पे भी प्रतिबंध है, कचरा फेंकने पे भी कैमरे लगे हुए सब दूर, टैक्स लगेगा नहीं तो फिर चालन कटेगा, कचरा जलाएंगे, तो अगर ये नहीं हो तो फिर वापस गंदा होने लग जाए, मगर जो शक्ति ना जो यही शक्ति वापरेंगे तो साफ सफाई ऐसी ही रहेगी।
0: सख्ती आपने कहा अगर किया जाएगा तो ऐसी साफ सफाई रहेगी, तो कौन देखता है वहाँ पे, वहाँ का नगर निगम देखता है?
1: हाँ नगर निगम की गाड़ी घूमते रहती है सर।
0: अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपने बताई कि वहाँ पे काफी सख्ती होती है और उसे लोग फॉलो भी अप करते हैं।
1: जी जी,
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप पहली बार आपने चूंकि कॉल किया तो मैं चाहूंगा अगर आप, अगर आपकी मर्जी हो तो आप कोई दो लाइन गाना गुनगुना दे।
1: गाना गाने का तो बहुत शौक है सर, और गाना गाते ही बताती हूँ कोई सी फिल्म का है, फिल्म का नाम फकीरा और गाने के बोले आदि सत्य आदि

0: बस
1: हाँ, और दूसरा बता दियो, दूसरा भी एक बता देती हूँ।
0: हाँ प्लीज प्लीज गाइए, आवाज आपकी अच्छी है प्लीज।
1: सर थोड़ी क्या है कि सर्दी जुकाम हो रहा है तो आवाज निकल नहीं रही है।
0: अरे बहुत बढ़िया निकल रही है, हम सुन रहे हैं आप गाइए।

0: जाना।
1: कितनी बेहतरीन बात आपने कह दी, कितना आसान है कहना कि भूल जाओ और कितना मुश्किल होता है,
0: मुश्किल है कि भूल जाना।
1: सही बात है, सही बात है। आप भूलेंगी तो नहीं रेडियो ज्ञानस्थली को?
0: नहीं, सर, कभी नहीं भूलेंगे।
1: बहुत ही अच्छी शख्सियत है आपकी, और भोपाल सॉरी मतलब मध्य प्रदेश से आपने हमको कॉल किया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और स्पेशल थैंक्स आनंद को भी।
0: एक बात ये कहना चाहती हूँ सर, कि ईमानदारी पे चलो और सबका अच्छा सोचो, सभी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और ईमानदारी पे ही चलना चाहिए हमेशा। हम लोग ऐसे ही चलते हैं सर।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आपने जिस ईमानदारी के साथ आज हमसे बात किया और सॉन्ग सुनाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
0: शुक्रिया सर।
1: शुक्रिया। सो भाई देखिए, ये कॉल जो थी वो मध्य प्रदेश से आई थी, इंदौर से। एंड अच्छी बात यह है कि गोंडा एफएम की जो फैमिली है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और देश के अलग अलग कोनों से, इवन कई विदेश से भी सुनने वाले हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इस फैमिली के सदस्य हैं। अच्छा, आप सवाल की तरफ आते हैं, और सवाल ये है कि क्या आपने आलस के चक्कर में सबसे अजीब काम क्या किया है? जी हाँ, जैसे हम सब के अंदर आलस होता है, तो आलस के चक्कर में कई बार हम लोग बहुत अजीब काम करते हैं। तो आपने कभी आलस के चक्कर में क्या अजीब काम किया है? फॉर एग्जांपल, मान लिए कि टीवी का रिमोट उठाने के लिए पैर का इस्तेमाल कभी आपने किया हो, सिर्फ आलस के चक्कर में कि उठना ना पड़े, उठाना ना पड़े, उस चक्कर में आप काहिली की सारी पराकाष्ठा पार कर रहे हो। ये आपने हुनर तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये हुनर हम सब में होता है, मुझ में खुद भी है। सो इसमें से किस हुनर का आपने इस्तेमाल किया है, और आलस के चक्कर में आप मानते हैं कि हाँ आपने कुछ ऐसी हरकतें की है जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ आलस में सच में ऐसा रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो फटाफट से आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप कॉल करके हमको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। कॉलिंग का जो नंबर है वो है 6393316429 6393316429 6393316429। ये स्टूडियो का नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसे आलसीपन वाला हरकत आपने आखिर कब की है और किस काम को करने को लेकर की है। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये जो हरकत है ये लगभग हर कोई करता है, और जहाँ तक बात पैर से रिमोट को ऑफकोर्स उठाने की रही है, तो ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा किया है, एंड आई होप कि आपने भी किया होगा। बल्कि होप क्या, मतलब डैम श्योर आपने किया होगा, क्योंकि मुझे यकीन है जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। भाई हम लोग इस मामले में तो एक ही है ना। वैसे भले ही बहुत सारी आदतें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन काहिली में कुछ आदतें बड़ी सेम सेम होती है। तो ऐसा अगर कुछ भी आपने किया हो, ऐसा कोई भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, सो आप हमसे साझा कर सकते हैं। नंबर हमने बता ही दिया है 6393316429 पर, या फिर आप जो है ऑफकोर्स चैट बॉक्स पर आ करके कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल चलिए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बता दें हमारे लिसनर्स को।
2: अनु पांडे।
1: हाय अनु, सो ऐसी कौन सी काहिली आपके अंदर है?
2: सर मैं ना रेडियो में पैर से ऑन कर देती हूँ, और पैर से बंद भी कर देती हूँ, ऑफ भी कर देती हूँ, और उसकी वॉल्यूम भी पैर से बढ़ा देती हूँ। मैंने कल रात में ही रेडियो रखा था टेबल पर, और मैं लेटी थी, हमने कहा उठ कर कौन वॉल्यूम बढ़ाया, और सुनाई थोड़ा कम पड़ रहा था क्योंकि पंखा भी चल रहा था। तो हमने कहा उठ के कौन वॉल्यूम बढ़ाया, फिर हमने ऐसे पैर से ही बढ़ा दिया।
1: पैर से वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं आप रेडियो का, और घटा भी लेते हैं?
2: हाँ।
1: और फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर लेते हैं?
2: नहीं नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा।
1: अच्छा, कभी कोई
2: उसके लिए तड़पना पड़ेगा।
1: कभी आपसे कोई ये ना बोल दे एक डायलॉग जो कि बॉलीवुड का बहुत मशहूर डायलॉग है, ये पैर हमको दे दे अनु। So, मुझे लगता है अगर इतना ज्यादा आप काम पैर से लेंगे, आपका इतना हुनरमंद पैर बन जाएगा, तो कोई भी आपका पैर मांगने के लिए बेताब होगा। सच में चलने में बहुत स्मार्ट है, मतलब ऐसी कौन सी स्मार्टनेस चलने में होती है जरा बताइए। अच्छा, पक्का?
2: पक्का।
1: चले, ये तो बहुत
2: अच्छी।
1: नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना इतना नहीं कराने वाले, डोंट वरी। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान, हाँ बिल्कुल ना हो। एंड यस, आप कुछ सुनाना चाहेंगे आप भी?
2: जी सर, और एक बात, मैं ना जो सीट है पंखे की, मैं उसको ना दो हाथ का एक बहुत अच्छे से डंडा मैंने बना के रखा है, फिर उसी से ऑन कर देती हूँ, ऑफ कर देती हूँ, ऐसे हाथ से नहीं करती, ऐसे थोड़ी दूर से ऐसे कर देती।
1: तो मतलब आपने कुछ हथियार भी बना बना के रखे हैं शॉर्टकट वाले?
2: हाँ।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
2: सर अभी मैं आपको कुछ सुना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। पैर से सुनाएंगे? अच्छा पैर से नहीं सुनाएंगे, ठीक है फिर।
2: पैर से नहीं हो तो मुंह से गाना पड़ेगा।
1: तब ठीक है, तब ठीक है फिर।
2: पहले गाना सुनाऊंगी फिर कुछ गाएगी।
1: ओके।
2: मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचले दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है, मौसम भीगा भीगा है।
1: ये क्या हो गया, गाना हो गया क्या?
2: बस इतना सही था।
1: अरे हमें लगा पैर की भी एंट्री होगी, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया।
2: और सर अभी ना मौसम भीगा भीगा था, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, ऐसा अभी नहीं हो रही, अभी तो है पर सुबह हो रही थी।
1: अच्छा
2: तो हमने कहा
1: बहुत बढ़िया।
2: और अब हाँ। और अब रात का समय है, रात का समय,
1: रात का नहीं सुबह का है।
2: अरे सर
1: ये पक्का किसी और शो में आपने बोला होगा इसको, अब आप दिन में भी बोल रहे हो, ये बैठ नहीं रहा है।
2: सर सर ये रात में ना ऐसे रोड पे घूम रही थी तो मैंने चांद को देखा और मुझको ये लाइन याद आ गई, तो अच्छा। मैंने ऐसे ही बनाया और सोचा सुबह ही गुड मॉर्निंग बोला शो में बोलेंगे।
1: तो सुबह कौन सा चांद दिखा आपको?
2: रात में दिखा चांद, रात में रोड।
1: तो रात में चांद दिखा, सुबह का शो है, आप रात की बात कर रहे हैं, ये सुबह है, ये मैच नहीं हो रहा है।
2: सुबह भी आएगा इसमें।
1: अच्छा ठीक है,
2: पहले सुनिए तो पूरी बात।
1: ओके गो अहेड।
2: और एक बात, जो भी मैं लाइनें आपके लिए लिखती हूँ ना उसको सिर्फ आपको सुनाती हूँ और कहीं नहीं सुनाती। और एक बात, मैं उसको डायरी में भी नोट नहीं करती, उसको दिमाग से निकाल देती हूँ, कभी रिपीट हो जाएगी ना तो माफ करना।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम फॉर्मेट करा देंगे, आप पहले बोलिए पूरा करिए।
2: रात का समा है, रंगीन है ये नजारा, रात का समा है, रंगीन है ये नजारा, चांद भी देख रहा है ये मुखड़ा प्यारा, तितली ने किया है टिक्की ने इशारा, यही सर आ रहे हमारे सुबह लेकर गाएगा गुंड दोबारा बारा।
1: आहा क्या बात है, आई सुबह आई, आई ला आ गई रे।
2: आप तो पहले से
1: बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया थी जी। अगर हम तनुश्री की आवाज में बोले तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो पसंद आया है मुझे।
2: मैं तो तेरी बात कर रही हूँ, मुझे तेरा मारा है तुझसे। वैसे बोलती है।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनु, बहुत बेहतरीन गाना और बहुत अच्छी लाइन।
2: आशी से बात कर लो थोड़ी सी ना, आशी बात कर रही है, फोन मांग रही है।
1: ओके कोई बात नहीं, वो छोटकी सी उसको खेलने दे आप आराम से। ओके नो इशू, थैंक यू सो मच अनु, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया, बाय बाय टेक केयर। सुबह भाई ये तो थी अनु जिन्होंने हमको कॉल किया गोंडा से ही, और अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो, हेलो, ओके मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ नेटवर्क का लोचा हो रहा है जिसकी वजह से आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई है। खैर कोई बात नहीं, आज अगर कॉल कनेक्ट ना हो पाए तो दिल से आप कनेक्टेड स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी बातें, ऐसा समय और ऐसा एंटरटेनमेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मतलब ये गारंटी है ना, वही वाली बात, तेरा ध्यान किधर है, तेरा शो और अपन भी इधर ही है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर हमारे साथ कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो,
3: हेलो गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, अपना शुभ नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
3: मेरा नाम रीत है।
1: और मेरा नाम गीत, मतलब मैं चलाता गीत हूँ।
3: जी जी।
1: कैसी हैं आप?
3: सर बढ़िया है, आप बताएं आप कैसे हैं।
1: अरे एकदम झकास मस्त, बहुत बढ़िया। आज तो मतलब संडे का होता है तो अलग ही लेवल पे हम भी होते हैं। हालांकि नाश्ता वही करके आते हैं जो हमने सैटरडे को किया होता है, लेकिन ये कि उत्साह थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है।
3: गुस्सा क्यों?
1: उत्साह, उत्साह, एक्साइटमेंट,
3: उत्साह।
1: आई एम नॉट सेइंग गुस्साह, आई एम सेइंग उत्साह।
3: नहीं सर, वो थोड़ा सा इको हो रहा है ना, क्योंकि रेडियो पीछे ही बज रहा है, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई।
1: कोई बात नहीं, रेडियो को उसकी जगह बजने दे, आप थोड़ा सा अलग हो जाए वहाँ से।
3: जी जी, हम अलग हो गए, वॉल्यूम भी कम हो गया रेडियो का।
1: चलिए काहिले के किस्से सुनाइए जो हमने पूछा आपसे, कि क्या आपने कभी आलस के चक्कर में कुछ अजीब कार्य किए हैं?
3: आलस के चक्कर में, वैसे मेरे अंदर आलस तो है नहीं।
1: नहीं नहीं, सबके अंदर होता है, ये झूठ है, एकदम सफेद, एकदम सफेद झूठ है ये।
3: नहीं, आप मेरे घर में पूछ
1: रही है। अरे घर में क्यों हम पूछे, हम जब जानते हैं हर इंसान के अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करता है ना इंसान।
3: आलस उठने में तो आलस है नहीं, कोई काम करने में आलस नहीं है। हाँ, कभी कभी बर्तन धुलने में आलस लगता है।
1: आया, देखा,
3: ये कर सकते हैं।
1: तो फिर आप जब थक जाते हैं तो क्या आप भी पैर से धुलने लग जाते हैं, क्या करते हैं मतलब?
3: नहीं सर, थकते हैं तभी तो फिर थोड़ा सा उसको बाद में धुलते हैं, तुरंत नहीं धुलते हैं, रख देते हैं फिर।
1: मेरा सवाल आप समझ पाए?
3: समझ पाए।
1: मेरा सवाल ये है कि आलस के चक्कर में कुछ अजीब काम किया, जैसे हमने बताया कि रिमोट उठाना है और आपका आलस है और आपने पैर से खींच के उठा लिया, ये मैं भी कर चुका हूँ कई बार, तो ऐसा ही अच्छा। कोई और काम हाँ आपने कभी किया आलस के चक्कर में?
3: अब इस टाइम तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है सर कि मैंने क्या ऐसा आलस में किया है।
1: अच्छा, इस टाइम नहीं किया होगा आपने आलस, हो सकता है शाम में किया हो तो शाम में आपको याद आ जाएगा।
3: मतलब तुरंत याद नहीं आ रहा है।
1: अच्छा, तुरंत याद नहीं आ रहा है, इतना सारा आलस हाँ। है कि तुरंत याद ही नहीं आ पा रहा। ओफो। ऑलराइट, सो क्या सुनाना चाह रही हैं आप?
3: अरे सुनाना पड़ेगा क्या?
1: अब अगर चाहें, नहीं तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन तैयार है हमारा।
3: हाँ, नहीं गाना कुछ याद नहीं आ रहा अभी।
1: हाँ, तो हम सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपने सिर्फ दिखावे के लिए खरीदी थी, अब वो घर में धूल खा रही है?
3: अरे सर, बहुत सारी चीजें हैं कि बस उस टाइम उसको खरीद लेते हैं फिर वो रखी ही रहती हैं।
1: हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल,
3: जैसे नेकलेस वगैरह कभी कभी ले लेते हैं, देखा अच्छा लगा, लेकिन नेकलेस वगैरह पहनते नहीं है जल्दी,
1: पहनते नहीं है जल्दी।
3: कान का कुछ देखा, उसको खरीद तो लिया लेकिन फिर वो रखा ही है। गोल्ड पहनते हैं फिर उसको चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है, गोल्ड निकालो फिर उसको पहनो एक आध घंटे के लिए, फिर उसको निकालो।
1: अच्छा,
3: तो बस वैसे रखा ही रहता है,
1: वैसे रखा ही रहता है। तो आपको नहीं लगा कि जैसे घर में जो एक खाली कमरा है वहाँ पे एक आराम से दुकान लगा के रख दिया जाए तो लोग आकर के एक्स्ट्रा चीजें ले जाएंगे?
3: और दुकान ही लगी है, जानी है, बस झोले में वो पड़ा हुआ है, दुकान ही है, बस ये है कि दिख नहीं रहा है।
1: तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि घर में कई बार हम लोग ऐसी कई चीजें ले आते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए होती है और उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है,
3: इस्तेमाल नहीं होता है, फिर वो वेस्ट लगता है खरीदना,
1: है ना?
3: यू आर राइट।
1: अच्छा। ये दो बार वाला अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, और अच्छा लगा आपसे ये जान करके कि आपके अंदर काहिली बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम
3: नहीं सर, नहीं है मेरे अंदर।
1: नहीं,
3: आप गलत इन्फॉर्मेशन शेयर ना कीजिए।
1: इज्जत करते हैं हम जो भी काहिल होता है, क्योंकि देखिए काहिल इंसान ही थोड़ा सा नया कुछ करता है, बाकी सब तो हाथ से ही, हाथ वाला काम हाथ से ही करता है, काहिल इंसान हाथ वाला काम पैर से भी कर लेता है, ये उसके अंदर हुनर होता
3: है। हाँ, ये है, पैर से याद आया, कभी कभी जैसे मुझको पोछा झुक के नहीं मन करता है लगाने का, यूजुअली हम नहीं लगाते हैं पोछा, मेरी बहन वो लगाती है, मान लो हमको लगाना है, मेरा झुकने का बिल्कुल मन नहीं है तो मैं पोछे को डाल के बस पैर से ऐसे ऐसे कर देती हूँ, ये कर लेती हूँ कभी कभी।
1: आया आया,
3: ये याद आ गया।
1: ये हम इंडियंस में बहुत इस तरह की दिव्य शक्तियाँ पाई जाती है जिसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे ही करते हैं, पता है आपको?
3: हम लोग इंडियंस है ना, इंडियंस कुछ अलग ही होते हैं।
1: तो वही तो मैंने कहा, कुछ दिव्य शक्तियाँ पाई जाती है जिसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे कुछ करते हैं।
3: जी।
1: बहुत बढ़िया, चलिए आपको याद आया, आपने मान लिया, जाते जाते एक्सेप्ट कर लिया कि यू आर ऑल्सो
3: का है। जस्ट पैर से हमको याद आया कि पैर से क्या करते हैं, पैर से कभी कभी पोछा लगा लेते हैं पैर से।
1: अभी ऐसे हम जब और भी कई एग्जाम्पल देते रहेंगे आपको ऐसे याद आता रहेगा, इसलिए हमने कहा बहुत काहिल है।
3: चलिए
1: थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
3: ओके बाय
1: बाय बाय, टेक केयर। और चलिए भाई देखिए हमारे साथ में ये रीत जी जो है वो जुड़ गई थी गोंडा से। अब अगला जो नंबर है वो किसका है, कौन है कॉल पे, आइए देखते हैं।
4: हाँ जी हेलो,
1: हेलो
4: मैं सविता देवी बात कर रही हूँ।
1: और मैं आर्ची अदनान बात कर रहा हूँ।
4: अच्छा
1: हाँ जी बताइए क्या समस्या आपकी।
4: मेरी समस्या कुछ नहीं है, मेरी समस्या क्या वो खत्म हो गई है।
1: आपकी समस्या क्या है?
4: थोड़ी थी ताकि आपका आवाज साफ से सुनाई नहीं दे रहा था रेडियो पे।
1: अच्छा।
4: वो अभी जाके सही हो गया।
1: अभी अभी जाके कहाँ जाके सही हुआ ये?
4: अभी जाके सही हो गया, आपने सही किया होगा।
1: आपने कहा अभी जाके सही किया, तो अभी कहाँ जाके सही किया आपने?
4: कहीं नहीं गई, आपने सही कर दिया है।
1: तो कहाँ जाके
4: सही कर दिया?
1: कहाँ जाके सही किया?
4: एफएम गोंडा में जाके।
1: अभी अभी आपने क्या बोला, अभी जाके सही कर दिया, तो वही हम पूछ रहे हैं कहाँ जाके सही कर दिया।
4: अभी सही हो गया है।
1: तो ये सीधा सा बोली ना, अभी सही हो गया है।
4: हम लोग इंडियन है ना, हम लोग घुमा फिरा के ही बात करते हैं।
1: हम लोग इंडियन है नहीं, हम भारतीय हैं, आप इंडियन होंगी।
4: मैं भी भारतीय हूँ।
1: तो फिर आपने इंडियन क्यों बोला?
4: बोलता है इंडियन भी तो हूँ ना
1: आप। अच्छा तो आप दोनों हैं ना, हम भारतीय हैं।
4: नहीं, हम भी भारतीय, हम भी।
1: अब आप हमारे वाले में जबरदस्ती घुस रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप बताइए काहिली का किस्सा आप अपना सुनाइए जरा। ऐसा कौन सा काम है जो आपने काहिली में किया जिसके चक्कर में?
4: अरे मेरा काहिली का किस्सा बहुत है।
1: अरे वाह, एक
4: सुनाइए। ठंडी के टाइम में दूध गर्म करना बोलता तो मैं छोटे छोटे गैस सिलेंडर पे चढ़ा देती हूँ।
1: गैस पे क्या चढ़ा देती है?
4: खटिया रहता है ना।
1: हाँ।
4: खटिया के बगल में गैस रखा है, उसके ऊपर में छोटे से तेज से गर्म करती हूँ, उठ के नहीं करती हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, कभी ऐसा सोचा आपने कि जैसे बहुत काहली आ रही हो और मान लिए ठंडक का टाइम हो और दूध को पकाकर पीने की आदत हो, मतलब दूध को पकाकर पीने की आदत हो हम लोगों की, तो मान लिए अगर हम ऐसी कच्चा दूध पी करके और जाके चूल्हे के आसपास बैठ जाएं तो उसकी गर्मी से पक जाएगा अंदर ही अंदर, ये पूछना था आपसे।
4: नहीं नहीं नहीं,
1: थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है।
4: अब ठीक है?
1: अभी ठीक है। हाँ आप बताइए।
4: मैं तो दूध पीती नहीं, ये लोग जो है ना हमारे घर के बच्चे लोग जितने हैं वो लोग पी लेते कच्चे दूध भी।
1: अच्छा नहीं तो ऐसा नहीं होता है, ये जाके चूल्हे के बगल बैठ जाते हो तो मतलब अंदर ही अंदर दूध गर्म हो करके उबल करके और बढ़िया आराम से हजम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है?
4: वो तो हमें नहीं पता, वो शायद लोगों को पता होगा।
1: ओह अच्छा, ये हम बस सोच रहे थे, हमने कहा देखें इसमें क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मामला, तो हमने सोचा आपसे पूछे, आप थोड़ा सा हमको जानकार लगी।
4: नहीं नहीं मैं
1: कहाँ
4: जानकार हूँ, मैं तो।
1: अरे क्या बात कर रहे हैं आप, जानकार तो हैं, काफी ज्यादा जानकार हैं।
4: अरे वो तो हाँ, एक बार मैंने बहुत दिन पहले की बात है, 2019 की जब मैं आई थी यहाँ पे, तो हाँ। रेडियो पे कुछ चैनल नहीं लग रहा था, मैंने उठा के पटक दी थी, रेडियो 3 टुकड़ा हो गया था
1: रेडियो
4: के
1: को
4: पास से।
1: अच्छा रेडियो पटक दिया था कि वो ट्रांजिस्टर पटक दिया था?
4: रेडियो को ही पटक दी थी, 3 टुकड़ा हो गया था। उसके बाद से जब से मैं आपका शो सुनने लगी हूँ, मैं रेडियो को बहुत संभाल के रखती हूँ।
1: ओए होए, यानी आप पहले गुस्सैल थी और आरजे अदनान की आवाज और शो सुनने के बाद आप जो है बहुत कूल एंड काम हो गई है, सुकून वाली
4: जी। रेडियो का पति खाली, रेडियो के चलते शांत हूँ।
1: अच्छा सिर्फ रेडियो के प्रति हुई है आप, बाकी अभी भी कोई ज्यादा चूं चां करेगा तो आप उठा करके बस वही करेंगे जो अभी आपने बताया।
4: हाँ,
1: अच्छा।
4: बात करेगा।
5: इनका पति रेडियो है।
1: नमस्ते।
5: नमस्ते नमस्ते।
1: तो आपको छोड़ करके ये रेडियो को पतिमान बैठी है। आपको बुरा नहीं लगता है क्या?
5: नहीं नहीं।
1: अरे वाह, देखिए पति पत्नी की जोड़ी तो ये है सच में। बहुत प्यारे हैं आप भी, और बहुत सारी दुआएं आपको कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे।
4: और और सुनाइए।
1: और सुनाए, अभी हमने सुनाना शुरू ही कहाँ किया, अभी हमने कोई गाना भी तो नहीं सुनाया।
4: आप तो सुना दीजिए गाना।
1: तो अभी जाते जाते सुनाएंगे, उससे पहले क्या सुनाएंगे?
4: अच्छा तो मैं ही सुना दूं?
1: अरे प्लीज सुनाइए, देखिए आप अपना सुनाना चाह रही थी, आप हमको खाली फंसा रही थी, चलिए सुनाइए।
4: सुना दूं मैं इनके बारे में? सुना दे रही हूँ।
1: किनके बारे में?
4: जो बैठा है मेरे सामने, मेरे दादा के पापा के बारे में सुना दे रही हूँ।
1: नहीं तो आप ही तो अभी तक तो रेडियो का प्रेम आप बता रही थी। भैया ये बहुत खतरनाक वाला प्रेम है आपका, मारने पीटने वाला। खैर चलिए सुन लेते।
4: मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊंगी। अब इसके आगे याद भी नहीं है।
1: इतना जबरदस्त गाना आपने सुना दिया है कि अब मैं क्या बताऊं, मतलब अब उनकी तो मतलब हिम्मत नहीं होगी कुछ और कहने की।
4: अरे हिम्मत क्या, बता रही हूँ आपको, जो कल ही आपके पास गए थे, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी रख के बैठा है कि क्या बताऊं, मैं बार बार तंग आ चुकी हूँ, पता नहीं क्यों दाढ़ी रखा है।
1: अच्छा तो दाढ़ी देख के आपको क्या लगता है, जैसे ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई वृक्ष चलते फिरते आगे हो?
4: साधु बाबा।
6: हेलो।
1: अच्छा जी बताइए।
6: हमारे दाढ़ी में जादू है।
1: दाढ़ी में जादू
6: हो रहा है।
1: क्या होता है इस जादू से? क्या जादू से होता है?
6: जादू से पूरी विश्व दुनिया पे वशीभूत होती
1: है। पूरी दुनिया वशीभूत होती है, क्या बात है, सही बात कहा आपने। आप सुन लिया आपने सविता जी?
4: वो तो सुन रहे पर कैसा लग रहा है, मतलब काट नहीं रहा है, जिद करके बैठा है, हम रखेंगे, हम कैलाश चले जाएंगे, ऐसा भी बोल रहा है।
1: अरे आजकल जो है वो, आप अगर नई नई मूवीज देखिए जो आजकल बिल्कुल रिलीज हो रही है, उसमें जो हीरो हैं ऐसी लंबी लंबी दाढ़ियां रख रहे हैं, तो आप बहुत खुश नसीब है कि आपके पति पहले से ही एक जमाने से ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी रखे हैं। मजाक की बात नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, आप पोस्टर देख लिए आपको पता चल जाएगा।
4: देखिए
1: सफेद है ना, सफेद है तो मतलब ये लगेगा कि आज भी वो दबदबा कायम है।
4: अच्छा, वो तो है, बचपना तो कुछ कुछ बड़ा
1: है। वही चीज है। थैंक यू सो मच सविता जी, आपने कॉल किया और बड़े ही मजेदार अंदाज में हमसे बात किया, एंड आप लोगों की जोड़ी यूं ही सलामत रहे। अभी बहुत जल्दी आपने अपनी एनिवर्सरी भी मनाई है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये जोड़ी यूं ही चलती रहे और आप दोनों ही जुक्का जो स्वास्थ्य है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे, हंसते खेलते रहिए। थैंक यू सो मच।
4: सभी को शुक्रिया।
1: बिल्कुल। सो भाई ये थी हमारी सविता जी, जो कि अपने अंदर एक बचपना हमेशा से रखे रहती हैं, जैसा कि आप बातचीत में महसूस भी करते होंगे, एंड डेफिनेटली बड़ा मज़ा आता है बात करने में आपसे, काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नए काहिलों की खोज करेंगे। आज गोंडा FM पर RJ अदनान ऐसे काहिलों की तलाश में है, ऐसे आलसियों की तलाश में है, जो आलस के चक्कर में कुछ कुछ नया कारनामा अक्सर अपने घर में करते रहते हैं और हाइलाइटेड रहते हैं। तो चलिए भाई, अगर आप भी नंबर 1 काहिलों की लिस्ट में शामिल हैं तो गर्व के साथ कहिए मी टू, मैं भी काहिल, और फ़ोन घुमा दिए 6399-316-429 पर, 6393-316-429 पर, यानी 6399-316-429 ये स्टूडियो का नंबर है, इसी पे कॉल करना है और साथ ही अपने काहिली के किस्से को सुनाना है कि भाई आप किस किस्म की काहिली करते हैं। हाँ जी हेलो। हेलो
7: हेलो
1: जी अविनाश जी।
7: हेलो जी जी, गुड म॑ॉर्निंग। 6393-316-429
1: जी जी,
7: नंबर डायल करके मैं पहुंच चुका हूँ।
1: अच्छा आप ये आओ, मुझे लगा आप मेरा नंबर अपना नंबर बता रहे कि ये मेरा नंबर है, हमने कहा नहीं ये तो स्टूडियो का नंबर है।
7: ऐसा अगर हो पाए तो बिल्कुल करवा लेंगे रजिस्टर।
1: अरे नहीं नहीं प्लीज, ये छोड़ दीजिए, ये वाला नंबर छोड़ के दुनिया का कोई भी नंबर करा लिए, आप मेरा खुद का पर्सनल नंबर करा लिए, लेकिन ये वाला छोड़ दीजिए। और ये बताइए कि आपके काहिली के क्या किस्से हैं?
7: जी बहुत सारे किस्से हैं, तो इसमें से एक महत्वपूर्ण किस्से जो हो सकता है कि इसमें मेरा नुकसान भी हो सकता था या फिर नहीं भी हुआ, तो इसमें मेरा अवभाग्य मैं कहूँगा।
1: अरे वाह, क्या था ऐसा?
7: वो एक मतलब एक रोज मैंने देखिए मुझे बहुत नींद आ रहा था और मैंने खाने के बाद तो रात को 10-10:30 बजा होगा, तो मैंने चलिए एक नींद मार लेते हैं, लेकिन क्या है कि मैंने दरवाजा गलती करते हुए खुला छोड़ दिया और मैं तो मैंने ऐसे मतलब कि मोबाइल देखते थे अचानक कम नींद आ गई, मैंने सर चलिए थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, और गर्मी का मौसम था और रात भर ऐसे खुला रहा, जब सुबह उठा तो बहुत डांट पड़ी थी।
1: बाप रे, ये कुछ ज्यादा ही रिस्की नहीं था ये?
7: हाँ बिल्कुल, वही तो बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा रिस्क था इसमें।
1: कसम से अगर उस दिन कोई चोर ये जान लेता कि भैया आज हमारे अविनाश जी ने हमारा काम आसान कर दिया, खुलेआम दावत दे दी अंदर आने की, तो उस दिन के बाद से आपको जायदाद से बेदखल कर दिया जाता। क्योंकि यही कहते हैं ना कि आपके हिस्से का तो सब लूट गए, अब बाकी बची जमीन वो बाकी भाई बहनों में बांट दी जाएगी।
7: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन तो था कि बस सुरक्षित सुरक्षित था सब कुछ, बस सिर्फ सिर्फ नुकसान में नुकसान ये हुआ कि सुबह बहुत मतलब कि दिन भर मुझे गालियां सुनना पड़ा था उस दिन।
1: फिर भी कम सुना आपने, मतलब और कोई होता घर में, कोई कुछ और कोई घर होता तो शायद हफ्ते भर चलती रहती ये जिंदगी भर। तो आज भी आपके ये किस्से को सुनाते घर वाले किसी और के सामने?
7: हाँ बिल्कुल, बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल ही भुलक्कड़ है, ये तो दरवाजा भी खोल के लेता है और इसकी जिम्मेदारी में कोई देंगे तो हो सकता है आपका नुकसान ही हो जाए।
1: क्या बात है, नहीं नहीं वो तो खैर ऐसे हमारे भी बहुत सारे किस्से हैं जो कि हम यहाँ तो नहीं बताने वाले, लेकिन घर वाले बताते रहते हैं, अगर आप मेरे घर तक आएंगे तो हमारे बहुत सारे किस्से आपको पता चल जाएंगे।
7: जी जी, कभी मौका मिले तो बिल्कुल आएंगे उधर घूमने के लिए।
1: हाँ बिल्कुल, प्लीज आप आइए, स्वागत है, वेलकम है, लेकिन बस किस्सों को हम नहीं बताएंगे। सो कुछ सुनाना चाहेंगे आप? नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुनाना है, मैं कह रहा हूँ आप कुछ सुनाना चाहेंगे क्या?
7: आज थोड़ा मैं बिजी हूँ ना, क्योंकि आज हमारे इधर मतलब कि देखिए हम लोग हर संडे के दिन मतलब कहीं पर मतलब कि हमने गांव में ही इकट्ठा होके हम लोग साफ सफाई का करते रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जी जी तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि आज बिजी है इसलिए, और भीड़ भाड़ है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ चलिए आज रहने देते हैं दूसरे दिन।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, और प्लीज अगले हफ्ते जब जुड़िएगा तो ये साफ सफाई का जो आप लोग गांव वाले मिल करके करते हैं इसके बारे में प्लीज हमको थोड़ा विस्तार से बताइएगा रेडियो पे।
7: जी जी, तो हम लोग देखिए इकट्ठे में मतलब कि 10-12 लोग इकट्ठे हर संडे दिन होते हैं, और होने के बाद मतलब कि कार्य करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम सबके मतलब कि सब में एक जिम्मेदारी सब बना रहता है इसमें, और हम सभी गांव भी स्वच्छ रहता है, और बिल्कुल तो और इससे और जो हमारे आने वाले पीढ़ी है वो भी जागरूक होते रहते हैं।
1: क्या बात है, वाह, थैंक यू सो मच, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग मिल करके, और हम चाहेंगे किसी दिन आप लोग जब सब लोग एक साथ होइएगा तो जरूर कॉल करिएगा। थैंक यू।
7: जी जी बिल्कुल, थैंक यू,
1: थैंक यू। भाई ये जो ऑफ कोर्स बातचीत हुई है बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल रही, और हमारे अविनाश जी अक्सर कॉल करते रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
8: गुड मॉर्निंग सर।
1: हैप्पी बर्थडे टू यू।
8: Thank you, dear sir.

0: वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू। और देखिए अभी सुबह मैंने विश किया था, फाइनली आपसे बात हो रही है, आपको आपके जन्मदिन की लख लख बधाइयां।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: अरे नहीं, मतलब आपने
1: आशीर्वाद बना रहे और स्वस्थ व्यस्त मस्त रहूं।
0: बिल्कुल मेरा आशीर्वाद बना है, बस मुझे एक बात का डर है।
1: किस बात का डर?
0: ये जो काहली वाली बात हो रही है, कहीं आशीर्वाद में ये भी चिपक के ना चली जाए आप तक। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग असल में पूछ रहे हैं कि आपकी काहली का कोई किस्सा आप बताइए, जिसके आपने अपने आलस के चक्कर में कुछ अजीब हरकत की हो। जैसे कभी होता है ना कि टीवी का रिमोट उठाना है तो मन नहीं कर रहा, तो पैर से ही खिसका करके उठा लिया पूरा अपनी तरफ, तो
1: अक्सर होता है ना, पता करता हूँ। जैसे चार्जर का जो बोर्ड है वो दूर है काफी।
0: अच्छा,
1: तो मैंने एक छोटा सा वो बना रखा है, एक सॉकेट टाइप का बना रखा है, उसके एक उसमें एक लंबा सा तार जोड़ रखा है, वायर लंबा जोड़ रखा है।
0: अच्छा,
1: और उसको मैं उसमें जहाँ पे बोर्ड है वहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ
0: जी।
1: उसके बाद उसको उठा के रख देता हूँ चेयर पे।
0: अच्छा,
1: अब आलस इतना भरा है कि चेयर उठ के चेयर तक कौन जाए, तो जानते क्या करता हूँ मैं, जैसे बेड से आधा लटक लिए, लटकने के बाद हाथ के बल से वहां तक चले जहां तक कि पैर नीचे ना पड़े।
0: अच्छा,
1: फिर कुर्सी खींच के साइड में लेके तब उसके बाद चार्जर घुसेड़ा। ये तो रोज होता है, हर तीसरे दिन की कहानी है।
0: मतलब ये सब हम लोग जो कार्टून में एनिमेशन में देखते थे वैसा कुछ आप सच में कर रहे हैं।
1: हाँ होता है सर, ये अक्सर होता है।
0: क्या बात है। एक तो आपका आज जो बर्थडे पड़ा है इस साल 2026 में, वो संडे के दिन पड़ा है और इतना बेहतरीन मजा आ रहा है, इतनी सारी विशेज आपको लेकर के आ रही, जितना आज के टॉपिक पर बात नहीं हो रही उतनी तो आपकी विशेज आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: सर ये मतलब स्पेशल हो जाता है हर बार, मतलब ज्ञान स्थली में जुड़ के कहीं ना कहीं, मतलब जिन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ वो भी इतना प्यारा बना देते हैं दिन को कि क्या बताऊं।
0: अनूप जी प्लीज अब रुलाइए मत प्लीज। तो चलिए, अगर हमने स्पेशल बनाया है तो अब आपका फर्ज है कि हम सबको स्पेशल फील कराइए, अपने जबान से आप खुद से एक गाना सुनाइए, हम लोग सुनना चाहते हैं आपसे।
1: ये ऋषि कपूर साहब के ऊपर फिल्माया गया गाना है
0: जी,
1: और गाना सर ये है जीवन के दिन छोटे से ही।
0: अरे वाह, बहुत खूबसूरत, प्लीज सुनाइए।
1: जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ओ जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल हैं, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। ये

0: जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम्मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम्मत वाले, सोचे जो हम्मत वाले, सोचे जो हम्मत वाले। थैंक यू।
1: अरे अनुप जी
0: जी,
1: मैं अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर का दोस्त बोल रहा हूँ।
0: ओके,
1: बहुत बढ़िया गाया भैया, बहुत बढ़िया गाया।
2: बहुत बढ़िया आपका सबसे। बहुत मस्त, बहुत अच्छी। अब मुझे लगा ऋषि कपूर लाने में समय लगेगा, पता नहीं कैसे क्या है। अमिताभ जी दोस्त को बुला लेते हैं, दोस्त वैसे भी हर जगह काम आ ही जाते हैं। भाई लिटरली बहुत बेहतरीन गाना सुनाया आपने, और आपने बर्थडे को अपने खुद ही यादगार बना दिया, क्या बात है। ऐसे बहुत विरले लोग होते हैं जिसमें से एक आप भी हैं।
0: थैंक यू सर।
2: नहीं मतलब
0: आप ठीक हैं?
2: मैं, अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब मैं अमिताभ बच्चन जब जैसे उनसे लोगों से कांटेक्ट हो चुका है आपकी चक्कर में, तो मैं कितना खुश हूंगा, आप खुद सोचिए।
0: नवंबर खुश हुआ
2: ये।
0: जैसे उसकी क्या नाम है सुनील शेट्टी साहब का एक डायलॉग है
2: जी,
0: उसका धड़कन मूवी का,
2: हाँ।
0: अंजलि अगर तू मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा। भाई हमने भी पूछ लिया कि भाई अगर आपकी हो जाएगी तो क्या सबकी होने देंगे।
1: ये तुमने हमसे क्या पूछ लिया, हमको बहुत बुरा लगा।
2: बहुत बढ़िया, बहुत एपिक, वाह क्या बात है, नाइस, मजा आ गया। और एक बार वापस से अगेन आपको आपके बर्थडे की बहुत मुबारकबाद, और बहुत सारी विशेज आई हैं, सबका रिप्लाई आप प्लीज आकर के चैट बॉक्स पे दे दिए, चैट बॉक्स पे आपको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है।
0: चलिए तब, थैंक यू,
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू यू। और ये थे हमारे साथ में हमारे अनूप जी, देखिए कितने प्यार से और कितनी बेहतरीन बातों को हमने किया आपस में, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मुझे लगता है कि भाई अब बढ़ना चाहिए अगले कॉलर की तरफ, और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है। हाँ जी हेलो,
3: गुड मॉर्निंग सर।
2: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम है राजश्री रावत।
2: ओके, कहाँ से आप बात कर रही हैं आप?
3: सर अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, वैसे मैं जिला उन्नाव से हूँ।
2: अरे वाह, जिला उन्नाव की रहने वाली हैं आप, फिलहाल चंडीगढ़ में रह रही हैं?
3: जी सर।
2: चंडीगढ़ पे तो बहुत सारे गाने बने हैं जो गोंडा एफएम पर हम चलाते भी हैं। कब से सुन रही हैं आप?
3: सर मुझे ज्यादा दिन तो नहीं है, समथिंग 2 महीने होने वाले हैं।
2: अरे वाह, 2 महीने होने वाले, तो क्या वजह है आपका चंडीगढ़ जाने की उन्नाव से?
3: सर फैमिली रहती है यहाँ, तो हम फैमिली के साथ ही रहते हैं और अपना बिजनेस करते हैं।
2: अरे वाह, क्या बिजनेस करती है प्लीज बताइए।
3: सर मेरा साइबर कैफे है।
2: साइबर कैफे है, अरे वाह क्या बात है। तो साइबर कैफे की ओनर आप हैं, मतलब आप उसको रन कर रही हैं?
3: जी जी सर।
2: अरे वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब जब कोई फीमेल हमसे बात करती हैं और बताती कि वो अपना बिजनेस रन कर रही हैं, तो मुझे न जाने क्यों ऐसे वो हजारों महिलाएं याद आ जाती जिनके सपने होते हैं कि हम अपना कभी कुछ काम करें।
3: तो मेरा भी यही मानना है कि हर लड़की को, हर औरत को, सबको करना चाहिए, खुद पे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए।
2: बिल्कुल बेशक सही कहा। मैं चाहूँगा बहुत कम शब्दों में अगर आप प्लीज थोड़ा सा शुरुआत से बता पाएं कि ये कब सोचा था आपने, फिर ये कैसे मुमकिन हुआ आज आप यहाँ पे जो एक साइबर कैफे रन कर रही हैं, वो किस तरह से हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा।
3: जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में तो हमने जॉब की थी, क्योंकि कोई भी काम होता है हम बिना करे तो कर नहीं सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो
2: बिल्कुल
3: चाहिए होता, तो उसके लिए हमने सर 2 साल समथिंग जॉब की,
2: और
3: जॉब करने के बाद सर मुझे एक्सपीरियंस आया, और उसके बाद फिर हमने घर से बात की कि हमें अपना बिजनेस करना है। फिर हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट किया और आज हमें इस मुकाम पे खड़ा करते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए और अपना भी सपना पूरा कर रहे हैं।
2: वाह, अच्छा मुझे एक चीज़ तो हमेशा ये कहने अच्छी लगती है कि आप जो चाहते हैं वो तो आपके लिए करते हैं, लेकिन जब फैमिली आपके साथ खड़ी हो जाती है तो आपका हौसला सच में बढ़ जाता है।
3: जी सर, फैमिली हो तो फिर कोई भी सपना हो कभी भी पूरा किया जा सकता है।
2: तो मतलब मैं आप चाहूंगा, क्योंकि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, इस वक्त बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इवन मैं खुद सुन रहा हूँ, मेरी खुद की बहन है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो फैमिली की तरह सुन रहे हैं और अपनी बहन, अपनी वाइफ, अपनी बेटी को, अपनी माँ को सपोर्ट कर सकते हैं, आप प्लीज कहिए उनके लिए।
3: जी सर, तो मैं सभी सुनने वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन हो, वाइफ हो या कोई भी आपका रिलेटिव हो, उसको सपोर्ट कराइए, क्योंकि जब आप किसी का साथ देते हैं तो अपने सपने के साथ साथ आप उसका भी सपना पूरा करा रहे हो।
2: वाओ, क्या बात, क्या बात, बहुत प्यारी बात कही। और दो महीने से आप सुन रही हैं, हम शुक्रगुजार हैं आपके, और हम चाहेंगे कि अब आप भी इस फैमिली का हिस्सा बन गई हैं, तो आप बनी रहिए आप।
3: जी सर, बिल्कुल बने रहेंगे,
2: पक्का ना।
3: और हमारे जी जी सर, और हमारे महेंद्र भैया भी सुन रहे हैं आपको।
2: अच्छा,
3: और वो भी चैट बॉक्स में ही होंगे। और हमारी अप्पी भी है।
2: अच्छा,
3: संडीला से सुनती है।
2: ओ वाओ, मतलब आप लोग, मतलब एक साथ सब लोग, इतने लोग जुड़े हुए हैं, कितना मजा आता होगा।
3: बहुत अच्छा लगता है, हम सब सारे मतलब आपस में बातचीत करते हैं, चैट बॉक्स में भी होते हैं और पर्सनल भी बातें होती हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: वाओ, क्या बात है, मतलब इतना अच्छा लगा, आप दो महीने से सुन रहे हैं और आप अपना साइबर कैफे रन कर रहे हैं चंडीगढ़ में। चलिए, और बहुत जल्दी मेरा खुद का भी चंडीगढ़ जाने का सपना है, मतलब चूंकि वहाँ मेरा एक फ्रेंड है, उसने बुलाया
3: है।
2: बेशक बेशक, और आपको हम इनवाइट करते हैं लखनऊ में, जहाँ से आपकी
3: हम तो आते रहते हैं, अभी आए तो थे 9 तारीख को, अरे और अब दोबारा देखते हैं कब आना होता है।
2: मतलब आप आती रहती, हम इधर वेलकम करते रह गए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप कुछ सुनाना चाहेंगे?
3: मुझे भी बहुत अच्छा लगा।

0: फिलहाल चलते हैं अगली कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो।
1: पल पल दिल के पास गुंडा रहता है।
0: अरे भैया देखो आ गई है तनुश्री महाराष्ट्र से। क्या हाल है?
1: जी सर हाल तो बहुत बढ़िया है, आपके क्या हाल है?
0: हमारा हाल आपको सुन के और भी बढ़िया हो जाता है और आपने बहुत बढ़िया गाना सुनाया है।
1: नहीं सर।
0: वाह क्या बात है। देखिए तनुश्री काफी अच्छी स्टार्टिंग की आपने और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आपकी आवाज के कायल तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बन गए हैं, आपको सुन चुके आपका बहुत प्यारा गाना और आपके बचपने को भी देख चुके हैं, आपकी शरारत भी देख चुके हैं। अब आज थोड़ा सा आपकी काहिली के बारे में बात हो जाए कि आप भी क्या आलसी हैं, और अगर आलसी हैं तो कभी कोई आपने ऐसा काम किया है आलस के चक्कर में जो थोड़ा सा अजीब हो?
1: नहीं सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ।
0: ये अभी देखिए आप भी उन्हीं की तरह बोल रहे हैं, रीता जी की तरह, अभी हम आपको से निकलवा देंगे सच बोलते बोलते।
1: सर क्या हुआ? एक बात बताना चाहती हूँ। मतलब जब मतलब बहन मेरे पास होती है, अब बहन तो बाहर पढ़ने है, पर जब मेरी बहन मेरे पास होती है ना तब क्या होता, पापा रात को देर से आते थे तब क्या होता था, पापा उसे मतलब बहन को मेरे बुलाते थे ना, तो मेरी बहन बोलती थी दीदी तुम जाओ ना, तो मैंने बोलती थी अरे तुम्हें बुलाया है पापा ने, मैं कैसे जाऊँ, आप मतलब तुम जाओ, मतलब जब मतलब पापा क्या करते थे हर वक्त उसे ही बुलाते थे, मुझे नहीं बुलाते थे, तो मैं बहन को कहती थी पापा मुझे थोड़ी ना बुला रहे, तुम्हें बुला रहे थे तुम जाओ, तो उधर से आलसी मतलब मुझे उठने का आलस आता था ना, इसलिए मैं पापा ने मुझे बुलाया तब मैं बहन को कहती थी पापा ने तुझे बुलाया है।
0: देखा देखा इतना बड़ा आलस है आपके अंदर और आप कह रहे थे ऐसा कुछ है ही नहीं, ये देखिए ऐसे ऐसे निकल के आता है। ये छोटा सा आलस है, मतलब पापा बेचारे बुलाते जा रहे हैं और आप बहन को भेज रहे हो, ये कोई छोटा मोटा आलस है, मतलब आपको तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए, पता है
1: कौन सा,
0: सम्मानित करना चाहिए काहिली ऑफ द ईयर का, आलस ऑफ द ईयर का।
1: अरे सर इतना तो चलता ही रहता है जिंदगी में।
0: नहीं बेशक चलता रहता है, हम सब लोग काहिल हैं और वही हम जानना चाह रहे थे कि आपका क्या किस्सा, आपका किस्सा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि पापा बुलाते थे बहन को तो उसको आप भेजते ही थे, लेकिन जब आपको भी बुलाते थे तो भी आप मारे काहिली के उसको ही भेजते थे कि पापा ने तुमको बुलाया है। सो बहन बहन छोटी है या बड़ी है?
1: मुझसे छोटी है।
0: अरे तो आपको तरस नहीं आता बहन पे?
1: सर हाँ मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। अच्छा। वो केक से तब मुझे बोली कि सर जैसे आपसे बात करते हैं ना उस प्रकार सर को आप मतलब सर आपसे बात करते हैं ना तो सर को आप बहुत छोटी सी लगती हो, तो सर मैं आपको कितने साल की लगती हूँ?
0: बस मुझे लगता है कि अभी आपका 5 साल वाला आधार कार्ड बना ही होगा नया नया एकदम।
1: अरे बाप रे। अरे सर बोलो कितने छोटा हंस रहे होगे, मैं मेरी उम्र बता दूं तो मेरे बहुत छोटा आप पर हंसेंगे।
0: नहीं कोई बात नहीं, उम्र में क्या रखा है, अगर आपके अंदर बचपना है तो वो हमको अच्छा लगता है, पसंद लगती है।
1: हाँ पर एक छोटा बोल रहे थे ना सर जिस प्रकार आपसे बात करते हैं ना सर को लगता है कि आप बहुत छोटी सी हो।
0: हाँ तो मतलब आप ज्यादा ज्यादा कितने हो गए, आप 120 125 साल के हो गए, उससे ज्यादा तो नहीं हो गए ना?
1: अरे क्या?
0: नहीं नहीं अभी तो बहुत बड़ा, अभी तो 300 350 तक जाना है, डोंट वरी। वाह
1: 300 400
0: वाह क्या बात है, देखिए जिंदा दिली इसी को बोलते हैं। वाह बहुत अच्छा लगता है आपसे जब बात होती है तनुश्री, और आपने आज भी बात किया बहुत अच्छा लगा, और आपके आज का अंदाज शुरुआत करने का तो बड़ा यूनिक था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नेक्स्ट वीक पक्का। हाँ बताइए
1: सर, अभी मतलब टाइम थोड़ा कम है तो मैं हारमोनियम पर बजाकर सुनाऊं या नहीं?
0: दो लाइन को इस चीज सुना सकती हैं आप? जी
1: ठीक है सर, ओके।

0: जी सर,
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: टाइम
1: है।
0: कम है ना, तो इसलिए मेरे कोई बात नहीं, मैं जब अगले रविवार को कॉल करूंगी ना जल्दी, तो मैं गाना भी पूरा सुना दूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपने अपनी बहन को ये डेडिकेट किया, हमको बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपने नहीं किया है, लेकिन मैंने करवा दिया। ये मेरा काम है ना, हम यही सब करते रहते हैं। थैंक यू सो मच तनुश्री, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: ओके सर, बाय
1: बाय बाय, टेक केयर। तो भाई ये तो थी तनुश्री महाराष्ट्र से, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात कर रही थी। क्या आपने भी ये काहली की पराकाष्ठा पार की है और मम्मी या पापा के बुलाने पे छोटे भाई या छोटी बहन को भेजा है? अगर आप भी संदिग्ध हैं और इस मामले में आप भी रंगे हाथ पकड़े गए हैं, तो आप भी हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि आप पकड़े जा चुके हैं तो कोई नई बात तो नहीं है, है ना? इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ, आप भी हमको बता सकते हैं। फिलहाल इसी कड़ी में चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी, हेलो।
2: नॉट कनेक्टेड।
1: मुझे लगता है थोड़ा सा रुकिए, टेक्निकल ग्लिचेस है, आप ऐसे ही कॉल पे बने रहिए। हाँ जी हेलो, ओके। सो चलते हैं फिलहाल अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो हेलो, ओके। सो यस, लगातार आपसे बातचीत होती जा रही है। हाँ जी हेलो, ओके। सो कितनी सारी बात हुई हो, कितना सारा फन हुआ है आज, मतलब इतना एन्जॉयमेंट बहुत कम ही हो पाता है। एंड लिटरली पता नहीं क्यों, मैं मजाक नहीं करूँगा, जब आज स्टूडियो आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि आज हो सकता है बहुत ज़्यादा फन हो, एंड इत्तेफाक की बात देखिए कि इस वीक बहुत ज़्यादा फन हुआ, काफ़ी मज़ा आया। एंड आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया है, क्योंकि चैट बॉक्स पर आपके रिएक्शंस बता रहे हैं कितना ज़्यादा मज़े ले रहे हैं आप, कितना ज़्यादा फन कर रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम देखते हैं कि भाई जो कॉल आ चुकी है उस पर फ़िलहाल कौन बातचीत कर रहा है। हाँ जी हेलो हेलो, ओके।
2: द पर्सन यू आर,
1: हाँ जी हेलो
3: हेलो, नमस्कार
1: सर। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
3: नमस्कार नमस्कार, मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी। और आपको जन्माष्टमी की ढेर ढेर शुभकामना देना चाहता हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ चूड़ी बाबा, मैं चूड़ी बेचता रहता हूँ आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके फरुखाबाद में, अपने गाँव में बेचता रहता हूँ। मेरा नाम है चूड़ी बाबा।
1: चूड़ी बाबा नाम है सतीश जी, स्वागत है। लेकिन वो मेरा कस्बा, मेरा शहर वो नहीं है, ये मेरा इधर गोंडा पड़ता है।
3: हाँ गोंडा पड़ता है, तो गोंडा कोई ज्यादा दूर नहीं है।
1: तो कब आ रहे हैं आप गोंडा?
3: आपके मैं आपके दाम देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, आपके गोंडा में बहुत लोग मेरी बिक्री हो जाती है, वहीं से चूड़ी लेता हूँ।
1: अरे वाह,
3: माता बहनों को पहनाता हूँ और सामने में हरी हरी चूड़ियाँ पहनाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके मेरी बिक्री हो जाती है और उनका भी भला होता है। तो मैं आके बीच के पहनाते देता हूँ, कौन से नंबर की कौन साज की बनेगी, मेरी खूब बिक्री हो जाती है मेरे गांव में। सब बोलते हैं फोन फोन लगाते हैं तो बोलते हैं चूड़ी बाबा आगे, चूड़ी बाबा आगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे फोन लेके मेरे बात करते हैं, तब मैं उसके घर पर पहुँच जाता हूँ गाँव में, तो मेरी पूरी उड़ी बेचता रहता हूँ। तो मुझे मेरी रक्षा में खूब बिक्री हुई थी, और रक्षाबंधन भी बढ़िया बने थे। और आपके इधर रक्षाबंधन कैसे बने थे?
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ था, काफी अच्छा।
3: अच्छा अच्छा, और ये थे रक्षाबंधन बढ़िया बने थे, पानी आने तो बरसा ही होगा आपके इधर, तो मेरे पानी आने बरसा था, रक्षाबंधन भी बढ़िया बने थे।
1: बिल्कुल,
3: बचपन में जाते थे पेड़ के जैसे पेड़ होता है और बच्चे अच्छे जाते हैं, जैसे छोटे थे बचपन में जाते थे तो पेड़ के रस्सी के ऊपर रस्सी डाल लेते थे फिर, और झंडा बांध के झूला झूलते थे, फैंग बढ़ाते थे, एक दो तीन लोग झूला झूलते थे पेड़ के पेड़ पे, तो वो झूला झूलते बहुत अच्छा लगा था। और जैसे टूटा पेड़ होता था उस पर भी डिंगी पे बैठ जाते थे, तब झूला झूलते थे पेड़ के ऊपर से, तो बहुत अच्छा लगता था। गिली है, डिंडा है, लिप्पो है, बरसात के मौसम में, और इस मौसम में पतंगा भी उड़ाना भी।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा यादगार रही हैं और काफ़ी अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच चूड़ी बाबा कि आपने हमको कॉल किया। और फरुखाबाद से आप सुनते हैं, आप वहाँ पे चूड़ियों का कारोबार करते हैं, चूड़ी बाबा कहलाते हैं, और आज आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।
3: अब आपको बचपन में आप ये यादें बताइए क्या क्या आपने बचपन की।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आज थोड़ा सा समय कम है तो हम आपसे माजरत चाहेंगे, और साथ ही साथ एक बार वापस से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि भाई जिस तरह से आप फरुखाबाद से जुड़े उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच टू यू। एंड यस, लगातार हम बस कुछ कॉल्स और ले रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि अब टाइम हो ही चला है ख़त्म की तरफ। तो चलिए भाई अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी हेलो।
4: हेलो, अस्सलाम
1: वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
4: जी गुलफ़ा सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीला जिला हरदोई से।
1: अच्छा, देखिए पूरा जो समूह है आपका ग्रुप वो आ रहा है।
4: जी जी जी, अभी हमारी बहन ने रोशनी रावत ने मिलाया था।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल उनसे बात हो गई थी और आपका जिक्र किया था संडीला से।
4: जी जी,
1: कैसी हैं आप?
4: जी हम बहुत अच्छे माशाल्लाह, और आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज हम सबकी काहिली को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे।
4: अरे काहिल तो नंबर वन है हम।
1: अरे वाह, तब तो जमेगी, बताइए। चलिए शुरू हो जाइए।
4: जैसे पानी पीना होता है तो हमें लगता है हमारी हमारी जगह पे कोई और पी ले।
1: अरे बाप रे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। सच में ऐसा लगता है।
4: अगर छत के ऊपर जाना होता है ना, तो हमारा जाने का मन नहीं होता, हम दूसरे को भेज देते हैं।
1: अच्छा, छत के ऊपर ये कैसे, इसका जरा कोई जिक्र करिए कैसे, मतलब थोड़ा सा एक हम एग्जांपल के साथ।
4: छत के ऊपर कपड़े फैलाना है या कुछ भी काम होता है, छत के ऊपर जाना होता है तो हमारा जाने का मन नहीं होता है।
1: अरे बाप रे, तो इसका मतलब खाने में भी ऐसा होता है, जब कुछ खाना होता होगा यार आज खाने का मन नहीं, तुम खाओ हमारा वाला।
4: जी कोई और खा ले तो हमारा पेट भर जाए।
1: पक्का?
4: पक्का।
1: अच्छा, मतलब लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब आपको छत पे जाना है या पानी पीना है या खाना खाना है तो कोई और खा ले, मतलब ऐसे लोग कहाँ होते हैं, किधर होते हैं ऐसे लोग?
4: संडीला में होते हैं।
1: संडीला में होते हैं, एग्जैक्टली मैं बोल रहा
4: था। फिर संडीला के लड्डू खाते हैं।
1: हाँ, आपके यहाँ के तो लड्डू बहुत फेमस है, क्योंकि लखनऊ से आगे जब बढ़ो संडीला की तरफ तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि लड्डू ले लिया जाए, तो क्या आज भी वो लड्डू सच में फेमस है? कोई एक दुकान है या?
4: अभी भी वैसा ही स्वाद है, वैसा ही है, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, अभी भी वही मिठास।
1: तो आप जैसे मेहमानों को लड्डू लाके देते हैं कि आप मारे काहिली बोलते हैं कि जाओ किचन से जा खुद ही निकाल लो?
4: नहीं नहीं नहीं, लड्डू हमें खुद ही पसंद है तो हम खुद ले आते हैं।
1: नहीं हमें लगा
4: काहिली नहीं करते हैं।
1: हमें लगा उसमें मन नहीं करता है तो मेहमान बैठा है तो आप कहते हैं ठीक है पानी पी ले, अब जाओ अंदर जाओ लड्डू ले लो और चले आओ, ऐसा कुछ कहते होंगे, मुझे ऐसा लगा।
4: नहीं नहीं।
1: अच्छा, पक्का ना?
4: नहीं करते।
1: पक्का ना?
4: क्योंकि मेहमानों को जब मिलेगा तो हमें भी मिलेगा ना उसके साथ में।
1: अच्छा, तो लड्डू खाने में आप काहिली नहीं करते?
4: नहीं नहीं, उसमें नहीं है काहिल।
1: चलिए ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको जान करके ये हैरानी नहीं होगी कि हम ऐसे काहिल नहीं, लेकिन हमको जानकर जरूर ऐसी हैरानी हुई कि गुलफ़शा जी इस लेवल की काहिलियत आप अपने अंदर रखती हैं। सुपर, मतलब अवार्ड देना चाहिए सच में, मतलब आप तो हकदार हैं लिटरली।
4: जी
1: सच बता रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
4: जी सर, थैंक यू, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो भाई ये तो थी हमारे साथ में गुलफ़शा जी, और बात किया आपने, थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया। और मुझे लगता है कि अब चैट बॉक्स की तरफ भी नज़र इनायत कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस जो है वो आ चुके हैं। तो चलिए भाई कुछ मैसेजेस जो फटाफट से आए हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। और यस, लास्ट टाइम हमने जो मैसेज पढ़ा था उसके बाद से जो मैसेज आया है वो हमारी गीता श्रीवास्तव जी का है, और आपने लिखा है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आपने भी हमारे अनूप जी को विश किया है बर्थडे की। गीता श्रीवास्तव जी लिखती हैं गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी हैं, अदनान सर गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेश त्रिपाठी हैं, गुड मॉर्निंग आरजी सर, गुड मॉर्निंग टू यू। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय जी हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। महेंद्र जी हैं राजस्थान से, गुड मॉर्निंग अरुणाचल जी, गुड मॉर्निंग। अंबर जी हैं सुप्रभात, आपको भी सुप्रभात। और सनी पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आलसी मना ही आविष्कार करते हैं हमेशा, है ना। सो आलसी मने ही जो है यही आविष्कार करते हैं, और कायलपन है इसके अंदर लेकिन छिपा रही। नाजिया अंसारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। आपका भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सर एक बार आप करके देखो पक्का, ये तो दही बनता है। अच्छा, किस बारे में से आपने बोला था मुझे याद नहीं है। एंड इसके बाद चलते हैं आगे। तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे अंबर जी ने भी दी है, नाजिया अंसारी जी ने भी दी है, और बहुत अच्छा लगा कि भाई सब ने मिलकर के हमारे अनूप जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इतनी प्यारी विशेज दी हैं, इतना मज़ा आया है आज आपसे बात करके, और आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया ना, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, सो महेंद्र कहते हैं सर आलस पूछिए, आलस आलस पूछने में बड़ा मज़ा आता है। आज तो सबके आलस जान जान करके भैया बहुत मज़ा आया, बहुत काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। सो यस, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। इम्तियाज़ अहमद मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग इम्तियाज़। शमा जी फ्रॉम लखनऊ, अदनान सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी। अरविंद फ्रॉम मनकापुर, गुड मॉर्निंग आपको भी। सबलू जी आपको भी, सांता क्रूज मुंबई से सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। और सभी सुनने वाले श्रोता जो इस वक्त फ्रिक्वेंसी से अपनी कार से, अपने ट्रांजिस्टर सेट से, और साथ ही साथ रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को आज का ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए भाई, आज का तो ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, जिसमें हमने काफ़ी सारी बातचीत की। अब आपसे ले रहे हैं विदा, और अगले ही प्रोग्राम में वापस से आने वाले हैं, मिलने वाले हैं हम्टी डम्टी विद गीता दीदी में एक कहानी के साथ। सो फिलहाल बने रहिए अपने गोंडा FM 89.6 FM पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

हाँ जी, तो फिलहाल अब देखिए ठीक जो है नेक्स्ट प्रोग्राम का वक्त हो चला है। यस, हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। सो यस, आफ्टर गुड आफ्टरनून, ना गुड मॉर्निंग। सो हम सुनने वाले हैं अपना सेकेंड वाला शो हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, लेकिन उससे पहले इस शो की स्टार्टिंग तो जरा सुनिए।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: हाँ जी, और जिस प्रोग्राम का इंतज़ार था ऑफ कोर्स रहता है आपको, हमको, सबको, क्योंकि भाई ये जो अगला प्रोग्राम आता है बच्चों का स्पेशल हम्टी डम्टी विद गीता दीदी, इसमें गीता दीदी ना सिर्फ एक बच्चे की तरह बनके आती हैं बल्कि बहुत कलरफुल कपड़ों के साथ, ड्रेस के साथ एंट्री लेती हैं, और ये तो होता ही है, लेकिन सबसे जो टॉप लेवल की बात ये है कि हर बार की ऐसी अलग अलग कहानियाँ होती हैं जो हमको बचपन की तरफ ले जाती हैं। तो बच्चे तो एंजॉय करते ही करते हैं, बच्चे की मम्मी, बच्चे के पापा, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नाना, नानी, बुआ, फूफा, सब एंजॉय करते हैं। तो चलिए भाई, अपनी हम गीता दीदी का स्वागत कर देते हैं।
3: और एक बात बताना भूल गए,
2: बिल्कुल,
3: कहानियां तो ये बच्चों के लिए होती हैं पर सीख बड़ों को दे जाती हैं।
2: बिल्कुल सही कहा, तो इससे बच्चे भी सीखते हैं और बड़े भी सीखते हैं। तो गीता दीदी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं।
3: जी, आपका भी स्वागत है और बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं उनका भी खूब खूब खूब स्वागत है, और सुबह की नमस्कार, बहुत प्यार भरी नमस्कार।
2: बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और दीदी ये बताइए कि आज तो आप एकदम रेड में आई हैं।
3: हाँ भाई, मौसम ऐसा है, मौसम का तकाजा है, इसलिए मैं इस तरीके के ड्रेसेस डाल करके आ रही हूँ। और थोड़ा मेरा बच्चे भी जो है इस समय बिल्कुल मूड में रहते हैं और अच्छे अच्छे ड्रेसेस डाल के, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, तो कई बार वो सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आते हैं, फिर दीदी को देखेंगे कि दीदी तो बिल्कुल यूं ही है ना, तो पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, दीदी आज आपका ये कपड़ा अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए ही इतनी सज धज के आती हूँ।
2: अच्छा, हमें लगा आज ये टोमेटो डे, इसलिए आप लाल लाल बन के आए। एकदम टमाटर की तरह लग रही है आज हमारी गीता दीदी। सो दीदी, आज कौन सी स्टोरी लाई हैं आप?
3: है तो कहानी बहुत मजेदार बच्चों की है, बच्चों के लिए कहानियां होती ही हैं हमारी, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं जो बड़ों के काम आते हैं,
2: है ना। तो चलिए भाई, फिर इस गूढ़ रहस्य वाली कहानियों की तरफ चलते हैं। और वैसे भी आज के ज़माने में ये कहानी सुनना तो बड़ा रेयरेस्ट हो गया।
3: बिल्कुल हाँ, ये तो मुझे लगता है कि आज बच्चे भी कहानियों से दूर होते चले जा रहे हैं, मतलब किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो बच्चों को दे सके।
2: करेक्ट,
3: हम लोग बचपन में जब रात में सोते थे तो बिना कहानी सुने सोना ही नहीं है। हाँ, चाहे वो कितना ही थकी हो हमारी नानी दादी या मम्मा, लेकिन कहानी सुने वक्त जैसे लगता था कुछ अधूरा सा है।
2: अधूरा सा है, करेक्ट।
3: तो वो जब सुना देती थी तो फिर उसी दुनिया में खो जाते थे और खूब गहरी नींद, और नींद में बहुत सारे सपने लेकर के सुबह जो है ताजी सुबह हमारी फिर होती थी।
2: बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज दीदी ने वही दौर वापस से जिंदा कर दिया।
3: बिल्कुल, मुझे लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि रात में ना सही, दिन में सही, मौज मस्ती वाले दिन को मैंने चुना कि सारे बच्चे फ्री रहते हैं और फ्री रह के कहानियाँ सुने, साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी सुने, और वही कहानियाँ रात में अगर उन्हें वक्त मिले तो अपने बच्चों को भी सुनाए।
2: बिल्कुल, और मुझे लगता है ये ऐसा शो है जो इसमें आता है वो बच्चा अपने आप बन ही जाता है।
3: बन ही जाता है। और जो सुनता है वो भी बच्चा बन जाता है।
2: बन जाता है, क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी है। तो चलिए फिर कहानी की तरफ चलते हैं जो आज गीता दीदी संडे स्पेशल में हम सभी लोगों को सुनाने लाई हैं। सो क्या है गीता दीदी कहानी?
3: तो आज कुछ चूहों की कहानी लेकर के आए हैं।
2: ओहो, क्या बात है।
3: तो बहुत समय पहले की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल में मूषक वंश का एक बहुत बड़ा विशाल राज था, यानी कि चूहे ही चूहे थे उस उनके राज में। उस राज के महाराजा बहुत ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले थे, और उनकी एक छोटी सी और क्यूट और बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी थी जिसका नाम सुहिम था। राजकुमारी अपने मधुर स्वभाव, अपनी सुंदरता और अपने सरल हृदय के कारण पूरे राज्य के प्रिय थी। सब लोग राजकुमारी से बेहद प्रेम करते थे। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे राजकुमारी जी बड़ी होने लगी और विवाह के योग हो गई। तो महाराजा ने एक दिन भव्य राज दरबार लगाया और उन्होंने राज्य के दरबार में पंडितों को, विद्वानों को और अनेका अनेक बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि मैं अपनी पुत्री सुहिम का विवाह संसार के सबसे शक्तिशाली राजा से करना चाहता हूँ। आप सभी विचार करें और बताएं कि संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है। राजदरबार के पंडितों ने बहुत विचार विमर्श किया, सोचते रहे। अंत में उन्होंने कहा, महाराज हमारी दृष्टि में सूर्य से अधिक शक्तिशाली कोई है ही नहीं। सूर्य अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित करता है और उसकी किरणों से ही जीवन संभव है। महाराजा को ये बात बहुत अच्छी लगी, उचित लगी, सो उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों और अपने राज दरबारियों का एक बड़ा सा दल तैयार किया और कहा कि राजकुमारी सुहिम के विवाह का प्रस्ताव लेकर शीघ्र ही सूर्यदेव के पास जाइए। सब दरबारी सूर्य के पास पहुँचे और बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, महाराज का प्रस्ताव उनके सामने लाए और उनको पढ़ करके सुनाया गया। प्रस्ताव सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों ने मुझे संसार का सबसे शक्तिशाली समझकर सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका बहुत ही आभारी हूँ। लेकिन मैं उतना शक्तिशाली नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझ रहे हैं। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो आकाश में छाए वो बादल हैं। वे कुछ ही क्षणों में मेरी तेज किरणों को ढक देते हैं और मेरे प्रकाश को धरती तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। इसलिए आप विवाह का प्रस्ताव लेकर शीघ्र ही बादलों के पास जाइए। दरबारी सूर्य को धन्यवाद देकर बादलों के पास पहुंचे और उन्होंने राजकुमारी सुहिम का विवाह प्रस्ताव बादलों के सामने रख दिया। अब बादल भी हंसे बिना नहीं रह पाए और हंसते हुए बोले, मैं भी संसार का सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ भाई। वायु के तेज झोंके मेरे अस्तित्व को खत्म कर देते हैं, बदल देते हैं। वे मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान उड़ाकर ले ही जाते हैं। इसलिए जानते हैं, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो ये पवन देव हैं, हवा है। आप लोग शीघ्र ही वायु के पास जाइए। अब दरबारी जल्दी से वायु के पास पहुँचे और विवाह का प्रस्ताव सुनाया। वायु ने बड़े शांत भाव से कहा, भाई मेरे वेग को देखकर आप में शक्तिशाली, मैं आपको शक्तिशाली लग सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन मुझसे भी अधिक शक्तिशाली अगर कोई है संसार में तो वो है हिमालय पर्वत। मैं कितनी भी तेज गति से चलूं, हिमालय की विशाल पर्वतों से टकराकर मेरी गति रुक ही जाती है। वह अडिग और अचल खड़े रहते हैं। इसलिए आप बेहतर होगा कि राजकुमारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास शीघ्र अतिशीघ्र जाइए। अब दरबारी बहुत परेशान हुए। दरबारी हिमालय के पास पहुंचे और पूरी बात उनको विस्तार से बताई। हिमालय भी मंद मंद मुस्कुराया और बोला, मैं भला इतना शक्तिशाली कहां हूं, मेरा काम तो बस अचल खड़े रहना है। वास्तव में आप लोगों के अपने ही वंशज मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। पूछो कैसे, बोले बताइए। मूसक अपने छोटे से शरीर और मजबूत दांतों से मेरे शरीर को भी खोखला कर सकते हैं। वे मुझे काट काट कर मेरे भीतर रास्ता बना देते हैं। इसलिए मैं आपसे अधिक शक्तिशाली आपके वंशज यानी चूहों को, मूसकों को मानता हूँ। आप मूसकों के पास क्यों नहीं जाते। हिमालय की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्हें समझ में आया कि जिसे वे बाहर संसार में खोज रहे थे वह शक्ति तो उनके सामने वंश में ही मौजूद थी। कहते नहीं है, कस्तूरी कुंडल बसे अमृग ढूंढे बनमाही। ठीक उसी प्रकार कस्तूरी मृग अपनी नाभि में ही मौजूद सुगंध से अनजान होकर उसे जंगल जंगल खोजते फिर रहे थे। उसी प्रकार से वे योग वर की तलाश में दूर दूर दूर दूर भटक रहे थे। अंत में मूषक वंश में उन्हें एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, गुणवान और योग युवक मिल गया। महाराज को वह युवक राजकुमारी सुहिम के लिए सबसे उपयुक्त लगा। राजकुमारी की सहमत से दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। खूब अच्छी सी पार्टी हुई, सबने खूब छक्कर खाया और सभी को आमंत्रित किया गया। सारे लोग उस विवाह सम्मेलन में शामिल हुए और सब ने राजकुमार और राजकुमारी को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। विवाह के बाद सुहिम और उसका वर प्रेम, सम्मान और आनंद के साथ जीवन बिताने लगे। महाराज भी अपनी पुत्री को योग जीवन साथी मिलने से बहुत ही खुश थे। तो क्या सीख मिली बताइए तो जरा अदनान जी।
2: तो ये सीख मिली कि जब शादी करना हो तो थोड़ा आराम से देखा जाए, जल्दबाजी में न की जाए। कुछ गलत कहा क्या?
3: नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। कहते हैं ना, हमें अपनी शक्ति, योग्यता और अपने आसपास मौजूद अच्छी चीजों की कीमत पहचाननी चाहिए।
2: और क्या?
3: और दूसरों में श्रेष्ठता खोजने से पहले अपनी विशेषताओं को पहचानना और उनका सम्मान करना सीखना चाहिए।
2: सही बात है।
3: और कई बार होता क्या है कि जिस गुण की तलाश में हम पूरी दुनिया में इधर उधर भटकते रहते हैं, वो हमारे ही भीतर, हमारे ही लोगों में छिपी होती है, पर हम पहचान नहीं पाते हैं।
2: सही बात है, बिल्कुल सही बताया।
3: तो बस अब आप विवाह में जो है बहुत शीघ्रता नहीं दिखाइएगा।
2: नहीं नहीं, हम तो अभी तक आराम ही कर रहे हैं। इतना आराम कि अब लोगों का जीना आराम हो रहा है कि अब इतना भी आराम मत करो। वाह क्या बात है। तो भाई सनी पांडे ने लिखा है, गुड मॉर्निंग गीता दीदी अदनान सर।
3: वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी।
2: गुड मॉर्निंग सनी, थैंक यू सो मच। नाजिया अंसारी जी, अरविंद फ्रॉम मनकापुर और शमा जी फ्रॉम लखनऊ, थैंक यू सो मच। आप सब लोग बने हुए हैं 99.6 एफएम के चैट बॉक्स पर। और इस शो में कहानी कैसी लगी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और फिलहाल गीता दीदी अब कुछ ही देर में हाजिर हो रही हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। क्यों गीता दीदी?
3: जी बिल्कुल।
2: तो चलिए भाई, आप सुनते रहिए, मज़े लेते रहिए। फिलहाल गीता दीदी तो चली उन छोटे छोटे बच्चों को साथ में ला करके इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा बचपन वाला बनाने के लिए।

0: lies.
1: No, Papa.
0: Sleep time now.
1: Okay, Papa.
0: Good night, Johnny.
1: Good night.
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।

0: हेलो बच्चों, कैसे हो?
1: ठीक है दीदी।
0: अरे भाई नमस्ते तो करो।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते करना भूल जाते हो। मालूम है कि इतनी मस्ती करी है तुम लोगों ने। ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा है अभी, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, और अभी फिर जन्माष्टमी भी आने वाला है, और इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के आप लोग आए हो कि बस कुछ खास बात है क्या? इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आए हो आप लोग।
1: नहीं दीदी, कुछ ऐसा नहीं।
0: मुझे मालूम है कि क्या चल रहा है मन में, है ना? तो अब जन्माष्टमी आने वाली है, उसकी भी तैयारी चल रही होगी, और साथ ही साथ आज संडे है, संडे को फंडे बनाना है, इसलिए सारे बच्चे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहन करके हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो पहले तो मैं परिचय करा दूँ, हमारे साथ तो हमारी छोटी सी सानिध्या है ही नहीं, और क्यूट से हमारे शेषकर जी भी बैठे हुए हैं, साथ ही साथ बलराज भी बैठे हुए हैं, और देशराज भी है हमारे साथ, और बहुत सारे बच्चे हैं। टाइम तो हो ही रहा है, बच्चों को के अंदर उत्सुकता है कि दीदी ये अपनी बक बक बक बक कब ख़त्म करेंगी और मेरा प्रोग्राम कब चालू होगा। तो इसी उम्मीद में जो है सानिध्या सबसे पहले मेरी ओर देखती रहती है। सानिध्या इस तरह मेरी तरफ मत देखा करो प्लीज़। सानिध्या क्या लेके आई हो आज तुम? कविता लेकर के आई हो। कौन सी कविता है? ओहो, पर्वत कहता शीशो। आज मैंने भी एक कहानी सुनाई थी, मालूम है सबसे जो तीन लोगों की कहानियाँ थी, तीन नहीं चार लोगों की कहानियाँ थी कि सबसे स्ट्रांग कौन होता है। तो सबसे स्ट्रांग किसी ने कहा सूरज, तो सूरज ने कहा नहीं मैं नहीं, हवा, तो बादल, फिर उसने कहा हवा, फिर हवा ने कहा पहाड़, तो पहाड़ ने कहा अरे भाई मैं भी स्ट्रांग नहीं हूँ। लेकिन आज सानिध्या बताने वाली है कि हिमालय कितना स्ट्रांग है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, और जबकि सच में आंधी पानी भी हिमालय से नहीं डरते हैं। तो देर ना करते हुए सानिध्या अपनी पोयम सुना दो।
2: पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में दहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ दिल दिल तरल तरल, उठ उठ दिल दिल तरल तरल, भर लो भर लो अपने दिल में मीठी मीठी नगर अमन, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भर, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार।
0: वाह वाह, तो ताली बजा दीजिए बच्चों। तो देखिए कुछ ना कुछ बातें सभी कह रहे हैं, पहाड़ भी कुछ कह रहा है, धरती भी कुछ कह रही है, पृथ्वी भी कुछ कह रही है, और जो हमारा सागर है उसकी जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं वो भी कुछ ना कुछ कह रही हैं। तो सब कुछ ना कुछ सीख दे रहे हैं ना बच्चों।
1: जी दीदी।
0: हाँ, तो जैसे हिमालय कहता है कि हमेशा जो है शीश उठाकर खड़े रहो, और शीश उठाकर कैसे खड़े रहोगे, जब तुम्हारे मन में सच्चाई होगी, सच्चाई की राह पे चल रहे होगे, तो कोई तुम्हें झुका नहीं सकता है, है ना? और उसी तरीके से जो हमारा सागर है वो भी कहता है कि देखो सागर में कितनी गहराई होती है ना, तो उसी तरीके की गहराई हमको भी अपने दिलों में रखनी चाहिए, यानी सबके लिए भाव रखना चाहिए, बड़े हैं छोटे हैं उस हिसाब से हमको सबको सम्मान भी देना चाहिए। और धरती कहती है धैर्य ना छोड़ो, धैर्य का मतलब तो समझते होंगे आप लोग ना।
1: जी दीदी।
0: तो कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो हमको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, घबराना नहीं है, मतलब है ना। कभी कभी होता है कि थोड़े से नंबर कम आ गए तो जैसे लगता है कि क्या आफत आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, आज कम आए तो कल ज्यादा भी आ जाएंगे, है ना? सारा कुछ तो मेहनत में है ना।
1: जी,
0: तो इसलिए क्या है कि हमको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, और फिर नई उमंग से क्या है आगे बढ़ना है, और फिर से अचीवमेंट, है ना? तो देखिए यही कविताएं हमको कितना सिखा जाती हैं। हमारे जो पोएट थे उन्होंने खूब सोच समझ कर लिखा है कि जो बच्चे कविताएं पढ़े तो उसके भाव को भी समझे, और उसी तरीके से अपना जीवन अपने आप संवारने का प्रयास करें, है
1: जी
0: ना?
1: दीदी।
0: तो भाई बहुत अच्छी कविता हमारी सानिध्या ने सुनाई है, और उसके बाद देखते हैं बलराज जी भी कह रहे थे कि मैं भी एक कविता सुनाने वाला हूँ, क्यों बलराज
3: जी? दीदी,
0: तो चलो अभी तो कविता का सेक्शन शुरू हो रहा है और देखते हैं बलराज आज क्या सुनाने वाले हैं।
3: आज मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य कुरुक्षेत्र की कुछ लाइनें सुना रहा हूँ।
0: ओहो, कुरुक्षेत्र की, यानी कि आप तो सीधे युद्ध स्थल पहुँच गए हैं ना,
3: जिसमें मनुष्य द्वारा विज्ञान के दुरुपयोग व युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तचकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तुझे अभी अज्ञान, फूल काटो कि तुझे अभी कुछ नहीं पहचान। खेल सकता नहीं तू ले अभी हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है या बड़ी धार। फिर वे कहते हैं, रश्वती भूखे मनुष्य का श्रेय नहीं या विज्ञान का कट अग्नि। श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, मानवों के हित अर्पित मानवों की आयु।
0: बहुत सुंदर कविता, कैसे याद कर लेते हो तुम इतनी प्यारी प्यारी कविता। मालूम है कभी मेरे साथ क्या होता था कि जो कविता मुझे अच्छी लगती थी, जो सरल भाषा में होती थी, वो तो मैं खूब अच्छे से रट लेती थी, लेकिन इस तरीके की जो क्लिष्ट कविताएं होती थी ना, वो तो मुझे कभी रटती ही नहीं थी। देखिए, पर मैं तो पहले तो ताली बजा दो भाई बलराज के लिए, इतनी प्यारी कविता सुनाई है उन्होंने और इतनी कठिन भाषा में सुनाई है, कितनी उसके अंदर गहराई छिपी हुई है उस शब्दों में, तो मुझे तो नहीं याद होती थी, पर बलराज को तो मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी कविता एक बार में सुना दी, एक झटके में, बिना अटके बिना भटके सुना दी। तो ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, काबिले तारीफ।
1: जी दीदी,
0: तो हमारे शेषकर जी कहाँ खोए हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या बात हो गई शेषकर?
4: कोई बात नहीं दीदी।
0: लग तो रहा है कोई बात हो गई है, किसी से लड़ाई हुई है क्या?
4: नहीं
0: नहीं हुई है, तो आज मैं लड़ लूंगी आपसे, क्योंकि आज आप क्या सुनाने वाले, पहले तो ये बताइए, लड़ाई तो मैं बाद में करूंगी।
4: आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के बारे में बताने वाला।
0: अच्छा, आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है?
4: जी दीदी।
0: अच्छा, हर दिन हमारा देश जो है इतने सारे चीजें मनाता है, डेज मनाता है, कि खुद भी कंफ्यूज में हो जाती हूँ, कितने सारे डेज, एक एक ही दिन में कई सारे डेज जो है वो मनाए जाते हैं।
1: जी दीदी।
0: तो मुझे अच्छा भी लगता है और मैं आप लोग की तारीफ भी करती हूँ कि आप लोग चुन चुन करके विषयों को लेके आते हैं और अपने जो मित्रों को सुनाते हैं, अपने दोस्तों को सुनाते हैं, और सुनकर उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इसका।
1: जी दीदी।
0: तो चलो देखते हैं कि आज ये क्या सुनाने वाले हैं हमारे छोटे से शेषकर।
4: भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस देश की सामाजिक आर्थिक विकास में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और इन उद्योगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर विचार करने के लिए समर्पित है। लघु उद्योग क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन माना जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: कृषि क्षेत्र के बाद लघु उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र कम पूंजी निवेश के साथ अधिक से अधिक लोगों को आजीविका उपलब्ध कराता है। बड़े कारखाने आमतौर पर बड़े शहरों या औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित होते हैं, जबकि लघु उद्योग ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में भी आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
4: इससे देश का संतुलित विकास संभव होता है। देश के कुल निर्यात में लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है।
0: जी जी बिल्कुल ठीक।
4: यह दिन युवाओं को पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर का व्यवसाय शुरू करने, उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करता है। भारत सरकार ने लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास और उनके विस्तार के लिए अगस्त 2000 में एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की थी। इसी नीतिगत निर्णय के समर्थन और लघु उद्योगों की महत्ता को रेखांकित करने के लिए पहली बार 30 अगस्त 2001 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। तब से हर साल यह परंपरा निरंतर चली आ रही है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। मालूम है बच्चों पहले क्या होता था कि देखिए इतना जो ये आज इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है ना,
1: जी दीदी,
0: वो पहले नहीं हुआ करती थी, तब मालूम है कि जो हमारा वातावरण था, जो हमारा पर्यावरण था, वो बहुत ही साफ सुथरा हुआ करता था। पर आज क्या है कि पहले कुटीर उद्योग, सुना होगा आप लोगों ने नाम कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब जानते हैं आप लोग?
1: नहीं
0: जानते। आज मैं बताती हूँ आपको कुटीर उद्योग क्या होता था। पहले क्या, हमारी खेती किसानी हुआ करती थी, है ना
1: जी।
0: क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बहुत ही लिमिट में होती थी, बहुत ही कम होती थी उस समय। पुराने समय की बात कर रही हूँ मैं। और उस समय जैसे कि जो घर की औरतें होती थी या थोड़े से बड़े बच्चे होते थे, वो क्या करते थे कि घर पे जो हमारा रॉ मटेरियल होता था ना, उससे कुछ ना कुछ सामान बना लिया करते थे और उन्हें छोटे छोटे बाजारों में बेच करके अर्निंग होती थी, पैसा आ जाता था।
1: जी दीदी, जैसे मिट्टी के खिलौने हो गए।
0: हाँ, मिट्टी के खिलौने, अचार बना लिए, मुरब्बे बना लिए, चटाइयाँ बुन ली, पंखे बुन ले, हाथ वाला पंखा याद है ना आप लोग को। और चटाई भी हुआ करती थी जमीन पर बिछाने के लिए। बहुत सारे लोग जो है उस समय चटाइयों पे सोते थे, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा सामान जो है घर पे ही बन जाता था। जैसे शहद, मधुमक्खियां पाल ली, मुर्गी पाल लिया, गाय पल गई, बकरियां पल गई, और इनसे बहुत सारा प्रोडक्ट भी घर पे हम जो परिवार के सदस्य होते थे, जो महिलाएं होती थी, जो थोड़े से काम करने लायक बच्चे होते थे, वो सब मिल करके इसका उत्पादन घर पे ही कर लिया करते थे। तो इसको क्या कहा गया था, कुटीर उद्योग। आजकल जो है किसी के पास बच्चों टाइम ही नहीं है
1: जी दीदी,
0: है ना। समय बदलता जा रहा है तो सारे लोग जो है अब उसकी जगह लघु उद्योग ले आए हैं। ये भी कुछ हद तक जो है हमारी इकोनॉमी उसको बढ़ा रहा है। लघु उद्योग में भी छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल अब होने लगा है
1: जी दीदी,
0: है ना। तो छोटी छोटी मशीनों से हम ढेर सारा सामान जो उत्पादित कर लेते हैं, इसी को जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलते हैं
1: जी दीदी।
0: तो अब ये ग्रामीण स्तर पे भी फैल गई है। अब गाँव के लोग भी वो काम नहीं, मतलब थोड़ी छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे अभी बढ़िया बनाने का, पापड़ बनाने का काम चल रहा हो, तो उसके लिए छोटी छोटी मशीनों की जरूरत पड़ती है ना।
1: हाँ दीदी,
0: हाँ,
1: बड़ा आसानी से हो जाता
0: और बड़ा आसानी से हो जाता है। और पहले क्या होता था, यही काम सिलबट्टों पे हुआ करता था
1: जी दीदी।
0: तो काफी लेकिन एक बात है, वो तब उस समय के लोग हेल्दी भी हुआ करते थे, अब थोड़े से आलसी हो गए हैं
1: जी दीदी,
0: है ना। मशीनों पे काम करने से काम आसान तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य का बहुत नुकसान हुआ है। हर आदमी देखते हो ना, थोड़ा थोड़ा बीमार भी रहता है, थोड़ा थोड़ा क्या, ज्यादा ज्यादा भी बीमार रहता है। तो यही कारण है कि हमने अपने जो हेल्थ को खुद ही बिगाड़ लिया
1: जी दीदी। इसी पर लियो टॉलस्टॉय ने, हाँ, एक कहानी है उनकी,
0: हाँ,
1: आम बराबर गेहूं,
0: आम बराबर गेहूं,
1: हाँ, इसी में बताया गया है कि पहले के इंसान हेल्दी होते थे,
0: हेल्दी होते थे
1: और अब के,
0: हाँ, आज क्या, हमारी नीड्स बहुत बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई हैं, तो हमें ज्यादा ज्यादा सामान निर्मित करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को जरूरतें हैं तो हमें पहुँचाना पड़ता है
1: जी दीदी।
0: तो कहीं ना कहीं जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब बन गई हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, और उससे निकलने वाला जो काला काला गंदा गंदा कार्बन डाइऑक्साइड वाला धुआं होता है ना, वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है
1: जी दीदी।
0: किसी के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, तो किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को टीबी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है,
1: और
0: इतनी सारी बीमारियाँ हैं कि हमारा पैसा ज़्यादा बीमारियों को दूर करने में ही डॉक्टरों के पास पहुंच जाता, मतलब हेल्थ पर खर्च हो जाता है।
1: और दिल्ली में इतना ज्यादा है ये कि हर पांचवें इंसान को ये होता है, कैंसर,
0: हाँ, कैंसर जैसी बीमारी, अब आम बीमारी में, हाँ, आम बीमारियों में इसकी गिनती हो गई। पहले तो बहुत रेयर सुनाई पड़ता था कि उनको कैंसर हो गया, तो लोग बड़ा सरप्राइज होते, अरे उनको कैंसर हो गया। आज हर पांचवा छठा व्यक्ति कैंसर का शिकार हो जा रहा है
1: जी,
0: ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है।
3: कैंसर का लगभग 50% तो नशा ही है, सिगरेट विगरेट।
0: हाँ, ये है कि बस ये कि हमारे जो संस्कार हैं वो पेरेंट्स के पास भी समय नहीं होता है कि वो बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चे बाहर निकलते हैं तो थोड़े से जैसे हॉस्टल हॉस्टल में पढ़ने चले गए तो वहाँ पे उनको बुरी संगत की भी वो हो जाती है, फिर वो गंदी गंदी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं ना, सिगरेट पीने लगते हैं और भी बहुत सारे नशे होते हैं, उसके एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो उनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालता है ना। आप लोग ऐसा मत करना है ना,
1: हम लोग नहीं करेंगे
0: है ना
3: जी।
0: नो नो, हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग तो अच्छे बच्चे हैं और यहीं से सीख भी देंगे, और जो बच्चे हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे भी यही अपील करेंगे कि जो गंदी आदतें हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए
1: जी दीदी,
0: है ना। आप लोग क्या कह रहे हैं
1: दीदी? हम लोग इन सब चीजों से दूर रहेंगे,
0: हाँ, और अपने दोस्तों को भी दूर रखेंगे, हाँ। आज से हम यही प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने दोस्तों को भी इन बुरी चीजों से बचाएंगे, है ना
1: दीदी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात कही है, तो चलते हैं हम देशराज की तरफ, और देशराज आज क्या सुनाने वाले हैं?
1: दीदी दीदी 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है।
0: हाँ, ये तो अभी मैंने बताया था कि ये पूरा सिस्टम जो है हमारा त्योहारों से, मतलब हमारा देश जो है त्योहारों से भरा हुआ है, और हर दिन कोई ना कोई त्योहार हम मनाते रहते हैं, और हमें तो बहुत मजा आता है, किसी बहाने ना छुट्टी भी मिल जाती है ना
1: जी दीदी,
0: और फिर घर की साफ सफाई भी हो जाती है, मम्मी हमको भी जुटा लेती है, कहती है नहीं काम तो करना ही पड़ेगा
1: जी दीदी
0: लेकिन मजा भी बहुत आता है ना
1: जी दीदी। हम लोग व्रत भी रहते हैं।
0: हाँ, हम भी व्रत रहते हैं, और उस दिन तो हम तो व्रत क्या ही रहते हैं, खूब खाते हैं क्योंकि देखिए ये खुशी का त्योहार है ना, कृष्ण का जन्म हुआ था तो खुशी का त्योहार है
1: जी दीदी,
0: तो अच्छा अच्छा सामान खाना चाहिए
1: जी दीदी
0: तो मम्मा कहती हैं कि तुम ऐसे ही बस खाती रहोगी तो व्रत के कैसे रहोगी
1: जी दीदी,
0: तो मैं तो कहती हूँ कि भाई जन्म का भी हम लोग का बर्थडे होता है, हम लोग कितना अच्छा अच्छा खाते हैं
1: जी दीदी,
0: तो ये कान्हा का बर्थडे है, क्यों ना अच्छा अच्छा खाए, है ना
1: जी दीदी।
0: बलराज
3: जी दीदी
0: और सानिध्या तुम खाते हो कि नहीं खाते हो?
5: दीदी खाती हूँ।
0: हाँ, ये भी खाती है, बहुत मजा आता है ना, अच्छे अच्छे सामान बनते हैं घर पे और खूब खाते भी और खिलाते भी हैं। तो चलो चलते हैं हम देशराज की और सुनते हैं कि वो क्या सुनाने वाले हैं इस जन्माष्टमी के अवसर पर।
1: दीदी मैं रसखान जी का पद सुनाने वाला हूँ।
0: रसखान जी का
1: जी जी दीदी,
0: तो चलो।
1: मानस हो तो वही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो करो बसेरु मिली
0: कालंदी
1: कुल
0: कदम के डारन।
1: जिसमें रसखान जी कहते हैं यदि मैं मनुष्य हूँ तो मैं वही ग्वालों के साथ बस,
0: हाँ, तो उन्हीं के साथ
1: कृष्ण जी के साथ
0: एंजॉय करूं, कृष्ण के साथ और क्या,
1: और जो मैं पशु हूँ तो मैं वही नंद जी की गाय बनूं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वृंदावन में चरूं, और जो अगर मैं पत्थर हूँ तो उसी पर्वत का, जो
0: श्री कृष्ण जी ने जो इंद्र का घमंड नष्ट करने के लिए उसको अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था
1: जी दीदी, और अगर मैं खग यानी की चिड़िया हूँ तो वही कदम्ब की डालों में मैं बसूं,
0: जहाँ श्री कृष्ण बैठ के बांसुरी बजाया करते थे ना
1: जी दीदी,
0: हाँ, और
1: मस्ती किया करते थे
0: तो ये तो बहुत अच्छी कविता, मुझे भी बहुत अच्छी लगती, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भूल जाती हूँ ना
1: जी दीदी,
0: कविता के मामले में थोड़ी सी कच्ची हूँ तो चलो फिर से हमारी सानिध्या कह रही है कि आप हमको भी मौका दो कि आप ही बस बकबक बकबक करती रहोगी, मुझे भी तो बोलने दो। सानिध्या अब क्या बोलने वाली हो आप?
5: दीदी कहानी।
0: कहानी
5: जी दीदी,
0: चलो फिर तो मजा लेते हैं कहानी का। कौन सी कहानी है?
5: कबूतरों का झुंड और चूहा।
0: भाई ये तो मैंने बचपन में भी सुनी है, और बहुत बार मेरी जो दादी माँ थी वो ये कहानी सुनाया करती थी, बहुत मजे लेके मैं सुनती थी कि इसको मैंने किताबों में भी पढ़ा बच्चों
1: जी दीदी, हम लोग
0: यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ है ना, एक लेसन था हमारा यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें मैंने ये कहानी सुनी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी। तो चलो भाई अभी तो किसकी जुबानी?
1: सानिध्या
0: की जुबानी सुनते हैं।
5: एक जंगल में एक कबूतरों का बड़ा झुंड रहता था। सभी कबूतर मिलजुल कर रहते और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे।
0: ये तो होना ही चाहिए।
5: एक दिन वे दाना चुनते हुए एक जगह पहुंचे। वहां जमीन पे बहुत सारा दाना बिखरा हुआ था। कबूतर खुशी से दाना चुनने लगे, लेकिन वह दाना एक सितारी का जाल था। देखते ही देखते सभी कबूतर जाल में फंस गए। कबूतर घबरा गए। तभी उनके मुखिया ने कहा, घबराओ मत, अगर हम सब एक साथ जोर लगाएं तो इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
5: सभी कबूतरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाए और जाल को उठाकर उड़ गए। सितारी उन्हें पकड़ नहीं सका। कबूतरों के मुठिया उन्हें अपने मित्र हिरण्यक्ष चूहे के पास ले गया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल डालना शुरू किया और थोड़ी ही देर में सभी कबूतर आजाद हो गए। कबूतरों ने खुशी से कहा, आज हमारे इत्ता ने हमारी जान बचाई और तुम्हारी मित्रता ने हमें मुक्त कर दिया।
0: बिल्कुल। तो देखिए भाई, ऐसे ही मित्र होने चाहिए जो एक दूसरे का साथ दें, है ना। चूहे से दोस्ती थी उनकी, अंत में चूहा ने उनकी मदद करी और जाल को अपने छोटे छोटे दांतों से कुतुर कुतुर के कुतुर कुतुर के और कबूतरों को आदात कर दिया।
1: जी जी जी।
0: तो बहुत अच्छी ये स्टोरी इन्होंने सुनाई है, मजा आ गया सुन करके। तो देखिए बच्चों, आज एक पेरेंट्स हैं, आप लोगों से मिलने आए हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम, तो वो आपके बीच में है, तो सबसे पहले आप ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। तो कैसे हैं सर आप?
6: नमस्ते, बढ़िया है।
0: आपको बहुत अच्छा लगता है बच्चों का प्रोग्राम?
6: हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी।
0: मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए पेरेंट्स भी हमारे इस हम्टी डम्टी विद गीता दीदी प्रोग्राम में शामिल हो जाते, क्योंकि प्रोग्राम बच्चों का इतना ज्ञानवर्धक है और उसको सुने बिना रह नहीं पाते हैं लोग, और कभी ना कभी आ ही जाते हैं। और सानिध्या की मम्मी भी अक्सर आती हैं और वो भी प्रोग्राम में शामिल होती हैं, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, इसलिए वो समय बहुत थोड़ा निकाल पाती हैं। तो कभी हम फिर से उनसे आग्रह करेंगे कि वो हमारे स्टूडियो में आए और हमारे बच्चों के साथ साथ बहुत सारे जो बच्चे बाहर बैठे हैं उनकी हौसला अफजाई करें। तो सर बताइए, और कुछ बच्चों के बारे में बताइए।
6: बच्चे इस कार्यक्रम से जो है उनको स्वयं का जो व्यक्तित्व का विकास हो रहा है।
0: जी बिल्कुल। हाँ, ये हमने देखा, भले वो कहीं ना कहीं से वो तैयार करके लाते हैं, मुझे खुशी इस बात की होती कि इसी बहाने उनको याद हो रहा होता है जो हमने कभी कल्पना नहीं की होती है कि ये इस तरफ ध्यान देंगे उस तरफ ध्यान देंगे, वो ध्यान बच्चे दिला देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा तैयार करके लाते हैं कि लगता है कि ये तो
6: एक, हाँ,
0: इस पर तो हमारा ध्यान नहीं था और ये एक इम्पोर्टेंट अंग है हमारे ज्ञान का।
6: बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं आपकी पूरी टीम को जो है धन्यवाद देता हूँ कि गोंडा जैसे छोटे शहर में बच्चों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम लेकर के आए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार बच्चों फिर से ताली बजा दो अपने लिए। तो चलिए फिर से, अब कौन किसको सुनाना है भाई? देखिए देखिए देखिए देखिए भाई, बलराज बलराज भाई, हमारे छोटे से बलराज बहुत ज्ञान भरी बातें करते हैं और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते हैं अपने दोस्तों के लिए। तो आज अब क्या सुनाओगे
3: दीदी? आज अंतर्राष्ट्रीय लापता दिवस है।
0: अरे लापता दिवस, लापता से मालूम है मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि इन दिनों मालूम है एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है, कहाँ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इतना बड़ा फ्लड आया है, इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं बाढ़, और कहाँ से वो पानी आ रहा
3: है, ग्लेशियर तिब्बत में,
0: तिब्बत से, हाँ तिब्बत में जो ग्लेशियर था वो फट गया, वो एकदम बड़ा फाउंटेन बन गया, और वो फाउंटेन इतना भयानक हो गया कि रातों रात सोते सोते लोग पता नहीं कहाँ लापता हो गए।
1: जी दीदी, उसमें 30 देशों के 1500 लोग लापता हो गए।
0: 30 देशों के?
1: जी दीदी,
0: देखिए कितनी जानकारी है बच्चों को कि 30 देशों के 1500।
1: जी दीदी,
0: बहुत, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी है।
3: लोग मारे गए,
0: ओ भाई, उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके परिवार के लोग जो अपने लोगों को ढूंढ रहे होंगे, तलाश कर रहे होंगे, तो क्या ही कहें कि उनकी तलाश चलती ही रहेगी। जैसे अभी आज हमें बलराज भी बताने वाले हैं लापता दिवस के बारे में, तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि जिनके लोग लापता हैं उनको शीघ्र ही ईश्वर मिला दे उनके परिजनों से। तो चलिए आप कंटिन्यू कीजिए।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय लापता दिवस के बारे में। यह दिवस हर साल 30 अगस्त को जबरन लापता किए गए लोगों का, पीड़ितों का दिवस है।
0: जी,
3: इस दिन उन लोगों को याद किया जाता है जिनका जबरन अपहरण या हिरासत के
0: बाद। हाँ बच्चों, ये तो है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनका जबरन कोई ना कोई उनका अपहरण कर लेता है, कहीं गायब कर लेता है, कहाँ चले जाते हैं कि जिनके पेरेंट्स जो है छटपटा छटपटा के रह जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए।
1: जी दीदी,
3: और उनके परिजन की जानकारी का वर्षों तक
0: इंतजार करते हैं कि कभी ना कभी वो लौट करके वापस जरूर आएंगे।
3: जी दीदी, यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय का अधिकार है, और लापता लोगों के परिवारों को उनके प्रियजनों के बारे में जानने का अधिकार है। आइए हम संकल्प लें कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे पास तो इतने साधन हो गए, हमारे पास ये इंटरनेट मीडिया है, उसके माध्यम से अगर कोई हमको ऐसा बच्चा मिलता है या कोई ऐसा लोग व्यक्ति मिलता है जो नहीं पहुंच पा रहा है अपने परिवार तक, तो उसको माध्यम बना, उसको मैं प्रकाशित करूं उसमें और लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं ताकि वो अपने परिवार से समय पर मिल जाए।
1: जी जी जी,
0: तो हम तो सबसे पहले कि उतने सारे जो आपने कहा कि 1500 लोग कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है कि वो जीवित भी हैं या वो मर गए हैं या वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि शीघ्र ही ईश्वर उनके परिवार के लोगों से उनको मिला दे।
1: जी दीदी, दीदी इसमें हमारे देश भारत ने नेपाल को मदद कर पहुंचाने के लिए टीम भिजवाई है।
0: हाँ बिल्कुल, टीम वहाँ गई है और काफी मदद कर रही है।
1: जी दीदी,
0: और ये तो हमारा मतलब धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसी त्रासदी में हमको उनके साथ या किसी के साथ भी हमको हमेशा खड़े रहना चाहिए, हमारे देश की यही परंपरा रही है।
1: जी दीदी, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत देश को धन्यवाद दिया है उनकी मदद के लिए।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए बहुत अच्छी बात करी, और इसी के साथ हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद आपसे, और फिर ढेर सारी बातें, ढेर सारी मस्ती अभी तो बाकी है क्योंकि कृष्ण जन्म करीब है और बच्चे बहुत सारा कंटेंट लेके आए हैं। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगनदुम चकनदुम चिकिचकचो।

0: तो एक बार लीजिए, फिर से हम हाजिर हैं अपने नन्हे मुन्ने यानी हम्प्टी डम्प्टी की टोली को लेकर के। और अब हमारे साथ और भी बच्चे जुड़ गए हैं, हमारे साथ ठंडी हवा का झोंका समर भी हाजिर है। फिलहाल किसकी तरफ जाएं? देशराज, चलो देशराज की तरफ चलते हैं, उनको मौका देते हैं। और देशराज, अब क्या आप सुनाने वाले हो?
1: दीदी, कल खेल दिवस था।
0: ओ हाँ, कल तो खेल दिवस था ही
1: जी। दीदी, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को,
0: बिल्कुल कल उनका बर्थडे था
1: जी। दीदी, तो मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, चलिए सुनते हैं मेजर ध्यान चंद्र जी के बारे में, क्योंकि कल उनका हैप्पी बर्थडे था और उन्होंने इस हॉकी खेल के लिए काफी कुछ
1: जी। दीदी, 3 बार हम लोगों को ओलंपिक में
0: स्वर्ण पदक दिलाया, बहुत मेहनत की उन्होंने इसके
1: जी
0: लिए।
1: दीदी,
0: और आज उनके नाम का केडी सिंह बाबू स्टेडियम हमारे लखनऊ में
1: जी
0: है। और हाँ, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे यूपी और खासकर हमारे लखनऊ से ही थे। तो चलो डिस्कस करते हैं उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या किया हमारे इस राष्ट्रीय खेल के लिए।
1: मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था
0: जी।
1: वह मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए थे जी। दीदी, और आरंभिक समय में इनकी रुचि हॉकी खेल में नहीं थी, किंतु सेना के एक मेजर की प्रेरणा के कारण उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और फिर अपने खेल कौशल से पूरे विश्व को चकित कर दिया था
0: जी। बिल्कुल,
1: उन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था। वर्ष 1936 में उन्होंने जर्मनी को हराकर भारत को स्वर्ण पदक जिताया। तब जर्मनी का तानाशाह हिटलर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें जर्मनी की नागरिकता और सेना में एक बड़ा पद देने का लालच दिया, किंतु मेजर ध्यानचंद्र जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये उनके इस प्रलोभन को ठुकरा दिया
0: जी।
1: और
0: वो भारत के लिए कुछ करना चाहते थे
1: जी। दीदी
0: जी,
1: इसीलिए उनके जन्मदिवस के दिन वर्ष 2012 को खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा जी। दीदी,
0: तो ये तो बहुत अच्छी भाई, देखिए उन्होंने जो भी किया हमारे देश हित में किया, हमारे देश के लिए किया, सेना में होते हुए भी उन्होंने जो राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा दिया, आज वो हॉकी जो कोई नहीं जानता था, आज वो हमारा राष्ट्रीय खेल है। और हमारे जितने भी युवा खिलाड़ी हैं और अब इसकी तरफ उनका रुझान भी बढ़ा है और काफ़ी उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, बहुत सारे मेडल उन्होंने जीते हैं। क्यों समर
2: जी,
0: क्या कहना चाहोगे इस विषय पे?
2: वैसे तो इंडिया जो है अभी लेटेस्ट बात जो है तो 2 देशों का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इंडिया का भी है और पाकिस्तान का भी है। कारण ये रहा क्योंकि लगातार
0: कारण ये भी रहा कि पहले डिवीजन तो बाद में हुआ है, लेकिन पहले जो ध्यानचंद जी थे उन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी और इसको राष्ट्रीय स्तर तक इस लायक बना दिया था कि लोग इस खेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने।
2: हाँ, तो कुछ 7 के आसपास मेडल ओलंपिक्स में जीते इंडिया ने हॉकी में, और ये सर्वाधिक है किसी भी खेल के मुकाबले। आज तक इंडिया ने हॉकी से ज़्यादा किसी भी खेल में इतने मेडल्स नहीं जीते
0: जी।
2: और अभी तो इंडिया बहुत अच्छा रैंक करता है हॉकी में। अभी तो जो वुमेन्स हॉकी में अभी एक क्वालिफाइंग मैच हुआ था, उसमें भारत स्कॉटलैंड या फिर किसी बहुत बड़े ऑस्ट्रेलिया को हरा करके अभी टॉप 5 में आ गया है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि इंडिया एक बहुत अच्छी रैंकिंग पोजीशन होल्ड करता है और निश्चित ही आगे ऐसे ही बढ़ेगा।
0: बिल्कुल, और मुझे मालूम है कोई भी खेल हो, हर खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, खास तौर से तो क्रिकेट में। क्रिकेट तो सभी का पसंदीदा खेल है, लेकिन हॉकी में भी मुझे इंटरेस्ट है। जब भी कोई अपना खिलाड़ी जीतता है ना, तो मुझे सीटी बजाने में बहुत मज़ा आता है, खूब ज़ोर से सीटी बजाना, बकअप करना ताकि वो और अच्छा खेल सके। ये एक उत्साहवर्धन के लिए किया जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है जब मैं सीटी मारती हूँ। आप लोग कभी मारते हैं सीटी
1: जी, जी
0: किसी
1: जी।
0: खेल को जब कोई अच्छा खेलता है तो
1: क्रिकेट,
0: बिल्कुल, तो एक सीटी ऐसी होती है कि जो वहाँ तक लगता है कि पहुँच जाएगी हमारी ये विशिल की आवाज़, ताली से अच्छा ऐसा लगता है कि सीटी बजा दे एकदम बढ़िया से, सुई सुई तो चलिए ये थी खेलों की बात, और फिर एक बार फिर से हम ध्यानचंद जी के लिए कहेंगे कि हैप्पी बर्थडे, और ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब चलते हैं भाई छोटी सी सानिध्या फिर से हमारे साथ है, अब क्या सुनाने वाली हो भाई सानिध्या?
3: दीदी कहानी,
0: आज तो कहानी का ही सिलसिला चल पड़ा है, तो चलो सुन लेते हैं भाई। छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं उसकी तोतली भाषा में, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं बार बार इसको कहती हूँ कि चलो तुम्ही को मौका देते हैं। तो चलिए जल्दी से सुना दीजिए।
3: एक सुंदर तालाब में एक कछुआ रहता था।
0: कछुआ
3: उसकी दोस्ती दो हंसों से थी। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे और रोज साथ बैठकर बातें करते थे। एक साल उस तालाब में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। हंसों ने कछुओं से कहा, हमें तो हमें किसी दूसरे तालाब की तलाश करनी होगी।
0: भाई पानी नहीं था उसमें, तो दूसरे तालाब में तो जाना ही था।
3: कछुआ बहुत चिंतित हुआ
0: कि मेरे दोस्त हमसे बिछड़ जाएंगे।
3: वह बोला, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा पाऊंगा, मैं तो उड़ नहीं सकता। हंसों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी की छड़ी लाई और कहा, तुम इस छड़ी को अपने मुंह के बीच दस्तर
0: पकड़ लो,
3: हम दोनों
0: छड़ी को लेके उड़ेंगे।
3: दोनों सिरों से अपने चोंच में पटकतर उड़ेंगे। लेकिन याद रखना, रास्ते में बिल्कुल मत बोलना, कछुए ने वादा किया। और तीनों उड़ चले। नीचे गाँव के लोग उन्हें देखकर आश्चर्य से बातें करने लगे। कुछ बच्चे हंसते हुए चिल्लाए, देखो कछुआ हवा में उड़ रहा है। कछुए तो गुस्सा आया, वह जवाब देने के लिए
0: मुंह खोल दिया,
3: छड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। हंसों ने उसे समझाया, मित्र तुम्हें हमारी बात मानकर चुप रहना चाहिए था। कछुआ तो अपनी गलती समझ आ गई। उसने कहा, मैंने अभी जल्दबाजी और बोलने की आदत के कारण स्वयं ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली। उस दिन से कछुए ने सीखा कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल,
3: चुप रहना भी बुद्धिमानी है।
0: हाँ, सही समय पर ही बोलना, ये नहीं कि बिना सोचे समझे विचार करने से पहले ही मुंह खोल देना, ये कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकता है। क्यों बच्चों?
1: जी दीदी।
0: तो बहुत अच्छी कहानी थी ना?
1: जी दीदी।
0: तो हमें भी इससे सबक लेना चाहिए और बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं चाहिए और सही समय पर ही बोलना चाहिए।
1: जी दीदी।
0: तो चलो भाई, हम सानिध्या एक और सुनाने वाली थी श्री कृष्ण जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, एक प्यारा सा वो गीत गाने वाली है और सब लोग उसका साथ देंगे, है ना?
1: जी दीदी।
0: हाँ, तो चलो सानिध्या जल्दी से सुना दो भाई, जन्माष्टमी आने वाली है, मुझे भी बड़ी, मेरे लिए तो ये बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है।

0: भाई देखिए इतना प्यारा सा श्री कृष्ण की आरती है, अभी तो उनको आने में थोड़ा समय है, लेकिन आज से ही हमारी जो है सानिध्य है उसने श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारी कर ली है और इतना प्यारा सा भजन सुनाया है। तो चलिए चलते हैं, अब हम किसकी तरफ चलें, चलें देशराज की तरफ, नो चलो बलराज की तरफ चलते हैं। तो बलराज अब क्या सुनाने वाले हो?
1: दीदी रसखान के कृष्ण।
0: अच्छा अच्छा तुम भी, ओ मैं तो भूल गई थी कि ये कृष्ण भक्ति रस चल रहा है और सारे ही इसमें जो है शराब हो रहे हैं। तो सानिध्या को देख करके जो है हमारे बलराज जी भी छोटी सी एक कविता सुनाना चाहते हैं। मैं कहूँगी कि जल्दी से अपनी कविता शुरू कर दें।
1: धूरे भरे अति शोभित श्याम जूतैसी बनी से
2: सुंदर चोटी
1: खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजते पीर का छोटी वाछबी गोरस खाने भी लोकत वाछबी गोरस खाने भी लोकत वारत काम कला निध कोटी और कागे के भागे बड़े सजनी हरे हाथों से ले गयो माखन रोटी।
0: तो भाई सही बात है कि देखो छोटे से कृष्ण जी का वर्णन किया गया है कि वो छोटे से कृष्ण अपने आंगन में खेलते खाते हुए पीछती कछौटी पहन करके घूम रहे हैं। और भाई ये प्रसाद जो ईश्वर का प्रसाद होता है ये सबके लिए नहीं होता, ये दुर्लभ होता है और जो बड़े वो भाग्यशाली होते हैं जो कृष्ण का ये प्रसाद पाते हैं। और कौवे का भाग देखो वो तो छीन के ही ले गया ये प्रसाद, है ना
3: जी दीदी।
0: तो बहुत अच्छी कविता थी भाई, हमारे बलराज के लिए भी आप लोग तालियां बजा दीजिए।
4: और मेरे हिसाब से वो कौवा कोई और नहीं, मेरे हिसाब से काग भुसुंडी थे।
0: बिल्कुल, और क्या, वो तो मतलब युगो युगो से वो ईश्वर के सानिध्य में ही रहे हैं।
5: उन्होंने तो पूरी रामायण देख डाली है, तो फिर उनका क्या ही वर्णन,
0: उनका क्या ही वर्णन भाई।
4: लगभग 18 बार रामायण और 14 बार उन्होंने महाभारत देखी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो भाई उनके उनके बारे में कहने के लिए किसी के पास पर्याप्त शब्द नहीं है। तो चलते हैं, अब हमारे जो है बच्चे आ चुके हैं और हमारे साथ हैं हमारे अथर्व हैं और यशराज भी हैं और ठंडी हवा का झोंका समर भी है और कुछ ना कुछ एक बड़ा धमाका होने वाला है। तो चलते हैं हम अथर्व की ओर, और अथर्व आज क्या सुनाने वाले हो?
5: तो दीदी आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी हाल ही में हुए एक इंसिडेंट के बारे में है। अब वो इंसिडेंट हम सभी लोग जानते हैं, उससे हम परिचित भी हैं। तो
0: वो अभी हाँ बहुत ही त्रासदी है, एक बहुत भयंकर,
5: तो उसके बारे में बात करना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा
0: जी,
5: और
0: जी,
5: कह
0: जी।
5: सकते हैं कि वो उसके बारे में बात होनी चाहिए, लोगों के कानों तक वो एक इंसिडेंट की गूंज पहुंचनी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को।
0: जी बिल्कुल।
5: तो जरा इमेजिन करिए कि आप हिमालय के बीच में हैं, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कह सकती हैं कि गहरी नदियां भी हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब शांत वातावरण है, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में पानी का एक ऐसा सैलाब आ जाता है जो कि घरों कह सकती बाजारों दुकानों इन सबको बहाकर अपने साथ ले जाता है। तो मतलब आप उस टाइम पे क्या करेंगे कि आपके सामने जब आपकी
0: ये वो मतलब स्थिति होती है कि जब आदमी अपने को बिल्कुल असहाय फील करता है कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, जो है वो नेचर के हाथ में है।
5: देखिए हम नेचर के सामने एक खेलते
0: खिलौना बन जाते हैं। बिल्कुल,
5: नेचर हमसे इतना बड़ा है कि हम उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में हम ही लोगों को हारना है और बाद में नेचर ही जीतेगा चाहे जो हो जाए। ये मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ी राइवलरी है।
0: लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि जब हम अपने स्वार्थ के लिए अपने लाभ के लिए नेचर से ही खिलवाड़ कर बैठते हैं और हम भूल जाते हैं कि किसी ना किसी दिन ये नेचर जो है अपना विकराल रूप हमारे सामने दिखाएगी।
5: और यही तो कहानी है हिमालय की उस मैसिव

0: डिजास्टर की और उस इंडियन मिशन की जिसने इस मुश्किल घड़ी में नेपाल तक अपनी मदद पहुंचाई।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो आखिर हुआ क्या था? तो क्या हुआ था, 26 अगस्त 2026 दिन था बुधवार का, और नेपाल के भोटे कोशी रिवर के आसपास एक कैटास्ट्रोफिक रिवर फ्लड आ जाता है, और फिर जो पानी रहता है और जो डेब्रिस या सकती मलबा होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मिट्टी के, वो सब इतनी ताकत से इतना ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं कि आप जानते होंगे नेपाल और चाइना के बीच में एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, उसको वो बस जैसे कह सकते हैं एक लकड़ी का टुकड़ा है पतला सा, उसको आप ऐसे तोड़ दीजिए अपने दोनों उंगलियों से, वैसे ही वो फ्रेंडशिप ब्रिज भी टूट गया था बीचों बीच से। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि रिवर के पास इतनी ज़्यादा मतलब फ्लड के पास पावर है कि वो उसके सामने की लकड़ी का टुकड़ा ही लगा उसको। तो और साथ ही में हाउसेस को, रोड्स को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि कह सकती हैं लोगों के जो शरीर के जितने अंग थे वो अलग अलग हो गए थे, इतनी वो उसमें फोर्स थी कि लोगों का कई सारे ऑर्गन डैमेज हो गए थे
2: क्योंकि पानी के साथ
1: दो भागों में बट गया,
2: क्योंकि पानी के साथ प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है।
0: और यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि ये कोई एक सीजनल फ्लड नहीं था, ये हिमालयन रीजन में जो उसका क्षेत्र है जहाँ पर पहले से ही बेहद चैलेंजिंग चीज़ें होती रहती हैं, ऊपर कह सकते हैं ऐसी ढलानें जो अनस्टेबल हों जहाँ पर हम लोग टिक नहीं सकते थोड़ी देर के लिए, और कह सकते हैं लगातार बारिश होना, लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाना, और इतनी ज़्यादा जब फ्लड आती है तो रेस्क्यू करना तो लिटरली कह सकते हैं कह सकती हैं जैसे खेत में से सुई ढूंढने के बराबर हो जाता है।
1: सच में।
0: अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछ रहा है, मतलब कह सकते हैं पूरी दुनिया पूछ रही है इसके बारे में कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल और तिब्बत के जो अफेक्टेड एरियाज हैं, प्रभावित क्षेत्र हैं, उसमें जो डेथ टॉल है यानी कि जो मरने वालों की संख्या है वो 750 से पहुंच गई है, और हमको लग रहा है वो और बढ़ गई है, और 3000 लोगों को मिसिंग बताया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं उससे भी ज्यादा।
1: सबसे ज्यादा तो ये है कि विदेशों से आए हुए जो पर्यटक थे वो 30 देशों के थे और वो 1500 मिसिंग है,
0: और ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन बाकी है ना। अब ये तो पता नहीं कि 3000 लोग ही मिसिंग हैं या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम, अभी सर्च ऑपरेशन बाकी है, तो फिर हम लोग को बाद में रिपोर्ट पता चलेगी कि इतने लोगों का मतलब इतने लोग लापता हैं, इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, तो ये सारे रिपोर्ट्स अभी बताने बाकी तो हैं।
2: और चाइना ने भी वार्निंग दी है कि हो सकता है अगले 24 से 96 घंटों यानी 104 दिनों के बीच में इससे भी भयंकर एक फ्लड जो कि लगभग 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, लगभग हम कह सकते हैं 30 करोड़ लीटर पानी अपने साथ ला सकता है।
0: और अब हम शुरू करते हैं इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि जब नेपाल में ये मैसिव डिजास्टर आया तो जब मतलब उससे वो जूझ रहा था तब इंडिया ने अपने कह सकती हैं जब इंसान ही इंसान के काम आता है। उस कहावत को साथ में लेते हुए उन्होंने अपनी जो रेस्क्यू टीम्स थी उनको वहाँ पर नेपाल तक
1: पहुंचाया। तो यही हम तो यही कहेंगे कि तो ये हमारी एक परंपरा है कि जब किसी के साथ भी कोई त्रासदी होती है तो हम उसके साथ तन मन धन से खड़े मिलते हैं।
0: और यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जैसे कि हम लोग जब किसी देश को नुकसान पहुँच रहा होता है तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, बल्कि इंडिया ने अपना थोड़ा सा मतलब अपने साथ दिमाग लगा के ये उन लोग को सिर्फ एक लिमिटेड ही हेल्प भेजी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके पूरी साथ में हैं, उन्होंने ये कहा कि आपको किस तरह की मदद चाहिए हम वो मदद आपके पास भेज रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कि जो मदद नेपाल को नहीं है वो भी उन्होंने भेज रहा मतलब इंडिया भेज रही हो, जो मदद नेपाल को चाहिए थी वो इंडिया अपनी तरफ से भेज रहा था, एक कह सकते हैं
1: ये तो अभी फ्लड आया है तब मतलब राहत हम लोग दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी भारत और नेपाल के संबंध ऐसे कि भारत हमेशा जो है नेपाल के साथ खड़ा ही मिला है,
2: और जो करंट नेपालीज गवर्नमेंट है वो भी एंटी इंडिया थोड़ी सी है,
1: हाँ।
2: लेकिन इसके बावजूद भी
1: भारत खड़ा है उनके साथ,
2: एनडीआरएफ की टीम्स और बहुत सारी हेल्प्स,
1: हमारा जो भारत का वो राष्ट्रीय संघ है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है,
2: और कह सकते हैं कि भारत की वो एक बहुत ही फेमस लाइन है वसुधैव कुटुंबकम, वो अपना पूरे दुनिया को अपना एक परिवार समझता है।
1: बिल्कुल।
2: तो आपके परिवार में किसी को जरूरत होगी और आप उसकी मदद न करने जाए ऐसा कैसे हो सकता है।
0: और लिसनर्स, ये जो डिजास्टर है इसका कनेक्शन सिर्फ नेपाल से ही नहीं साथ ही में इंडिया से भी है, क्योंकि इंडिया के कई जगहों पर भी अफेक्टेड रीजन हैं, जहां पर इंडियन अथॉरिटीज लगातार उनके बारे में जांच कर रही हैं जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और उन्हीं को उन्हीं की जानकारी जुटाने और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट कि जल्दी से जितने लोगों को नुकसान हुआ है वो लोग वापस अपने पास अपने परिवार के पास पहुँच सकें।
1: और सबसे ज़्यादा खतरा तो हम लोगों के लिए भी है, क्योंकि
2: बिहार के साइड बहुत ही ऐसे
1: नदियां हैं जो उफान पे
2: हैं, क्योंकि कोसी और सोन जैसे रिवर्स जब अपना उफान पे आती हैं तब तो बिल्कुल तबाही मचा
0: है। और जैसे कि दीदी हर कहानी के लास्ट में हमें एक सीख मिलती है, तो उसी तरह आज के इस एपिसोड में भी हमें एक सीख जरूर मिलती है। सबसे पहली सीख हमें ये मिलती है कि नेचर को कभी हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जब नेचर अपने असली रूप में आती है तो फिर हम सब कुछ नहीं उसके आगे।
1: होता क्या है कि जब हमको इतना लालच समा जाता हमारे दिलों में तो हम भूल जाते हैं कि नेचर भी कभी ना कभी जो है सर उठा के हमारे सामने खड़ी होगी, रौद्र रूप में खड़ी होगी। ये बात हमारे कॉन्सेप्ट में उस समय आती ही नहीं है।
2: और कहीं ना कहीं देखा जाए जो फ्लड आया ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक पल, अब कह सकते हैं कि उसका एक सरकमस्टेंस था।
1: बिल्कुल,
2: बहुत बहुत बड़ी चीज।
0: देखिए नेचर अभी कुछ रिएक्ट तो ज्यादा कर नहीं रही है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे नहीं रुके तो फिर बाद में नेचर सब साथ में जब मिल जाएंगे, सारी नेचर जितनी भी हमारे फैक्टर है नेचर के वो जब सब साथ में मिल जाएंगे तो फिर हमारे धरती का जो
2: शायद हमारे हम इंसानों का और कई ऐसे जीवों का अस्तित्व
1: खतरे में,
2: ये ग्लोबल वार्मिंग का ही कॉन्सिक्वेंस है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी बात ये है कि डिजास्टर के समय सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि सही टेक्नोलॉजी और सही पर्सन की जरूरत होती है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट भी उन्होंने हेल्प की हमारी, मतलब नेपाल को जैसे हम लोग की मदद चाहिए थी तो वैसे ही हम लोगों ने उनकी मदद की
1: जी।
0: तो इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को खत्म ये करना चाहूँगा।
1: और हमारे साथ समर भी हैं। समर क्या कहना चाहोगे? समर
3: तो अभी अधर ने सब कुछ कह ही दिया, मैं क्या कहूँगा।
1: आज तो जैसे हम लोग जो बैठ गए हैं ये मतलब ये फ्लड जो आया है मतलब सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि कोई भाई हमारा रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ, तो कहीं ना कहीं हम लोग और क्या रोटी बेटी का संबंध है हमारा और नेपाल का, मतलब हमारी जो बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं नेपाल में ब्याही जाती हैं और वहाँ की बेटियां हमारे यहाँ।
2: मेरे स्कूल में एक मैम है वो भी नेपाल से ही है।
1: बिल्कुल।
2: बस इतना जानिए क्योंकि अभी वो नेपाल में ही गई है, मैं बस इतना चाहूंगा कि वो सेफ रहे और वहाँ पे रहने वाला हर एक नागरिक सेफ रहे।
1: जी बिल्कुल।
0: और दीदी तो, मैं अभी आपको एक लेटेस्ट रिपोर्ट बताना चाहूंगा। नेपाल में एक ऐसा घर है, एक हरे रंग का घर है, जो कि जब बाढ़ आई तो वो घर बहा ही नहीं बल्कि वो एक जगह पर स्टेबल रहा और उसके घर में जितने भी लोग थे वो जिंदा थे, बालकनी से हाथ हिला रहे थे कि हमारी कोई मदद करो। सोच सकती है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक मतलब ये भी इंसिडेंट होना था कि कोई सब जिंदा रहे उसमें से किसी को हती पहुंचे।
2: ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का सही यूज,
1: बस ये कहना चाहिए कि ईश्वर की
0: मतलब क्या उसमें इंजीनियर की कैसी टेक्नोलॉजी लगी।
1: सीधा आशीर्वाद था उनके ऊपर, ईश्वर का सीधा आशीर्वाद था कि उनके घर को क्षति नहीं हुई। हम तो ये कहेंगे कि वो एक जो आर्किटेक्ट को सलाम बोलना चाहिए जिसने उस घर का निर्माण किया, सबसे ज्यादा तो आर्किटेक्ट उसके लिए उत्तरदायी है क्योंकि उसने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के खड़ा किया।
2: और मेरे हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट का बहुत ही
0: अब यहाँ पर इन सभी लोगों का
2: होने वाला है।
0: अब यहाँ पर इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने उस घर को डिजाइन ऐसा किया कि वो बहा ही नहीं बाढ़ के साथ।
1: बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हमारे विदा लेने का समय आ गया है और हम फिर इस उम्मीद के साथ इस आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय और इसी मंच यानी हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी के मंच पे आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के रहिए, आपके लिए आप सुनते रहिए
0: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9861-976-9860। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हां जी सुभाई, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके संडे स्पेशल शो ओपन माइक में। आपका अपना शो, अपना गुंडा, अपना टैलेंट और अपना एफएम, वो प्रोग्राम जिसका इंतजार है आपको बहुत बेसब्री से हर संडे को, क्योंकि इसी प्रोग्राम में हम हाजिर होते हैं और आपके अंदर जो भी टैलेंट होता है वो आप शोकेस करते हैं, चाहे सिंगिंग का हो या फिर आप कोई राइटिंग करते हो, कोई पोएट्री लिखते हो तो आप रिसाइट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टोरी टेलिंग का शौक है तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा ही हंसी मजाक करने वाले तो भाई जोक्स शोक्स भी चलते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि हंसी के हसगुल्ले तो यहाँ पे जरूर सुनने को मिलते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कहीं ना कहीं रिलेवेंट होती है, तो इसलिए फिलहाल अभी हम कहीं ना कहीं इस बात को समझे कि भाई साहब आज हमारे बीच में हमारे एक ऐसे ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जी हाँ, आज हमारे बीच में हमारे मिस्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं।
1: जी थैंक यू।
0: देखिए, आप जब आते हैं तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जवानों की शिकायत होती है बुजुर्गों से कि भैया ये हमको तो समझते नहीं, हमको नकारा ही समझते हैं अगली पीढ़ी को। लेकिन अगर मैं आपकी पर्सनल बात करूं तो आप सबको लेकर चलते हैं, मतलब आपकी आपकी पोलाइटनेस का तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब मैं कायल हूं। जितना पोलाइट आप हैं, जितना काइंड पर्सन आप हैं, बहुत रेयर विरले ही कहते हैं ना कि ऐसे दिखते हैं,
1: जरा नवाजी है आपकी।
0: तो ये सच है, ये सच है, बहुत बड़ी बात है और बहुत सच बात है कि ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, और जब आप आते हैं तो आपकी खासियत ये है कि आप अगली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, और आपके अंदर जो सबसे अच्छा है, जिसकी कमी अक्सर देखी जाती है, जेन्युइन अप्रिसिएशन, लोगों को उनके काम की सच्ची तारीफ करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, मतलब इतने सारे अच्छाई कैसे ले हैं आप जरा बताइए।
1: ऐसा है कि सच पूछिए तो अच्छे लोगों के साथ में रहने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली चाहे वो कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर आ ही जाता है, और आप जैसे लोगों के साथ रहने का कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है।
0: नहीं बिल्कुल, आप
1: यू आर ऑलराउंडर है इन ऑल रिस्पेक्ट, और गोंडा के एक बहुत अच्छे अनाउंसर भी हैं और प्रोडक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, सभी चीज़ें हैं, और कितने अच्छे तरीके से आप इस एफएम को चला रहे हैं ये आपकी बहुत बहु प्रतिभा दर्शाती है, और ये आप इसको कितने सुचारू रूप से चला रहे हैं और कितने धैर्य से, हमारी गोंडा की जनता भी बहुत इसमें सहयोग करती है, बहुत बच्चे छोटे छोटे आते हैं और अपनी बातें, गाना, डांस सब चीज़ें करते हैं यहाँ पे, और बड़े प्रसन्न होकर खुश होकर स्टूडियो से निकलते हैं अदनान साहब से बात करने के बाद। देखिए, गाय जो होती है वो चाहे जो चारा खा ले लेकिन देती वो सफ़ेद दूध ही। अदनान साहब से मिलने के बाद आदमी कभी वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा जिस्ट रख देते हैं उसके हाथ में जाते समय, और इतने वेलकम करने की आदत। देखिए, ऐसा है कि सज्जन व्यक्ति संसार में सबसे महान माना गया है। सज्जन व्यक्ति वो नहीं जिसके पास बहुत ज़मीन है, बहुत दौलत है, बहुत कारें हैं और बहुत से नौकर हैं। सज्जन व्यक्ति वो है जो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके दरवाजे पे अगर कोई आता है तो वो उससे इस तरीके से मिलता है जैसे कि कोई मेरा आत्मीय हो, और वो उसी प्यार से बुलाता है उसको, जिस भी एज का है वो, बेटा कहेगा उसको, पोते के साइज़ का है तो उस तरह से कहेगा, नाती के साइज़ का है उस तरीके से कहेगा, लेकिन वो इस तरह से पुचकारेगा उस व्यक्ति को कि वो सोचेगा ये आदमी किस मिट्टी का बना है, ये हमको इतना वेलकम कर रहा है, ये तो उसको आप सज्जन कह सकते हैं। और जब वो आपको चाहे जिस स्थान पे बिठा ले, चाहे ज़मीन में बिठा ले, चाहे पीढ़े पे बिठा ले, चाहे कुर्सी पे बिठा ले, जब वो एक गिलास सादा पानी या ठंडा पानी आपके पास लाके रखता है तो वो पानी गंगा जल हो जाता है, और वो इतने गहरे तक की प्यास बुझा देता है जो जीवन की प्यास बुझा देता है।
0: क्या बात,
1: मैंने गाँवों में अनुभव किया है, गाँवों में काम करने का मौका मिला है
0: जी,
1: कि जब वो पानी लाते थे अपने घर, कुछ लोग पिलाने के लिए हमको दरवाजे पे बिठालते थे, और चद्दर बिछाते थे, वो चाहे जैसी चारपाई तुरंत लाके वो चद्दर बिछाते थे एज ए वीआईपी ले। उसके बाद फिर वो पानी लाते थे तो वो गिलास को इतनी देर तक मानते थे कि हमें वेट करना पड़ता था कि जल्दी से पानी ले आए तो वो उसको मांझ के चमका के और उसको पानी भर के और पूरा भरे रहते, जैसे कि हम लोग सोचते थोड़ा गिरा दे के कपड़े पहने, लेकिन नहीं, उनका प्रेम देखिए, वो शबरी के बेर उसने चीख के खिलाए थे भगवान राम को, उसी उसी तुलना में वो लाते हैं और एक हाथ से नीचे पकड़ते हैं कोहनी पे और एक हाथ से वो पानी पकड़ाते हैं, और वो पानी पी लेने के बाद आपको ऐसा लगता है कि संसार के सारे सुख मुझे मिले।
0: क्या बात है।
1: तो वो आत्मीयता जो है वो सज्जन पुरुष के पास ही होती है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सज्जन पुरुष जब किसी के दरवाजे पे जाता है तो वो उसके टूटे फूटे दरवाजे नहीं देखता है, वो उसके फूलों को देखता है जो गमले में उसने दरवाजे के सामने लगा
0: दिया।
1: और पहुंचते ही वो कहता है वाह क्या सुंदर। एक और छोटा सा दृष्टांत हम आपको बताएंगे इस समय
0: जी,
1: वो बहुत ही इस समय अप्रोप्रिएट है, टाइमली, जिससे आप दूसरे को प्रसन्न कर सकते हैं
0: जी।
1: और दूसरों के खुशी में सहयोग कर सकते हैं। तो उसने क्या हुआ कि साहब एक आदमी पिछले 20 सालों से जूता सिलने का काम कर रहा था, मोची था, और ईश्वर ने जिसको जैसा बनाया है वैसा ही तो रहेगा
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वो इतना सीधा और जेंटल और बढ़िया था आदमी कि वो सर नीचे किया अपना काम करता और पैसा देते लोग चला जाता और पैसे में कभी बहस भी नहीं करता। तो एक लड़का जो पढ़ने जाता था, एक ज़माने में उसको सर्विस भी मिल गई, फिर वो लौट के आया और उसने देखा बिल्कुल वैसे ही बाबा काम कर रहे थे। तो उसने सोचा कि क्या कहा जाए जिससे ये मेरी तरफ देखें और थोड़ा सा प्रसन्न हो जाए। तो उसने कहा कि बाबा आपके बाल बहुत घुंघराले हैं, और उसने सर उठा के देखा तो इतना खुश हुआ वो कि जिसका जवाब नहीं। तो ऐसे लोगों को जरा सा प्लीज कर देने में, बच्चा अगर पहिया लेकर नचा रहा है तो आप कह दो ये भैया क्या होगा, कहीं ये उड़ जाएगा, हाँ हाँ अच्छा उड़ जाएगा, वो यहाँ से हंसता हुआ जाएगा। तो किसी आदमी को प्लीज कर देना ये बहुत बड़े अच्छी बात है,
0: मतलब करना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह के दृष्टांत आपने बताए
1: जी,
0: वो एक तो लाजवाब, इतना आसानी से हर कोई इसको समझ रहा होगा, एंड मतलब वो चीज़, वो क्वालिटी आप खुद इस चीज़ को अपने पास रखते हैं। आप कोई भी आता आर्टिस्ट, आप उसको प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं ताकि वो और बेहतर कर सके, और जेन्युइन तारीफ करते हैं, सबसे बड़ी बात है। पर मैं ये पूछ रहा था कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कैसे और आपने बताया कि सोहबत का असर है
1: जी।
0: देखिए आप बहुत लोगों की सोहबत ले चुके हैं और आप मुझसे बहुत बड़े हैं हर तरह से
1: जी।
0: तो हम मिले तो हम आपको अभी बाद में हैं, बहुत बाद में मिले,
1: छोटे भी हैं हमसे आप
0: जी जी जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये कहाँ से, मतलब धीरे धीरे करके, क्या फैमिली में भी ऐसा माहौल था, या आपने जो पढ़ाई की उससे भी खुद को कुछ जाना, या अकेले में कुछ वक्त आप गुजारते थे उससे आपने कुछ समझना, कैसे क्या रहा
1: जी? अब यहाँ पे एक बात उठती है जो आजकल के समय में बहुत ही उपयुक्त होती होगी। उसमें होता क्या था कि जब मैं पढ़ के आता था कहीं, आप मेरी मातृभक्ति बहुत ज़्यादा थी
0: जी,
1: और मैं रोज रात में माता जी के अपने पैर दबाता था, होश की बात कर रहा हूँ,
0: अरे वाह,
1: चौथे पचे अठवें दसवें से ये था करता था, और वो मुझे एक एक कहानी सुनाया करती थी
0: जी,
1: और हमें अनुभव दिया करती थी कि कौन व्यक्ति, हम पट्टी डमटी से शुरू करती थी और उसके बाद श्रवण कुमार और बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियाँ वो हमको सुनाती थी, जो संस्कार में, मतलब उन्होंने हमको बचपन में लिए। कहते हैं कि माँ जो होती है वो पहली यूनिवर्सिटी होती है लड़के के लिए,
0: बिल्कुल।
1: तो बचपन के जो संस्कार पड़ गए वो, जिन्होंने बहुत काम किया और अब तक वो मुझे मदद कर रहे हैं, जब भी मैं कभी दुविधा में होता हूँ, जब भी किसी परेशानी में होता हूँ, तो उनकी कहानियाँ इतनी थीं कि उन्होंने हमको आज तक वो राह दिखा रही हैं। वो नहीं हैं, आज से 15 साल पहले वो नहीं रहीं, लेकिन उनकी कहानियाँ मुझे राह दिखा रही हैं। और इसके बाद जो उन्होंने ये बताया था कि बेटा ऐसा है, अगर आपको अच्छे आदमी ना मिले सड़क पे भी अच्छे आदमी मिले तो आप बुरे आदमी का साथ छोड़ के उनके साथ चलने लगो तो कुछ ना कुछ वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता किसी एकांत में हो कहीं हो तो आप महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ना, वो उनके जीवन भर के अनुभव हैं और वो एक छायादार वृक्ष हैं जो हर एक को शीतलता प्रदान करते हैं।
0: वाह,
1: तो ये जो बातें थी वो मेरे दिमाग में आज तक हैं। और सच पूछो कि आज के युग में माँ का अच्छी कहानियाँ सुनाना बच्चों को, गोद वाले बच्चों को या चाहे थोड़े बड़े बच्चों को, ये इतना अमूल्य उपहार है जो वो बड़ी आसानी से दे सकती हैं। बचपन में तो माँ से बहुत इंटेंगल्ड होते हैं बच्चे, बड़े होने के बाद चाहे जो भी करें, तो माँ को चाहिए कि रोज़ वो कोई नैतिक कहानी उनको सुनाए। बल्कि मेरा तो ये विचार है कि प्रतिदिन स्कूलों में प्रार्थना के समय कोई ऐसी डिसेंट कहानी सुनाई जाए जो लोगों में संस्कार भरे और वे एक बार उसको देखें। अभी आप देखिए, अभी भी ये हालत है कि अगर बच्चे लिखा हुआ कोई पन्ना ज़मीन पर पाएंगे तो उसको उठा के मत्थे से लगा लेंगे। हमने देखा कि बैंक में सर्विस करते थे कि जितनी बुढ़िया आती थी, बुढ़ी औरतें, वो जरूर पल्लू ढकती थी।
0: अच्छा,
1: तो ये संस्कार ही तो है। जब उनसे कहते थे माता जी चेहरा मिलाना है तब वो चेहरा अपना खोलती थी, तो ये संस्कार ही तो है। तो जो आज माँ दे देगी संस्कार, वो पूरे जीवन बच्चे को मार्गदर्शक, जैसे जहाज़ों को दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक लाइटें लगती हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से आपके बच्चे को राह दिखाती रहेंगी और वो बच्चा कभी भी दुखी नहीं रहेगा। आपका जो बल है वो उसके पास हमेशा रहेगा। ये थोड़ा सा मेरा जो विचार था मैंने उसको कहा।
0: वाह क्या बात है, मतलब इतना शानदार विचार आपने कहा और ये बात मतलब इतनी सटीक कही ना आपने कि आज के वक्त में भी जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो मदर हैं, माँ हैं, वो अगर ऐसी किसी कहानी को सुनाती हैं तो बहुत असर होगा। अच्छा, बदलाव जो आया है वो आज की नई पीढ़ी ने नहीं किया है, हम ही ने बहुत सारे बदलाव किए हैं इसलिए चीज़ों में बहुत बदलाव आया है
1: जी।
0: बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता होता, तो पेरेंटिंग कैसे की जा रही है?
1: उनकी कच्ची डाल होती है, उसको जिस तरफ मोड़ दीजिए वो उसमें मुड़ जाएगा,
0: उसमें मुड़ जाएगा। तो ये जो कहानी वाला कॉन्सेप्ट आपने कहा, मुझे लग रहा है इस वक्त जितने भी घर के पापा लोग सुन रहे होंगे, मम्मा लोग सुन रही हैं, भाई बहन, वो अपने घर में इसको इम्प्लीमेंट करें, करके देखें। मतलब ये नहीं कह रहे करें, मैं ये बस कह रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि
1: मेरी भी इच्छा है कि वो ज़रूरत बिल्कुल टाइम फिक्स कर लें कि इस समय बच्चा फ्री होता है और इस समय हम उसको ये बातें बता सकते हैं। दिन भर सोचें वो लोग, जब भी मौका मिले, उनका टाइम हो बच्चों का, तो उनको कोई अच्छी बात सिखा दें।
0: बिल्कुल सही बात है, उनको एक अच्छी बात सिखा सकते हैं। और आपने कहा दिन में ये मौका ज़रूर मिलता है, मुझे लगता है कि वो एक कनेक्शन जो बचपन से बहुत शुरुआत से डेवलप होता है वो आगे जाकर के बना तभी रहता है जब वो शुरुआत उसमें बीज डाली जाती है,
1: बीज डाली जाती है जी।
0: तो कहीं तो आपको कनेक्ट करना होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट तो रखना होगा जहां बच्चा आपसे हमेशा कनेक्टेड रहे।
1: बिल्कुल,
0: तो आज कहानी सुनेगा आपका नन्हा मुन्ना, कलकदार आपसे एडवाइस भी लेगा, परसों अपनी बातें शेयर भी करेगा, और वही हर माँ बाप चाहता है।
1: बिल्कुल,
0: तो चाहना तो आपकी अपनी बात ठीक है कि आप चाहते बहुत कुछ है बच्चे से, लेकिन आप क्या कर रहे हो फिलहाल बच्चे के लिए, आपको ये देखना पड़ेगा।
1: नहीं, माएँ करती भी हैं,
0: बिल्कुल,
1: बहुत सी माएँ तहजीब के मामले में हमने मतलब मुस्लिम कल्चर को देखा है कि इतनी तहजीब बचपन से सिखाई जाती है कि वो बच्चे जब भी मिलते हैं तो वो चचा जान आदावर्ज है, ऐसे है वैसे है, और इतने प्यार से तहजीब से बात करते हैं। ये कल्चर ही तो है, जब वो गोद में लेके बैठती हैं बच्चे को तो वो सिखाती हैं, देखो तुम्हारे ये हैं, इनसे ये कहना है और इनको आदावर्ज करना है, इनको नमस्ते कहना है, इनको सलाम वालेकुम कहना है। तो ये जो बचपन में दे दी जाती हैं बातें, पर्दा गिरा हुआ है, वो पर्दे में हैं, तो ये सब चीज़ें ठीक है, समय के साथ बदलाव हुए हैं, बच्चे पढ़ने निकले हैं, बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन जो तहजीब का हमने देखा है कि कुछ बच्चे जिनकी माएँ इस मामले में थोड़ा सा ध्यान देती हैं, वो बच्चे इतने तहजीब से मिलते हैं कि उनसे बात करके वो छोटे से बच्चे आएंगे पास में, वो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करेंगे। अंकल जी आप, आपका ये चीज़ कितनी अच्छी, अंकल ये किताब आपकी बहुत अच्छी, अंकल जी आपके यहाँ बहुत अच्छे फूल निकले, क्योंकि उनकी माओ ने उनको सिखाया है कि बेटा हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखो। देवानंद जी हीरो थे, वो कहा करते थे कि साहब पॉजिटिविटी जो है वो 30,000 रुपये, उस ज़माने में 30,000 आज के 3 लाख के बराबर हैं, के 3 लाख वेतन के बराबर होता है। सिर्फ आप इतना कीजिए कि आप पॉजिटिविटी को अडॉप्ट किए रहिए, हमेशा अच्छा ही सोचिए आप। और कई फिल्में उनकी फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने कहा ठीक है अब नई फिल्म बनाते हैं। तो ये चीज़ें हैं पॉजिटिविटी और निराश न होना, परिस्थितियों से कैसे धैर्य से मुकाबला करना, ये सब चीज़ें माएँ फीड कर देंगी तो वो बच्चा कभी भी अपने से बड़ों की इज्जत करेगा और वो सब करेगा जो उसकी माँ उसको बनाना चाहती है। हमारे राष्ट्रपति सर इतने अच्छे थे, वो क्या नाम उनका,
0: डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम आज़ाद।
1: अरे उनको तो जब सोचते हैं उनके विषय में, उनके कुछ रिश्तेदार आए थे, अभी कल वीडियो देखा था, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहे वो, और उसके बाद उन्होंने भ्रमण किया और टहले घूमे ये सब वो सब, और जब उनके असिस्टेंट ने उनको बिल पेश किया तो उन्होंने कहा कि ये सब जितना भी खर्चा हुआ है वो सरकारी खर्चे से नहीं दिया जाएगा, ये हमारे प्राइवेट, ये लीजिए चेक मैं दे रहा हूँ और जितना भी अमाउंट हो बताइए मैं भर दूँ, और उतना अमाउंट आप मेरे वेतन से ले लीजिए। यानी जिस आदमी के मृत्यु के पश्चात उसके पास से कुछ पैंटें और कुछ किताबें निकले हैं, वो आदमी इस धरती पे आया, वो भगवान नहीं था तो और क्या था, वो फरिश्ता नहीं था तो और क्या था।
0: सही बात।
1: हमने ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे व्यक्ति पाए हैं, जरूर भुला दिया है हमने उनको, लेकिन जब भी हम उनके उनकी याद करेंगे तो हमारे खून में एक ताकत आ जाएगी। कुछ ऐसे लोग सर हमने देखा है जिन्होंने कहा कि अब पेड़ को नहीं काटोगे, अब मुझे पहले काटोगे फिर पेड़ काटोगे,
0: फिर पेड़ काटो,
1: वो इतने अच्छे थे और अंत में सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30 किलोमीटर की पत्थर की राह काट के और उन्होंने 3 किलोमीटर कर दिया लोग पानी लेने के लिए,
0: पानी लेने के लिए।
1: ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं इस धरती पे, हम उनका अनुकरण करें। और डोभाल जी के बारे में आपने सुना होगा, देश के सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी एक सेइंग है कि सदैव जीतता वो है जो ताकतवर होता है। तो ताकतवर कौन होगा भाई, जिसके पास पैसा होगा, बल होगा और उसकी ऐसी सामर्थ्य होगी कि वो किसी का, जैसे अमेरिका इस समय कर रहा है, हम जो वो चाहता है वो विश्व से करवा लेता है। तो ऐसी स्थितियों में जो उन्होंने कहा ये व्यवहारिक है, आज हम लोग छोटे और गरीब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी कार है, आगे से रिक्शे वाला जा रहा है, आगे से कोई साइकिल वाला जा रहा है, तो हम इतना हॉर्न बजाते हैं कि उसके कान फट जाएं, और हम एक्सीलेटर पे इतना ज़ोर से मोटरसाइकिल चलाते हैं कि किनारे चलने वाली माँ बहनें हमारी मतलब बड़ी ही वो होती हैं। एक बात की बात मैं आपको बताऊँ, यहीं की बात है, मैंने उससे कहा यार तुम क्या बिल्कुल चढ़ा दोगे क्या, तो उस ड्राइवर कहता है इशारे में कि हाँ चढ़ा दूंगा।
0: लो
1: तो इतना कौन सी गर्मी है, जाना सबको सब छोड़ के है, है?
0: सही बात
1: कि तुम थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते हो। किसी रिक्शे वाले को तुम 1 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए तुम पूरा उससे पूरा आधा घंटा अपना बर्बाद कर देते हो, जरा सा आगे 5 मिनट पहुँचने के लिए अपना सारा दिमाग अपसेट कर लेते हो, क्रॉस कर देते हो, गलत रूट से, गलत साइड से निकल जाते हो। अरे भाई थोड़ा देखो, तुम्हारे भी बच्चे तो कहीं ना कहीं स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तुम्हारे भी बच्चे तो किसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो नकली दवा क्यों बनाते हो, कभी उनके पल्ले पड़ गई तो, वो हॉस्पिटल में बीमार हुए, दवा खाने से आ गई तो उन्होंने वो दवा खा ली और वो बेचारे नहीं रहे, तो तुम्हारी बनाई तो नकली दवा है जो उन तक पहुँच गई, तो किस बात की ताकत का क्या भरोसा। एक और आपको बात बताऊं, बच्चे लड़ रहे थे तकिया के लिए कि ये तकिया मेरी है, इसको मैं लगाऊंगा, भाई बहन थे छोटे थे
0: जी,
1: और वो एक कह रही थी मैं लगाऊंगी, और दोनों में खूब युद्ध हुआ, उसके बाद दोनों सो गए, सुबह दिखाई पड़ा कि तकिया जमीन में पड़ी थी। रहना कुछ नहीं है पास में, ये ताकत, ये शोहरत, ये इसरत, ये बालू के कण के बराबर है। लेकिन हम जो है ऐसा नहीं करें जिससे हमको, हमारे सब बच्चे सुख रहें, हमारा समाज सुखी रहे, आसपास के लोग हमारा आदर से नाम लें। जब भी कभी आपका बच्चा कहीं जाए तो ये कहा जाए कि अरे भाई ये फलाने का लड़का है, अरे भाई इनके बाबा बड़े रहमदार थे और उन्होंने देखो बसा दिया इतने लोगों को, इन्होंने ऐसा कर दिया।
0: अरे बहुत, मतलब आपका अंदाज, आपका तरीका मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। और कितने छोटे छोटे मतलब दृष्टांत से आप समझा देते हैं, मतलब इतना प्यारा लगता है। मुझे लगता है कि जो भी इस वक्त सुन रहा है इस रेडियो को, वो यही समझ गया है कि हमारे अंजनी सर का जो तरीका है, जो लहजा है, वो इतना सरल है और इतने प्यार से, इतने मीठे अंदाज में आप समझा देते हैं चीज़ों को। और ये बात सही है। वैसे आज आपको हम बता दें, इत्तेफाक की बात है कि आज ऐसा दिवस भी है जिस पर हम शायद इस पर बात कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जबरन पीड़ितों का स्मरण दिवस।
1: जी,
0: जो जबरन पीड़ित किए जाते हैं आज उनको याद करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये लगेगा कि अगर कोई पीड़ित की बात आएगी तो सबसे पहले आएगा कि भाई जो गुंडे हैं, जो चोर हैं, या जो बड़े बड़े कई बार हम लोग पॉलिटिशियंस का नाम भी लगाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वो उसके साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि कहीं तो हम भी वही काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेवल छोटा है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जैसा कि अभी आपने एक रिक्शे वाले का एग्जांपल देके समझाया, तो कई बार हम ये नहीं देख रहे हैं, हॉर्न ब्लो करते जा रहे हैं, उससे सामने वाले के कान पर, अपने खुद के कान पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। और वही जब पीछे वाला हमको हॉर्न ब्लो करता है तो फिर हम पलट के गुस्से में देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सेम काम हम आगे वाले के लिए खुद अपने साइड से कर रहे हैं। तो मुझे तो आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फिलहाल अपने गोंडा में भी नजर आती है कि जगह नहीं होती लेकिन पीछे से लोग हॉर्न ब्लो करते हैं।
1: जी।
0: देख रहे हैं कि जैम है, आप बढ़ भी नहीं सकते हो, उसमें लगातार हॉर्न ब्लो
1: करते हैं।
0: और इसीलिए शायद लोगों को पता हो या ना हो, बहरों का देश जो है वो भारत कहलाता है।
1: जी, बताइए कितने दुख की बात है।
0: बहरों का देश।

0: कल में रखी और अचानक घंटी बज जाए तो आप कांप जाते हो,
1: कांप जाते हैं।
0: उसी तरीके से जो आजकल डीजे बजते हैं वो इतनी फास्ट आवाज में बजते हैं और इसके लिए अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो काहे भाई, क्या बिगाड़ा है आपके बच्चों ने आपका, या जो डीजे चला रहे हैं उन बेचारों को काहे बहरा करने पे उतारू है।
1: करेक्ट।
0: अरे भाई, मधुर संगीत कितना कर्ण प्रिय होता है। एक बार कोई पुराने गायक का बढ़िया सा गाना सुन के देखें आप रेडियो पे, कितना दिल के तह में उतर जाता है और कितना सुकून देता है। पेड़ों तक को कहा गया है कि पेड़ों तक को अगर वो मधुर संगीत सुनाया जाए तो वो हरे हो जाते हैं, वो फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। इंसान की तो बात ही छोड़,
1: इंसान की तो बात ही, सही बात है, बहुत प्यारी बात कही आपने कि फिलहाल हम जिस कल्चर में जा रहे हैं या जो कर रहे हैं
0: जी,
1: हमको भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये मुझे लगता है एक इंसान की पहचान यही है कि भाई खुद से रुक करके चीज़ों को सोचना और करना। अब वो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ की बात हो या हम सार्वजनिक किसी आयोजन का हिस्सा हो
0: जी,
1: वहाँ पे इन बातों का ख्याल रखना होगा
0: जी।
1: करेक्ट। और चूंकि इतनी अहम बात आपने कही, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपने कोट किए, वैसे आपको हम बता दें कि आज एक और दिवस मनाया जाता है और वो है लघु उद्योग दिवस, स्मॉल स्केल बिजनेसेस का डे मनाया
0: जी,
1: जाता
0: जी,
1: है। देखिए हम बड़ी बड़े बिजनेस की बातें बहुत जानते हैं, ब्रांड्स का नाम लेते हैं कि फला का जूता है, फला की शर्ट है, पैंट है, कार इसकी है
0: जी,
1: लेकिन हमारा जो दिनचर्या गुजरती है, जो हमें हमारी जो जीवन चलता है, वो पड़ोस के चाचा जी की दुकान से, फलाने के अचार से, फलाने के पापड़ से, फलाने के मंजन से चलता है।
0: सही है।
1: तो आज हमें उन स्मॉल स्केल बिजनेसेस को याद करने का दिन है जो हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस की दुकानें हैं। क्या लगता है, जैसे कि अगर हम बिजनेस की बात करते हैं आप
0: जी,
1: चूंकि मुझे लगता है कि आप खुद एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो फिलहाल जिस तरह का भी सिनारियो आप देख रहे हैं
0: जी,
1: बिजनेस के लिए युवाओं को जो सुन रहे हैं आपको, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सर, इसके बारे में एक बहुत अच्छे राइटर हैं परमेश्वर सिंह जी पयाकुर के, उन्होंने बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा
1: जी,
0: और ये मेरा नहीं है, ये किसी महापुरुष का ही है जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उसको पढ़ने का हमें, उन्होंने किताब हमको दी, पढ़ने का मौका मिला। देखिए भारतीय संस्कृति ये है, अल्पतम में निर्वाह, यानी निम्नतम में कितने कम से कम में आप अपना जीवन चला सकते हैं, और ये पाश्चात्य सभ्यता है कि आप चाहे कर्ज लेके लेकिन घी ही पीजिए, अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा मकान ले लीजिए, अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी कार ले लीजिए, और ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन आप घी पीजिए चाहे वो कर्जा लेके क्यों ना। तो यहाँ पर उस बात का एक ब्रीफ मिल जाता है कि हमारा भारतीय कल्चर, हमारी भारतीय जमीन, हमारे भारतीय मौसम, हमारा भारतीय पर्यावरण, सभी इतने अच्छे हैं कि यहाँ तीन तरह के मौसम, चार तरह के मौसम में हैं कि जिसमें हम बहुत आसानी से, इतनी ज़मीन है कि बहुत आसानी से हम उसमें निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन हमने हर चीज़ में अति की, हमने हर चीज़ में अति की जो हमारे बच्चों को ताज़ी हवा नहीं मिल पा रही है।
1: सही बात है।
0: हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी, 60-60 माले की मकान बना लिए, और सोचिए आपकी ज़मीन बच्चों के पैर के नीचे नहीं आने पाती है, वो घास पे नहीं खेलने पाते, वो शरीर को पुष्ट करने के लिए मिट्टी पे नहीं चलने पाते हैं, पार्क में शायद ही कभी जाते हो, हर समय जूता, मोजा और टाई
1: उसी में रहते हैं।
0: कितना अपर्यावरण वातावरण बना लिया है हमने, अपने हाथों से अपनी कब्र हम खोद रहे हैं। अरे वो बच्चे जो मैदान में खेलते थे, सारे मैदान तो लॉक हो गए हैं, अब आपको मैदान नहीं मिलेगा खेलने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों को सुबह पैदल चलना चाहिए थोड़ा सा, जैसा अदनान साहब आप करते हैं, मैंने आपके ही मुँह से सर सुबह आज जरूर टहलते हैं, और ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, हम घर में काम तो बहुत कर लेते हैं, क्यारी व्यारी ठीक कर, लेकिन हम टहल नहीं पाते। टहलना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, टहलना चाहिए। और देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं
0: जी।
1: हमेशा हम ये कहते हैं कि जग सुधार की बात करते हैं, सोशल वर्क की बात करते हैं
0: जी।
1: कितनी चीज़ें बिगड़ गई इसकी हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम अपनी ही एक सुबह से शाम की जो ज़िंदगी है उसमें जो हम कर सकते हैं 100% कर सकते हैं, वो हम खुद कितना कर पा रहे हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं।

0: तो खुद को स्वस्थ रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है। और जिस तरह के प्यारे इंसान आप हैं, ऐसे देखकर लगता है जब कोई कहता है कि इंसानियत खत्म हो गई तो मन करता है कि आपको लाके खड़ा कर।
1: और यहाँ पर एक मैं बात और कहूँगा
0: जी
1: कि परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु है, वो सारी परिस्थितियाँ उसके हाथ में है, वो सबको जितना उसके हक में उसको देता है। इसी पर कबीरदास जी का कहना है, कबीरदास जी बड़े सर्वमान्य कवि रहे हैं, अपने समय के स्वर्ण युग के कवि रहे हैं, उन्होंने कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टन के पास, यानी कोई दुष्ट व्यक्ति के पास भी अगर आपका घर है, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टन के पास, और जोई करे सोई भरे तू क्यों हो उदास। आपके हाथ में इतनी बड़ी शक्ति है और वो है स्वयं को सुधारने की। आप अगर धर्म पे चल रहे हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कष्ट नहीं दे सकती, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही आपसे जलन रखता हो, कितना ही आपका बुरा चाहता हो, लेकिन आपके कर्म ही आपके सामने आते हैं और किसी के कर्म आपके सामने नहीं आते हैं। और जो उसने किया है वो उसके कर्म जाने, वो अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप धर्म पे हैं तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, और आप तेज आंधियों में, तेज दावानल में, तेज आग के भीषण प्रकोपों में आपको वो बचा के रखेगा, हिफाजत करके रखेगा, जैसे LIC के दोनों हाथ होते हैं और बीच में ज्योति जला करती है।
0: वाह
1: जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और दूसरी चीज, एक ठग को ठगने दूसरा ठग बैठा हुआ है और वो आसमान से सबको देख रहा है, तो यहाँ भी आप ना चिंता कीजिए, आप ठगे गए हैं, इस पे आपको बहुत दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी बड़ा ठग उसको ठगने के लिए बैठा
0: तैयार हुआ
1: है, वो उसको नेस्तनाबूत कर देगा और आपकी आंखों के सामने करेगा। स्वर्ग और नर्क कहीं अलग नहीं, धरती पर देगा और आपकी आंखों के सामने करेगा। स्वर्ग और नर्क कहीं अलग नहीं, धरती
0: इसी दुनिया पे। सही बात है, तो बहुत ही प्यारी बात कही है आपने और बहुत सच्चाई है इन बातों पर। आज का हमें लगता है कि हमारी आपका जो बातचीत का अंश है वो ज़रूर मतलब बड़ा प्रैक्टिकल है। कोशिश की गई कि बातें जो है हवा हवाई ना रहें बल्कि बहुत प्रैक्टिकल रहे। हमें आपसे और अपने से मैंने शुरुआत की और बहुत प्यारे अंदाज में आपने सब कुछ बताया। आप यहाँ आए, इतना वक्त निकाला और आप हमेशा वक्त देते हैं यहाँ, हम लोगों को प्यार देते हैं, नए आर्टिस्ट को प्रेस करते हैं और गोंडा वासियों को भी बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आप सलामत रहें, आप खुश रहें और आप स्वस्थ रहें, ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सभी की दिल से दुआ।
1: मानव समाज के कल्याण के लिए हम सब वर्क करें, और
0: बिल्कुल
1: ये हमारा सबका उद्देश्य,
0: हम सभी का संकल्प है। सो दोस्तों, आज का ओपन माइक मुझे लगता है ओपन, आप सोचेंगे कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। जब बात ओपननेस की आती है तो जो मन के अंदर के थॉट हैं, जिसको हम कहने से अक्सर हिचकिचाते हैं, उसको अगर ओपनली कह दिया जाए तो वो भी ओपन माइक का ही एक हिस्सा है।
1: जी,
0: और आज हमारे अंजनी कुमार श्रीवास्तव सर ने अपनी मन की बात कही, जो था, जो उनके जहन में है और जो कुछ वो देखते हैं और जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम सभी को लगता है कि ऐसी बातों पर चर्चा होती रहनी चाहिए क्योंकि ये हमारा जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सो चलिए, फिलहाल आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज का ओपन माइक का प्रोग्राम कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा, और एक बार वापस से शुक्रिया आपका सर कि आप आए स्टूडियो में, आपने वक्त निकाला।
1: और आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थोड़ा अमल करने की कोशिश करें जो हम लोगों ने डिस्कस किया।
0: बिल्कुल,
1: अच्छी चीज़ों को हम हो सकता है अपनी बुद्धि पर तो कहेंगे, उसके बाद आप लोगों की बुद्धि भी है, तो देखिए जो ठीक हो वो करें।
0: बिल्कुल, और हम भी अपने लिए बहुत सारी कोशिशें करेंगे। तो चलिए, इजाजत दीजिए और आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल आप सुन रहे थे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM का संडे स्पेशल शो ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM। ख्याल रखिएगा।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: नमस्कार भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 2:02 बस स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्त्री। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौक यूनिटी, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और ये है आपका NTR टॉप 20 यानी कि बॉलीवुड के 20 गाने बैक टू बैक, और उसके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप। और आज का रोमांटिक मौसम देखते हुए हमारे अंदर की रोमांटिक एरा भी जाग चुका है, और आपके लिए पेश करने जा रहे हैं हम 20 इतने बेहतरीन रोमांटिक सॉन्ग जिनको सुनने के बाद आप करेंगे ऊ ला ला, बिकॉज गाने बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। एज यूजुअल हम हमेशा से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गानों को चुन के लेकर आते हैं, रात भर बैठ के हम चुनते हैं और सुबह आपके लिए पेश करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सी प्लेलिस्ट। तो आइए चलते हैं हमारे पहले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन हो चुका है, तो अपनी अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, अपनी अपनी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा कि कौन कौन चढ़ गया है अपनी फेवरेट वाली आशुनदी के प्रोग्राम में एंजॉय करने के लिए सॉन्ग 20। और हम ट्यून करेंगे अपना पहला वाला गाना, क्योंकि पहले गाने से ही होने वाला है आपको नशा। सो व्हाई नॉट अरिजीत सिंह की आवाज में सुन लेते हैं बेफिक्र फिल्म से नशे से चढ़ गई। ओए अंजी, बिल्कुल चढ़ने वाली है, लेकिन क्या गानों का सुरूर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।
1: इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: अंजी और नशे सी चढ़ गई अरिजीत सिंह की आवाज में आपने इंजॉय किया बेफिक्र फिल्म से एक जबरदस्त हाई बीच गाना। और आपको बता दें आवाज भले ही आपकी पसंदीदा अरिजीत सिंह के साथ कर अलीजा की हो, लेकिन इसमें बोल जो लिखे हैं वो जयदीप सहानी और ऑफ कोर्स आपकी कर अलीजा नहीं लिखे, विशाल एंड शेखर का म्यूजिक है। और इसी अंदाज के साथ आपका वापस से वेलकम करते हैं इंटर टॉप 20 में आपके अपने बॉलीवुड वाले कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी बॉलीवुड टच वाली उन्नति, और मेरे साथ चैट बॉक्स में मौजूद है उस्मान खान जी, आपका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून आरजे मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड नाजिया अंसारी जी हमारे साथ मौजूद है, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। भैया दो लोगों ने लगा दी अपनी अपनी हाजिरी कि हम मौजूद हैं अपनी आरजे के साथ इंजॉय करने के लिए सुपर डुपर हिट रोमांटिक लेकिन हाई बीट वाली प्लेलिस्ट। और आपकी हाजिरी की तरह जनाब मोहतरमा आपको हम आवाज़ दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, जहाँ भी हों काम धंधा छोड़ के पहले हाजिरी लगाएं ताकि हमको भी समझ में आ जाए, हमको भी पता चल जाए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं इंजॉय करने के लिए बैक टू बैक सॉन्ग्स। और आज की कड़ी यानी कि कहें तो आज की सीढ़ियाँ चलने वाली हैं ऊपर से नीचे, यानी कि आज के जो सॉन्ग्स होंगे वो स्टार्ट तो होंगे आपके एकदम नए ज़माने से लेकिन ख़त्म होंगे आपके गोल्डन ईरा पे जाकर के, यानी कि वो ईरा जो आपको बहुत प्यारा लगता है, बहुत पसंदीदा है, जिसमें आपके थोड़े से पुराने गाने आते हैं, जिसमें मुकेश के, किशोर के, लता जी के, आशा के, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ होती है। तो इंतज़ार करते रहिए क्योंकि स्टार्टिंग भले ही हम बहुत ही ज़बरदस्त गानों के साथ करने वाले हैं लेकिन जैसे जैसे जैसे जैसे शाम ढलेगी, जैसे जैसे इवनिंग होती जाएगी, दोपहर को बाय बाय टाटा करेंगे, वैसे ही हम अपने सिंगर्स को भी बदलते जाएंगे, बॉलीवुड के एरा को भी बदलते जाएंगे और आपके उस एरा के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक गानों को पेश करते जाएंगे। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, ट्यून कर लेते हैं अगला सॉन्ग, और अगला सॉन्ग है रेस 3 से। तो जरा अपनी अपनी कुर्सी की पेठी बांध दीजिए क्योंकि अगला गाना आपको चलाने जा रहे हैं सलमान खान पर फिल्माया गया सॉन्ग हीरिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक गिलस स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 19.

0: मीत ब्रोस डीप मनी और नेहा भासनी की आवाज में आपने एंजॉय किया कुमार साहब के लिखे हुए बोल और संगीत ऑफ कोर्स आपकी अपने मीत ब्रोस का था। एंड रेस 3 फिल्म से ये गाना हम आपके लिए लेकर आए थे, हीर ये नशा तेरा कर की ना देख हमें क्या हो गया कि रांझा ये तबाह हो गया। भाई रांझा वांझा का मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारे चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं संतोष कुमार जी, आपका स्वागत करते हैं इंडिया टॉप 20 में। और आपने लिखा है हाय हाय कैसे हैं आप। एंड इसके बाद है महेंद्र दीपन जी फ्रॉम राजस्थान और लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून रति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, बहुत ही प्यारी स्माइल आपने भेज दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 2 बजे से हां जी आज संडे स्पेशल, यानी कि आज या तो सुबह से आपको मिलते हैं आपकी आरजी अदनान या फिर दोपहर से हमारी एंट्री हो जाती है और नॉनस्टॉप आपकी इवनिंग को सेट करने के लिए हम लगातार आपके साथ बने रहते हैं। इसी के साथ आइए चलते हैं आपके अगले वाले गाने को ट्यून करने के लिए, बिकॉज अगला सॉन्ग इससे भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। और मुझे याद है ये गाना एक बार जंगल थीम पर बनाया गया था, एक्चुअली गाना तो बॉलीवुड का है, फिल्माया आपके खिलाड़ी पर गया है, उनकी फिल्म का नाम भी खिलाड़ी ही है। अब आपने गैस कर लिया होगा गाना कौन सा होने वाला, लेकिन ये गाना एक वक्त में बच्चों का इसलिए पसंदीदा था बिकॉज चिड़िया इस पर डांस कर रही थी, बहुत सारी चिड़िया जंगलों के अंदर रह रहकर मॉर्निंग होते ही जैसे बिग बॉस में गाने बजते हैं अलग अलग तरह से, वैसे ही उन लोगों की मॉर्निंग हो रही थी इस वाले गाने से। आई होप आपको याद होगा क्योंकि वो वीडियो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने कई दफा उसको देखा था और कई दफा पसंद भी किया था। हरे पीले लाल नीले न जाने कितने तरह के तोते मैंने देख लिए थे उसके अंदर और कितने तरह के उल्लू भी देख लिए थे। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं आपके खिलाड़ी 786 से हुक्का बार, सुनते रहिए एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर अगली बॉलीवुड न्यूज के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए गुनगुनाते रहिए मुस्कुराते रहिए क्योंकि ये है आपका सन स्पेशल इंडिया टॉप 20।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 18।

0: अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी 786 से आप एंजॉय कर रहे थे हुक्काबार, आवाज है हिमेश रेशमिया, विनीत सिंह और अमन की, और ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारा सा गाना लिखा भी हिमेश रेशमिया साहब ने ही है। और इस गाने को एंजॉय करने से पहले मुझे पता ही नहीं था जनाब कि हिमेश रेशमिया की आवाज़ है, किसका कोई आइडिया मुझे था भी नहीं। लेकिन जिस दिन बहुत ध्यान से इस गाने को सुना और इसके बारे में पढ़ा, तब जाकर समझ में आया कि भाई इतने वर्सेटाइल सिंगर हैं हिमेश रेशमिया साहब। एक टाइम था जब उनके गाने आते थे तो मार्केट में धूम मच जाती थी, हर डीजे वाले भैया जिन्हें अपनी कैसेट बेचनी होती थी, जिन्हें अपनी चीज़ें बेचनी होती थी, वो कहीं ना कहीं हमेशा से हिमेश रेशमिया के गाने लगा कर बैठ जाते थे। कुछ गानों को बैन भी कर दिया गया था, कुछ गानों की बात होती थी, कुछ की चर्चा होती थी, और हर एक बच्चे की ज़ुबान पर कहीं ना कहीं हिमेश भाई साहब नज़र आया करते थे। इवन हमारे भी कई बार हम गुनगुनाए रहे होते थे कुछ भी गाने उनके, और ऑफ कोर्स हम गलत लिरिक्स गाने में हमेशा से आगे हैं और आज भी हम उल्टे ही गाते रहते हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम गाते हैं वो कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। वो अलग बात है कि मेरी मम्मी देख के हाँ ज़रूर देती हैं कि ऐसे गाना गाया जाता है बेटा। फिलहाल आइए चलते हैं, आपको बॉलीवुड न्यूज़ की तरफ लेकर चलते हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, बॉलीवुड का शो बॉलीवुड की गॉसिप ना हो तो भैया कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और सुनने में आया है कि आमिर खान जुड़ रहे हैं रेस 4 में। कितनी रेस होगी? रेस 1 हो गया, रेस 2 हो गया, रेस 3 हो गया, रेस 4 भी आ गई, मतलब इतना कैसे दौड़ रहे हैं आप? हमको तो आज से यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई इतना कोई कैसे दौड़ रहा है, मेरी गली में तो पानी भर रहा है, मैं दौड़ रही हूँ, मैं मुँह के बल ही गिर जाऊँगी, इसलिए मैं दौड़ भी नहीं रही। फिलहाल दौड़ना आता ही नहीं है, अब तो भूल चुके हैं। जब भी दौड़ते थे तो टीचर पीछे होती थी, मैं आगे हुआ करती थी, वो अलग बात है। फिलहाल आमिर खान अपनी रेस 4 में ज्वाइन हो चुके हैं। और इसी के साथ हम आपको बता दें इस फिल्म में आपको कौन कौन से हीरो नज़र आएंगे। तो आमिर खान जो कि लीड रोल में होने वाले, इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके साथ टाइगर श्रॉफ भी नज़र आएंगे। डायरेक्ट कर रहे हैं धूम 3 के डायरेक्टर विजय कृष्णा साहब। तो भैया एंजॉय करते रहिए, क्योंकि रेस 4, अगर आपको रेस अभी तक पसंद आई है, आपको दौड़ना भागना पसंद आया है, और उसका एक खूबसूरत गाना जो सभी का पसंदीदा है, आई होप आपका भी होगा, अल्लाह दुहाई है, आपको पसंद आया होगा, तो आई होप ये गाना वापस से आए, लेकिन उसी अंदाज के साथ है, कुछ नया ना होना चाहिए इसके अंदर। और आइए एंजॉय करते हैं हमारा सॉन्ग नंबर 17 ऑफ द ईयर वाला गाना। हम डेडिकेट करते हैं अपनी सभी महिला लिसनर्स के लिए, सभी अपनी महिला मंडली के लिए, अपने महिला मित्रों के लिए, बिकॉज हमारी देसी गर्ल से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये हम नहीं कहते, प्रियंका चोपड़ा खुद कहकर गई हैं, तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। ये डेडिकेटेड है हमारी सभी महिला मंडली, यानी कि हमारी सभी ब्यूटिफुल वुमेन्स के लिए, जो अपने घर में बैठकर सोचती हैं कि यार थोड़ा सा वजन बढ़ गया, अच्छा नहीं लग रहा हूँ, आज तो मेकअप भी नहीं किया, अच्छे नहीं लग रहे हैं, गालों पे पिंपल आ गया, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तो भैया आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और आपको यकीन नहीं होता तो सॉन्ग नंबर 17 सुनकर देख लीजिए, बिकॉज दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड फॉर यू। स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: और ये गाना जिसको सुनने के बाद हर दूसरा बंदा झूम उठता है, इसी गाने को शाहरुख खान ने कहा था कि ये गाना फिल्म में होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक तो ये कव्वाली फॉर्म में था और हमारे शाहरुख खान साहब को लगा कि ये गाना अगर फिल्म में आएगा तो ये हिट नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्टर और डायरेक्टर के बीच में जब भी कोई बहस होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डायरेक्टर साहब जीत जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उस ज़माने में हमारे डायरेक्टर की थोड़ी ज़्यादा सुनी जाया करती थी और इसीलिए डायरेक्टर साहब यहाँ पर जीत गए और उन्होंने इस ज़बरदस्ती के इस गाने को उठा करके उनकी फिल्म के अंदर डाल दिया। बिना मन के इस गाने की शूटिंग भी हो गई, शाहरुख खान साहब ने इस पर पूरा एक्शन कर लिया, डांस कर लिया, सब कुछ कर लिया और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तब जाकर समझ में आया कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला अगर कोई गाना इस वक्त बन रहा था तो वो यही सॉन्ग था। कभी कभार ऐसा होता है ना हमारी ज़िंदगी में, जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है और हमें लगता है यार सब कुछ बर्बाद हो गया, सब ख़राब हो गया, अब तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, मेरे मन का तो कुछ भी नहीं था, मैं तो चाहता भी नहीं था ये हो या फिर ना हो, लेकिन वो हो जाता है क्योंकि आपके लिए जो लाइफ के डायरेक्टर हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना आपकी ज़िंदगी में इसको करा ही जाए। और इसके बाद आपको समझ में आता है जब चीज़ें कुछ वक्त गुजरने के बाद कि ये तो हिट हो गई, इसी से तो आपको नया टारगेट मिल गया, यही तो है जो आपको अपनी मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। तो कभी कभी निराशा में भी आपकी आशा छुपी होती है और आपको ये बात पता नहीं चलती। हमें जो चीज़ ख़राब लगती है समटाइम्स वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत मोड़ लेकर आती है। अगर शाहरुख खान इस गाने को हटा देते तो शायद मैं हूं ना फिल्म को पसंद तो किया जाता, लेकिन ये ज़बरदस्त गाना हम सभी के पास कभी पहुंचता ही नहीं, हम कभी इसको सुनते ही नहीं और इस कदर इसकी दीवानगी किसी के अंदर देखी जाती ही नहीं। तो भाई आप अपनी ज़िंदगी के डायरेक्टर को कुछ भी कहिए या ना कहिए, उनकी बात सुनिए या ना सुनिए, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें आपके साथ हो रही हों भले ही वो आपको पसंद ना भी आए, उनको हो जाने दीजिए, बिकॉज़ क्या पता आगे जाकर वो भी इस गाने की तरह हिट साबित हो जाए। इसी के साथ आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग ये उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने चैट बॉक्स में एंट्री कर ली है, क्योंकि आपने मारी एंट्रियाँ तो दिल में बजी घंटियाँ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gara 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 15.

0: जी, तो किसके दिल में किसके लिए घंटी बज चुकी है, जरा मुझे बताएं किसकी एंट्री पर आपका दिल टन टन कर रहा है, क्योंकि मेरा दिल तो धक धक करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बॉलीवुड का दिल टन टन करता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेश त्रिपाठी जी, लिखा है हेलो मैम, हेलो कैसे हैं आप, और नासिया जी की तरफ से बहुत सारे इमोजीज, और महेंद्र जी लिख रहे हैं जो होता है होने दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, जो होता है होने दो। मुझे ऐसे गाने याद आ जाते हैं बीच बीच में, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे ही कोई बंदा कुछ भी बात करने बैठता है ना, और मेरे दिमाग में तुरंत ही बॉलीवुड की घंटी बज जाती है, और हमेशा से मैं गाने पकड़ लाती हूँ। वो जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक देना होता है, और अपने दोस्तों की ग्रुप में बैठ कर, जब किसी का भी डिस्कशन चल रहा होता है, किसी की भी लड़ाई हो जाए, किसी की भी बातें चल रही हों, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाला इंसान होता है वो इकलौता मैं ही होती हूँ, और मेरे दोस्त मुझसे पलट के कहते हैं हाँ तो ये कर लो पहले, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम्हारे इसको करे बिना कुछ होगा नहीं। हम कहते हैं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे याद आ जाता है तुम लोग बातें करते हो, मैं बातों ही बातों में अगर गानों की तरफ चली जाती हूं तो मेरी क्या गलती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो अलग बात है कि हमारा अंदाज थोड़ा सा अलग है। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग आपकी अपने पसंदीदा सलमान खान पर फिल्माया गया है, और मुझे लगता है सल्लू मियां ही इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे ट्रेंड बनाए हैं जो कोई बनाने की सोचता भी नहीं है। लाइक जिस क्रॉप टॉप को आप एकदम कहते हैं कि फैमिनिन है, सिर्फ लड़कियों के अलावा कोई नहीं पहन सकता, वही क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहनकर सलमान खान ने पूरी मूवी बना डाली। जिन चमक दमक वाले कपड़ों से लोग दूर रहने की हिदायत देते हैं कि इतने चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, सलमान खान ने वो कपड़े पहने हुए हैं, नियॉन कलर का ग्रीन सूट, उसके अंदर ब्लैक कलर की शर्ट, और वो गाना, वो सूट और वो डिज़ाइन इतने हिट हो गए किसी को पता भी नहीं था। तो सलमान खान जिस तरह से फुल स्टाइल में, फुल कॉन्फिडेंस में सामने निकल कर आते हैं, वाइट टी शर्ट, रेड कलर की पैंट, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या गॉसिप करेगा, ऐसे ही आपको भी होना है जनाब, चार लोग क्या कहते हैं भूल जाइए, बिकॉज चार लोग बदल जाते हैं। आज जो आपकी नाकामयाबी पर आपको ताने मार रहे हैं, या फिर आपकी कोशिशों पर ताने मार रहे हैं, आगे जाकर यही चार लोग आपकी तारीफों के पुल भी बांध देंगे, बिकॉज क्योंकि उस वक्त आप कामयाब हो चुके होंगे। तो चार लोग क्या कहते हैं उनको जरा छोड़ते हैं, और हम चलते हैं सुनने के लिए सॉन्ग नंबर 14, लाइक चुनरी चुनरी। एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 14।

0: और चुनरी चुनरी करते हुए हम वापस से आ चुके हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम में। आपका वापस से वेलकम करते हैं। प्रोग्राम चल रहा है इंडिया टॉप 20। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजी उन्नति और ये है आपका गोंडा वाला एफएम रेडियो 89.6 एफएम आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। एंड हमारे धर्मेश जी कह रहे हैं क्या सॉन्ग है, गजब मजा आ गया सुन के। और इसके अलावा लिखा है सॉन्ग सुनने का जी करता है सिर्फ नति मैम के शो में, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, अगले बॉलीवुड सॉन्ग को ट्यून करने के लिए। अगला बॉलीवुड सॉन्ग आपको पार्टी वाइब देगा, आपको शादी की वाइब देगा, आपको कोई भी वाइब दे सकता है, बिकॉज हम चलेंगे सीधे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ छाड़ने, कहाँ के लिए पता नहीं। फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं मिल करके आपकी अपनी पसंदीदा फिल्म से, ये जवानी है दीवानी से दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। जी हाँ, स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसके बाद हम चलेंगे अगले गाने की तरफ, अगले बॉलीवुड न्यूज की तरफ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: हाँ जी भैया, तो आपने इंजॉय कर लिया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, तो क्या ख्याल है वो अपने 90s की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि हम काफी देर से नए जमाने के नए नए गाने सुन रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है नए जमानों के बीच में, जैसा कि हमने वादा किया था, एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, और एक घंटे के कंप्लीट होते ही क्यों ना आप थोड़ा सा 1990 की तरफ बढ़ लिया जाए और कुछ ऐसे गाने इंजॉय कर लें जो आपके बेहद ही पसंदीदा है। आज हमने आपसे वादा किया था कि हम रोमांटिक गाने प्ले करेंगे, लेकिन रोमांटिक गाने हमेशा रोते हुए हो, ये कहाँ वादा किया था, है ना। बॉलीवुड ने हमें रोमांटिक गानों को भी इतने ज़बरदस्त तरीके से पेश करके दिया है कि जब भी सुनते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मेरे गार्डन में कमल का फूल खिलाता है, हालांकि खिलता तो कीचड़ में है, बट मेरे गार्डन में हमेशा कमल ही खिलता है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और क्योंकि ऑफकोर्स अब हमारा एक घंटा कंप्लीट हो चुका है, जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, जैसे जैसे शाम आती जाएगी, वैसे वैसे हम आपको आपके पुराने गानों की तरफ लेकर जाते रहेंगे। तो सॉन्ग नंबर 12 आपके लिए ट्यून करते हैं हम मोहरा फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले सॉन्ग को, अगले बीट को, अगले रोमांटिक गाने को लेकर के आपके इंडिया टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 12।

0: हाँ जी, तो आपने एंजॉय किया ओल्ड दिस गोल्ड वाला गाना, अनु मलिक का म्यूजिक, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, इश्क फिल्म से आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। एंड सेम सॉन्ग रिमेक करके बनाया गया था आपकी अगली फिल्म गोलमाल रिटर्न्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, बहुत ज़्यादा प्यार मिला था इस गाने को। और ऑफकोर्स दोनों ही गाने अपने आप में सुपर हिट हैं। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं, ट्यून करते हैं सॉन्ग नंबर 10 आपकी अपने फेवरेट DDLJ फिल्म से, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले सॉन्ग अगली बीट पर, तब तक Stay tuned.
1: Radio Gala 79.6 FM presents India's Top 20 Songs. Song number 10.

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9817976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 9।

0: हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे हैं मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है और चैट बॉक्स में हम पे लगा दिए गए हैं इल्ज़ाम इस बात के हैं कि मैम हमारी प्लेलिस्ट चुरा ली आपने। हाँ नहीं, हमने नहीं चुराई आपकी प्लेलिस्ट, सच्ची बोल रहे हैं हम। फिलहाल के लिए ये लाइन लिखी हमारी नाजिया अंसारी जी ने कि उलाला रोंदी मैम गजब, मैंने कहा था ना कि आज की प्लेलिस्ट में आप जरूर करने वाले हैं उलाला, और देखिए साबित भी हो चुका है, इसलिए मैं अपना नाम नहीं बदलने वाली हूँ फिलहाल। एंड धर्मेश जी लिख रहे बड़े अजीब अजीब नगमे सुनने को मिले, अजीब में अच्छे वाले थे या ये बेकार वाले थे ये मुझे समझ में नहीं आया। एंड महेंद्र जी लिख रहे हैं उन्नति मैम जी आज की प्लेलिस्ट कहाँ से मिली आपको, ये हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट है और हम आपको बताएंगे ही नहीं कि हमने कहाँ से उठाई, क्यों उठाई, कैसे उठाई और हमने कौन कौन से गाने अपनी प्लेलिस्ट में आज भी सेट करके रखे हुए हैं। इसके बाद हमारी नाजिया जी ने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये उनकी प्लेलिस्ट है, उन्हीं के घर से चुराई गई है। ना ना ना, ऐसा हमने किया ही नहीं, आपने मुझे अपने घर का एड्रेस कभी बताया ही नहीं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं, सॉन्ग नंबर 8 आपका इंतज़ार कर रहा है और आप सुनने जा रहे हैं इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, क्या बात है। आइए एंजॉय करते हैं सोनाली बिंद्रे का गाना, स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है।
1: आहा, क्या बात है। आमिर खान साहब शायरी भी अच्छी कर लेते हैं फिलहाल, और ऑफ कोर्स हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी जुड़ गए हैं। धर्मेश जी लिख रहे हैं अच्छे वाले मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी के बाद धर्मेंद्र जी ने लिखा है, मोदी जी नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, आपके मुख से मेरा नाम निकला, मैं आ गया। जी हाँ, बहुत बढ़िया बात, आप आ गए, आपका स्वागत करते हैं कॉलोनी गुना में। हम आपको बहुत याद कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए हमने महेंद्र की जगह पर धर्मेंद्र बोल दिया था, और हमें आपके डायलॉग याद आ गए थे कल के कि बसंत जी इन कुत्तों के सामने मत नाचना। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं, क्योंकि विनोद राठौड़ की आवाज़ आपका इंतजार कर रही है। विनोद राठौड़ अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अंडररेटेड सिंगर हैं, बहुत ही गजब के गाने उन्होंने पेश भी किए हैं, और कमाल की बात यह है कि जिस बेहतरीन से रोमांटिक गाने को आप अब एंजॉय करने जा रहे हैं, वो किसी लड़के ने नहीं, एक महिला ने लिखा है, एक लड़की ने लिखा है। यूँ तो हमें लगता है कि सारे रोमांटिक गाने, सारे दिलों के जज्बात सिर्फ और सिर्फ लड़के लिखा करते हैं, जिसमें समीर साहब का नाम सबसे टॉप पर आता है, आनंद बख्शी जी का नाम आता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी भी फीमेल्स राइटर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत ही बेहतरीन नगमे दिए हैं। तो आइए इंजॉय करते हैं एक बेहद ही अंडररेटेड आर्टिस्ट के लिखे गए बोल, और बेहद ही अंडररेटेड आर्टिस्ट के आवाज़ में छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। इंजॉय करते रहिए बाजीगर फिल्म से, स्टे ट्यून्ड।
2: Radio Gala 89.6 FM presents India's Top 20 Songs. Song number 7.

अनु मलिक साहब का म्यूजिक, रानी मलिक साहब या फिर कहें तो रानी मलिक मोहतरमा का बोल, और विनोद राठौड़ की आवाज़ बाजीगर फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। एंड धर्मेश त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि उन्नति मैम धीरे धीरे आपके फैन होते जा रहे हैं, हम भी अब बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें सुन के हम ब्लश करने लग जाते हैं, आपको ये बात पता है। फिलहाल आइए चलते हैं आपके अगले मैसेज की तरफ। और ओ माय फेवरेट सॉन्ग, क्या बात है, आपका पसंदीदा गाना। वैसे हमारा भी पसंदीदा गानों में से एक आता है ये। एंड नाजिया जी लिख रही हैं, पकाना भी नहीं आता, रोटी बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, हम चावल से काम चला लेंगे, रोटी हम वैसे भी ज़्यादा नहीं खाता। एंड इसके बाद है हमारे धर्मेंद्र जी का कि छुपा के क्या करोगे, सबको पता है एक ना एक दिन चल ही जाता है। ओ माय गॉड, मतलब सबको पता चल जाता है, तो वो उस दिन का इंतज़ार कीजिए। लेकिन एक और बात है, दुनिया भर को पता चल जाएगा, दुनिया भर जान जाएगी कि आपको कौन पसंद है, लेकिन उस एक इंसान को कभी खबर नहीं पता चलती है कि आप उसे पसंद करते हैं। वही सब दुनिया का सबसे अनजान शख्स बनकर घूम रहा होता है कि हैं तुम हमको पसंद करते हो, ओ माय गॉड हमें तो पता ही नहीं था, ये कब हुआ, कैसे हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम झूठ बोल रहे हो। होता है ना, दुनिया भर के हर इंसान को पता होता है, आपके घर वालों को पता चल जाता है, दोस्तों को पता चल जाता है, हर एक इंसान जान जाता है, कायनात जान जाती है कि आप किसी को पसंद करते हो, सिवाय उस इंसान के जिसे आप सच में पसंद करते हो। और उसी के लिए ये गाना लिखा गया था कि सबको तो पता है, मुझे भी पता है, बस तुम्हें नहीं बता पा रहा हूँ और तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत लिखा था रानी साहब ने। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग राहत फतेह अली खान की आवाज़ में आपको पेश करने जा रहे हैं, वन ऑफ माई फेवरेट एंड ऑफ कोर्स आपका भी पसंदीदा होने वाला है गाना, जिया धड़क धड़क जाए। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। सॉन्ग नंबर 6 मिलते हैं अगले गाने पर, स्टे ट्यून्ड।

0: भाइयों बहनों आगे बढ़ा जाए, अगर आपने राहत फतेह अली खान की आवाज में एंजॉय कर लिया हो चिया थड़क थड़क चाहे, तो आइए आपको सुना देते हैं आप किशोर कुमार की आवाज में वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग। और ऑफ कोर्स ये गाना नया नवेला भी बना है, लेकिन जो बात किशोरदा की आवाज में है वो बात कहीं भी नहीं। भाई आपको पता है किशोरदा को लोग कहते थे कि पागल है, और किशोरदा ने साबित कर दिया कि हाँ जो पागल है वही असल में जिंदा भी है। अक्सर लोग आपसे भी कहा करते होंगे कि यार तुम तो पागल हो, तुम कुछ भी समझते हो, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हो, तुम्हारा तो कुछ भी ख्वाब है। बट असल मायने में देखा जाए वो इंसान जो पागल है सच में ज़िंदगी में ज़िंदा वो है, खुश वो है, और बहुत कुछ करने का इरादा भी उसी के पास होता है। अगर आपको ज़िंदगी का हर एक लम्हा महसूस करना है तो थोड़ा सा ख़ुद को पागल बनाना पड़ेगा। इसीलिए आइए चलते हैं, हमारे गाने को ट्यून कर लेते हैं, जो कि है ऑफ कोर्स आपका बेहद ही पसंदीदा सॉन्ग जानू मेरी जान। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए स्टूडियो।
1: इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 5।

0: सारे हिंदुस्तान को ऐलान करने के बाद आइए बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। एंड ऑफ कोर्स आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इंस्टाग्राम पेज पर धर्मेश जी। एंड ओके, तो नाजिया जी कह रही है जब से उन्होंने मैम के साथ मिले हैं तब से हम पागल हो चुके हैं, मुबारक हो, वी आर इन सेम कैटेगरी। एंड इसी के साथ आइए चलते हमारे अगले गाने को ट्यून करते हैं। किशोर दा की आवाज़ में आप इंजॉय करने जा रहे हैं दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है।
1: सॉन्ग नंबर 4।

और हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद जी फ्रॉम मनकापुर, आपका स्वागत करते हैं। किशोरदा की आवाज में आपने एंजॉय किया दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जी हाँ आइए सुनते हैं चलते चलते फिल्म से। क्या इस गाने को एंजॉय करते करते गुनगुना भी लिया जाए, क्या ख्याल है आपका?

एंड हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से शमा, आपका स्वागत करते हैं। शमा कितना प्यारा नाम है फिलहाल। एंड धर्मेश जी लिख रहे हैं आपका गाना भी, मैम क्या गाना है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता मेरा गाना क्या गाना?

0: गाना है। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, यानी कि अगले सॉन्ग की तरफ। सॉन्ग नंबर टू एंड सॉन्ग नंबर पेश करते हैं आपके लिए। सॉन्ग नंबर टू वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, और इसे आप किसी को डेडिकेट कर सकते हैं। डेडिकेट करने के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ बस इतनी सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि वो इंसान आपके दिल के बेहद करीब होना चाहिए और कुछ नहीं। आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, कोई भी हो सकता है। क्योंकि गाने का नाम है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। और इसी के साथ सॉन्ग नंबर वन आपके लिए पेश करते हैं, बहुत ही अंडररेटेड गाना, आके तेरी बाहों में सुरमई लगे हर शाम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और इसी के साथ अब चाहूंगी आपसे इजाजत, बस कुछ ही लम्हों में जुड़ते हैं वापस से आपके साथ क्लिनिक ज्ञान असली में। तब तक के लिए बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो ज्ञान असली 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 2।

और भाई जाने से पहले आज के प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, फीडबैक में जरूर से बताइएगा आपके अपने वाले चैट बॉक्स में।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9816 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा, और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
6: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
5: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
6: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
5: जी,
6: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है, और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
6: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
5: जी,
6: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
5: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
6: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
5: जी,
6: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ, और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ, और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
5: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
6: जी आज दीदी
5: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
6: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
5: जी।
6: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
5: जी,
6: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
5: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
6: जी दीदी
5: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
6: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
5: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: और जब मैं इस तरह के गाने सुनती हूँ ना, तो मुझे अब रोमांटिक चीज़ें कम और ये ज़्यादा नज़र आता है कि मच्छर ज़रूर कहते होंगे कि इतना प्यार मुझे किसी पे पहली बार आया है।
1: जी, और कई सारे लोगों पर तो वो अपना प्यार दिखा भी देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन पर वो अपना प्यार दिखा चुके हैं और वो उसके चपेट में आने के बाद हमारे पास आए हैं।
0: बिल्कुल। और पता है मेरे साथ पहले क्या होता था, जब भी मैं रोमांटिक गाने सुनती थी मुझे लगता था कितने हसीन लम्हे हैं, कितना प्यारा लिखा गया है। और जब मैं गाने सुनती हूँ मैं सोचती हूँ इसको विटामिन डी की कमी हो चुकी है, इसके अंदर अनीमिया हो गया है, इसको बुखार आ रहा है, इसलिए इसके बदन में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, कहीं ना कहीं थका है, आयरन की कमी है। और मेरी मम्मी कहती है तुम गाने सुन रही हो या दवाइयां खोज रही हो बैठ के।
1: जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है।
0: क्लिनिक ज्ञान असली में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आशुनति, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट और आपके हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी। और सेहत सही लाभ कई बैंक के तले लेकर आते हैं हम बहुत ही खूबसूरत सी श्रृंखला जो कि स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की एक बेहद ही प्यारी पहल है। बात करते हैं हम क्लिनिक ज्ञान असली में आपकी अपने सेहत की, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम पेश हैं वापस से आपके लिए लेकर के कुछ हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी बातें। तो लगातार आपके कॉल्स और आपके चैट के लिए आपका चैट बॉक्स खुला हुआ है। कॉलिंग नंबर है 6393316429 और चैट बॉक्स आपको आपको मिलता है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आपको मिलेगा प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM के नाम से। आप अपने मैसेजेस अपने सवाल और अपनी क्यूरियोसिटी भेज सकते हैं चैट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो सर कैसे हैं आप?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर आ चुके हैं अपने इस स्वास्थ्य वाले शो में और किसी न किसी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पर चर्चा लेकर के आए हैं। तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है जिसको आप पूछना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें या चैट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं।
0: फिलहाल के लिए प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं, और आजकल जिस तरह से मौसम में बदलाव है, लोगों की हालत ख़राब है, किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, और वहीं पर एक और चीज़ है जो नज़र आ रही है।
1: जी क्या ऐसी चीज़ है जो नज़र आ रही है?
0: दिमागी बुखार
1: नज़र आ रही है बिल्कुल। और कहीं ना कहीं दिमागी बुखार उन्नति मैम को नज़र भी आने लग गया। और
0: देखिए इसी तो कहते हैं दिमाग में बुखार चढ़ गया है।
1: जी और आप सभी लोगों को बचाने के लिए दिमागी बुखार से आज का ये टॉपिक भी लेकर के आई हैं दिमागी बुखार। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या जानना चाहती हैं और लिसनर्स को क्या बताना चाहती हैं।
0: तो फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दिमागी बुखार जो होता है, जो दिमाग पे बुखार चढ़ जाता है, ये चढ़ता कैसे? मतलब सीढ़ी से चढ़ता है, एमी चढ़ जाता है?
1: हाँ, ये एक बड़ा ही रोमांचक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में मुझे लगता है ऐसा प्रश्न होगा। और मुझे ये भी लगता है कि इसका सवाल वो ढूंढते होंगे पर उन्हें मिलता नहीं होगा।
0: सवाल नहीं, जवाब ढूंढते हैं।
1: हाँ, जवाब ढूंढते होंगे और
0: सवाल तो अपने आप ही आ जाता है।
1: अपने आप आ जाते हैं जैसे कि, और यहाँ उन्नति मैम लेकर के आ जाती हैं ढेर सारे सवाल। देखिए बुखार नॉर्मल जब भी होता है तो वो ऐसा ही होता है जैसा कि हर बुखार होता है। बुखार सारे शरीर में होता है ये भी क्लियर होता है, बट दिमागी बुखार जिसको बेसिकली लोग किस रूप में जानते हैं, क्योंकि उसके लक्षण से ही पता होता है बॉडी के अंदर क्या चीज़ें घट रही हैं, वो उनको मालूम नहीं है। देखिए जो लक्षण आते हैं कि जैसे बुखार के साथ झटके आना, सीजर्स आना, जिसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में और मेडिकल लैंग्वेज में सीजर बोलते हैं, तो वो झटके आना कि बुखार, तेज़ बुखार आने के साथ साथ हाथों पैरों में अकड़न हो जाए या झटके आने लग जाएं, तो ये दिमागी बुखार कहलाता है। ये बेसिकली आपको लक्षण देखने को मिलता है, या कई बार बेहोश हो जाता है पेशेंट, बेहोशी की स्थिति में हो जाता है तो डॉक्टर जांच करवाता है और जांच में फिर ये पता चलता है कि दिमागी बुखार है। अब ये होता आम बुखारों की तरह ही है, लक्षण भी इसमें आम बुखार के ही तरह आते हैं, बट चूंकि इसमें एक और समस्या होती है, और इसमें समस्या ये होती है कि आपको बुखार जिस भी बैक्टीरिया वायरस या जिसके वजह से आपको फीवर आ रहा है, वो वायरस या बैक्टीरिया आपके ब्रेन टिश्यू को, यानी कि जो आपका ब्रेन टिश्यू है, दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, जैसे हर शरीर के हर हिस्से की कोशिकाएं हैं, हाथ की कोशिकाएं, पैर की कोशिकाएं, पेट की कोशिकाएं, लीवर किडनी की कोशिकाएं, उसी प्रकार जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं उनको वो जाकर के संक्रमित कर देते हैं। मतलब साधारण भाषा में समझा जाए तो वो जो इन्फेक्शन होता है वो आपके ब्रेन की कोशिका में, ब्रेन के टिश्यूज़ में वो संक्रमित कर देते हैं। इसके वजह से आपको झटके और सीजर्स ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। और इसमें थोड़ा सा भाई दिमागी बुखार लोग ज़्यादा ख़तरनाक मानते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर चीज़ है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हाँ बिल्कुल ख़तरनाक है, क्योंकि वो आपके ब्रेन की कोशिकाएं हैं और उनमें थोड़ा मोटा भी संक्रमण, एक बहुत ही हल्का से हल्का और साधारण से साधारण संक्रमण आपको बहुत गंभीर इम्पैक्ट डाल सकता है या फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है उसकी वजह से। तो बिल्कुल ये ख़तरनाक होता है। अच्छा, अब ये बाकी बुखारों से और इन बुखारों से अलग क्यों है, मैं एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूँगा। हमारे ब्रेन में एक बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर इसको कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये क्या करता है कि कोई भी जो साधारण दवा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो दवाइयाँ खाते हैं, मान लीजिए आपके हाथ में इन्फेक्शन है या पैर में इन्फेक्शन है, तो वो दवा आपके पेट में जाती है, पेट से ब्लड में जाती है और ब्लड में जा कर के हर जगह पहुँच जाती है। बट कोई भी साधारण दवा आपके ब्रेन के अंदर, ब्रेन के सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें एक बैरियर, एक अवरोध होता है जिसका नाम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो अब इससे एक चीज़ और क्लियर होती है, जितनी दिमाग की दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ जो आपके दिमाग पे जाकर के काम करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, वो इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं, इस हिसाब से बनाई गई होती हैं जो उस बैरियर को क्रॉस कर सकें, मतलब उस बैरियर को पार कर सकें, तब वो जाकर के आपके दिमाग पे काम करती हैं।
0: ऑल राइट, तो भाई इस तरह से काम करता है। कभी कभार मुझे जब बुखार आता है और मैं बुखार में कुछ ज़्यादा बोल जाती हूँ, मेरी अम्मी कहती हैं दिमाग पे बुखार चढ़ गया।
1: हाँ, अब दिमागी बुखार में एक ये भी लक्षण ऐड होता है कि मतलब उस समय में जो आपका सेंसेस हैं वो खो जाते हैं, मतलब आपसे पूछा कुछ भी जा रहा है, आप बोल कुछ भी रहे हो, आप ऐसे कुछ भी बोल रहे हो, जैसे कि ये कुछ चीज़ों में होता है, एनेस्थीसिया में होता है, पोस्ट एनेस्थीसिया भी ये चीज़ें होती हैं। तो अगर बहुत हाई ग्रेड का फीवर है, जिसको हम हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, तो हाइपर पायरेक्सिया में एक लक्षण ये भी आता, झटके आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, और आप मतलब आपसे कुछ पूछा जाएगा, आप कुछ बता रहे हैं, आपको मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसे एमवी बोलते हैं, ये लक्षण भी आते हैं।
0: अच्छा सर, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है बहुत हाई फीवर का, और मुझे याद है कि उस वक्त मुझे मेरी बॉडी लग रही थी पूरी जल रही है, आंखों से लगातार पानी आ रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था उस टाइम, तो मुझे इतना तेज़ फीवर था। और जब दवा की बात आई तो डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि आपको या तो नहाना पड़ेगा या तो पूरी बॉडी को एक ठंडे पानी से पोंछना पड़ेगा, अगर इसके बिना आपने दवा खा ली तो आपकी जो दवा है ये आपको उल्टा असर करेगी और हो सकता है ये दिमाग का, मतलब ये जो बुखार है वो आपके दिमाग तक चला जाए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है।
1: जी,
0: क्या ऐसा भी होता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और आपने तुरंत ही कोई दवा खा ली है बिना उसके टेम्परेचर को कम किए हुए, तो ये आपके दिमाग पे असर कर सकता है?
1: देखिए, अगर मान लीजिए आपको बहुत ही तेज़ बुखार है, मान लीजिए बहुत ही हाई ग्रेड का फीवर है, और ऐसे कंडीशन में अगर टेम्परेचर को कम नहीं किया गया, तो टेम्परेचर का हाई होना और एक सीमित मात्रा के, मतलब अगर आपका टेम्परेचर 105-6 डिग्री से ऊपर चला जाता है बॉडी का, तो फिर आपकी बॉडी में तमाम ऑर्गन फेल हो सकते हैं, आपकी बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल हो सकता है, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जिसको बेसिकली बोलते हैं, आपका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम फेल हो सकता है, और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, ऐसे कंडीशन में कुछ दवाइयाँ क्या होती हैं, जब हमारे बॉडी में जाती हैं, जब वो मेटाबोलाइज होती हैं, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचती हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ सडन डिफरेंसेस आते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में टेम्परेचर कम नहीं हुआ, हमारे बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो उस कंडीशन में अगर हम दवा खा लें तो बिल्कुल कुछ ना कुछ रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है।
0: ऑल राइट, यानी कि आपको टेम्परेचर डाउन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप दवा खाएं। अगर आप ऐसे ही दवा खा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना कुछ समझे,
1: जी,
0: तो ये रिएक्ट भी कर सकता है। अच्छा, आप एक मुझे बात बताइए, बचपन से मैं देख रही हूँ, टीवी में भी देखा है, सीरियल्स में देखा है, मम्मियों को देखा है, यहाँ तक कि खुद भी अब एक प्रैक्टिस हो गई है, बुखार आते ही सीधे पानी में भिगोकर पट्टी सर पे रखने से।
1: जी,
0: इससे होता क्या है एक्चुअल में?
1: देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जैसे जो हमारा ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, जो ह्यूमन टेस्टिकल्स होते हैं, पुरुष के अंडकोश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो अगर फीवर के वजह से, हाई फीवर के वजह से हमारे ब्रेन का इंटरनल टेम्परेचर, जैसे एक होता है आउटर टेम्परेचर जो बाहर से आप ऐसे हाथ रख करके चेक करते हैं, वो इंटरनल टेम्परेचर नहीं है। अगर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, ब्रेन का इंटरनल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में झटके आने की और मतलब ये जो स्थिति होती है कि इंसान कुछ भी बकने लग जाता है, वो समझ नहीं पाता कि हम क्या बोल रहे हैं, ये बिहेवियरल चेंजेस जो आते हैं, ये संभावनाएँ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं हाई ग्रेड फीवर होने पे। तो जब हम पट्टियाँ रखते हैं, ठंडी पट्टियाँ रखते हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर एक्सचेंज हो पाता है, गर्म टेम्परेचर ठंडा हो पाता है, उसकी गर्मी पट्टी में एब्जॉर्ब होकर वापस पानी में भिगो के ठंडा करते हैं, तो इससे वो जो बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता है, वो हम मैनुअली उसको कराने का प्रयास करते हैं, मतलब उसको खुद से ठंडा करने का प्रयास करते हैं, और इससे झटके आने की संभावना और ऐसे डिसओरिएंटेशन की संभावना कि इंसान क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, इसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं।
0: अच्छा, हमने देखा है जब भी कोई बुखार हमें चढ़ता है, स्पेशली इस मौसम में
1: जी,
0: तो वो कहीं ना कहीं मच्छरों से ही आते हैं
1: जी।
0: तो क्या ये जो दिमागी बुखार है, ये भी एक मच्छर का दिया हुआ तोहफा है या किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है?
1: देखिए, दिमागी बुखार जो है, इसमें मैं एक और यहाँ पर टर्म जोड़ूंगा कि दिमागी बुखार अगर किसी को है तो उसको एक दो नाम होते हैं, जैसे कि मेनिनजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, इनमें से कोई ना कोई एक समस्या होगी। ठीक है, मैंने बताया जैसे कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं, ब्रेन टिश्यूज होते हैं, उनको संक्रमित कर देते हैं, तो उनमें सूजन भी आने लगती है
0: जी।
1: अब जो ये एनसेफेलाइटिस या मेनिनजाइटिस है, यानी कि जो दिमागी बुखार है जिसको साधारण भाषा में, ये कई स्थितियों में हो सकता है। ये मच्छरों के काटने के भी वजह से हो सकता है, ये किसी दूसरे बैक्टीरिया के वजह से भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में मच्छर ही कारण देखने को मिलते हैं, पर दूसरे भी कारण हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो आपको किसी खाने पानी के माध्यम से गया है। कई बार कुछ जानवर के लार भी ऐसे होते हैं जिनके लारों में कुछ विशेष बैक्टीरिया होते हैं, अगर उन्होंने आपको चाट लिया और वहाँ पर कोई कट वगैरह था, तो उसके वजह से बैक्टीरिया अंदर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और वो जाके दिमाग को संक्रमित कर देता है, उसके वजह से भी दिमागी बुखार आता है। तो सिर्फ मच्छर कारण नहीं है, बट मच्छर सबसे ज्यादा बड़े कारणों में से एक है।
0: ऑल राइट, और आपने बात की इंसेफ्लाइटिस की, मैंने देखा है ये चीज पूर्वांचल में, यानी कि हमारे इधर के एरिया में ज्यादातर होता है
1: जी।
0: इसके पीछे का आप कोई रीजन बता सकते हैं कि इतना वेस्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को लेकर अवेयरनेस हम लोगों को काफी फैलानी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, इवन बच्चों का टीकाकरण भी यहाँ पर करवाया जाता है इस बीमारी को लेकर के स्पेसिफिक
1: जी।
0: तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्या मौसम की वजह से है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, या कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है, ये इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, और अगर जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों का टीकाकरण इसके लिए नहीं करवाया है, क्या वो अभी भी करवा सकते हैं, एक एज ग्रुप क्या हो सकती है इसके टीकाकरण के लिए?
1: जी देखिए, जो वायरल एन्सेफेलाइटिस होता है वो तो बचपन के ही ग्रुप में लगता है, हमें लगता है कि लगभग 5 वर्ष के नीचे की आयु तक लगना चाहिए, लेकिन इसकी प्रॉपर एक गाइडलाइन देखने की आवश्यकता है जो सरकारी गाइडलाइंस होती हैं। दूसरा, यदि इसके कारण की बात की जाए कि क्या कारण है जो इस क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, देखिए इसके कुछ मिले जुले कारण हैं। जैसे पहला कारण तो होता है कि वो एटमॉस्फेरिक अवेलेबिलिटी, जहाँ पर ऐसे मच्छर पनपते हों, तो जो ट्रॉपिकल जंगल होते हैं या फिर ऐसे जगह जहाँ पर मच्छर पनपते हैं। अब जैसे जो मानसून के समय में, जो सीजन में अपने यहाँ का वातावरण होता है, वो मच्छरों के पनपने के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण होता है।
0: पानी भरा हुआ है, ह्यूमिडिटी
1: है बहुत ज्यादा जी, उमस भी है, और बहुत एक्सट्रीम हीट भी नहीं है और बहुत एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं है, तो मतलब ये कारण हो जाते हैं कि इनके पनपने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक वातावरण तैयार होता है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण, कहीं ना कहीं आप अवेयरनेस को भी रख सकते हैं, क्योंकि आज भी देखिए मॉस्कीटो बॉर्न डिसीजेज हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और उनके लिए लगातार कैंपेन चल रहे हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, या ऐसा एन्सेफेलाइटिस हो गया, ऐसी तमाम सी बीमारियाँ आज भी बहुत भारी मात्रा में देश में हो रही हैं, और उसके बारे में सरकार को इतने सारे प्रयास भी करने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है, लोग जो मॉस्कीटोज़ के अगेंस्ट जो प्रॉपर प्रिवेंशन है वो नहीं ले पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग विशेष करके नहीं ले पाते हैं, और तो उन्हें ऐसे क्षेत्रों में काम भी करना पड़ता है। जैसे शहरों में रहने वाला इंसान अभी खेतों में, उधर झंखाड़ियों में, जंगलों में, ऐसे जगहों पे तो काम करने ज़्यादा जाता नहीं है, वो शहरों में रहता है, इमारतों में रहता है, तो वहाँ पे इसकी संभावनाएं थोड़ी कम होती है।
0: लेकिन उसमें भी नेट का यूज़ हो रहा है,
1: ओडोमॉस लगाया जा रहा है घर में, वो मॉस्की मतलब मॉर्टिन और ऐसी चीज़ों का भी यूज़ करते हैं लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी चीज़ें थोड़ा कम अवेलेबिलिटीज होती हैं और वहाँ पे इसलिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये मिले जुले कारण हैं जिसके वजह से आपको अपने इस क्षेत्र में, अच्छा दूसरी बात, अपने जो ये क्षेत्र हैं ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हैं, तो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उनमें और भी ज़्यादा ऐसी बीमारियां पनपने का खतरा रहता है, जो टाइफाइड है, वाटर बॉर्न डिसीजेज, मॉस्कीटो बॉर्न डिसीजेज, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ज़्यादा इनके चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: ऑलराइट, और बाढ़ की बात कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा हमारे पड़ोस में ही बाढ़ आई हुई है फिलहाल के लिए।
1: जी बहुत ही,
0: और काफ़ी दुखद घटना है वो। इसी के साथ, क्योंकि भले ही बाढ़ किसी दूसरे देश में भी आए और हम उसके पड़ोसी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है।
1: जी बिल्कुल, हमें सामना करना भी पड़ रहा है, और नेपाल से कनेक्टिविटी रखने वाली जितनी भी नदियां हैं उनका वाटर लेवल राइज हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक अलर्ट जोन में है जो हमारा क्षेत्र है, वो भी एक सरकारी गाइडलाइन शायद मैंने पढ़ी थी, वो येलो या रेड अलर्ट जोन में डाला भी है गवर्नमेंट ने।
0: अच्छा, हम बात करते हैं जब इन सारी चीज़ों की, बाढ़ की, कोई आपदा की, तो कुछ चीज़ें जो हम हमेशा ध्यान में रखते हैं वो ये है कि हमें अपने खाने पीने के सामान को संभाल के रखना है, उसे सजो कर रखना है, कहीं ना कहीं इमरजेंसी में बचा कर रखना है। बट आप मुझे बता सकते हैं कि इस दौरान कौन कौन सी दवाइयाँ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं?
1: हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि इसका बहुत ही सटीक जवाब एक बार में दे पाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से इसको बताने का प्रयास
0: बिल्कुल
1: करता हूं।
0: और ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो हम पहुँचा सकते हैं लोगों की मदद के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो मेडिकल वैसे भी नहीं पहुँच सकता कि हम कैंसर के लिए दवाइयाँ पहुँचा दें, लेकिन कुछ बेहद कॉमन दवाइयाँ
1: आपदा के समय में जिन दवाइयों की आवश्यकता होती है,
0: लाइक पैरासीटामोल, लाइक हेडेक की दवाई एंड All that. तो आप मुझे बता सकते हैं उनमें से कौन कौन सी लिस्ट है जो एक इंसान को अपने घर में जरूर से रखना चाहिए और ऐसी आपदा में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए वैसे तो मैं कुछ कॉमन मेडिसिन जैसे बता रहा हूँ कि वो लोग यूजुअली रखते भी हैं, कुछ तरह के जैसे पैरासीटामोल हो गई, दर्द की दवा, बुखार की दवा, आइबुप्रोफेन हो गई, एसिक्लोफेनाक के साथ में पैरासीटामोल आती है, जीरोडॉल पी एस पी के नाम से, कॉम्बिफ्लैम के नाम से, ऐसी दवाइयाँ हो गई। इनके अलावा वॉमिटिंग की दवा, उल्टी की दवा, उल्टी की दवा मतलब जब कभी ऐसी कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, तो हम उन दवाइयों से पेशेंट को एट दैट टाइम थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं।
0: जी,
1: इसके अलावा जो पेट दर्द की दवाइयाँ कुछ कॉमन होती हैं, जैसे मेफ्टाल स्पास हो गया, जीरोडॉल स्पास हो गया, ये कॉमन दवाइयाँ घरों में होनी चाहिए। गैस वगैरह की दवाइयाँ जिनको हम बेसिकली पेंटॉप डी एस आर, साइरा डी और ऐसे नामों से जानते हैं,
0: डायरिया की दवा,
1: डायरिया के कुछ एंटीबायोटिक्स। और डायरिया के केसेस में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपके घर में कुछ भी हो ना हो, आपके घर में इलेक्ट्रोल जरूर होना चाहिए,
0: ओआरएस
1: जरूर होना चाहिए, क्योंकि डायरिया में जो इंसान की मौत होती है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है।
0: अक्सर इस बात को हमने डिस्कस भी किया है, यहाँ बैठ के
1: डिस्कस भी किया है। तो मान लीजिए अगर वॉमिटिंग भी हो रही है तो आप उसको वॉमिटिंग की दवा जिसको ऑनडेम के नाम से जानते हैं या डोमस्टाल के नाम से जानते हैं, कुछ लोग पेरिनॉर्म भी यूज़ करते हैं, लेकिन पेरिनॉर्म कुछ लोगों में थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो ऑनडेंसेट्रॉन जो है ये ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है
0: जी,
1: ऑनडेम के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसके अलावा कुछ जो कॉमन दवाएं हैं जिसको हम ओफ्लोमैक, ओजेड, नॉरफ्लॉक्स टीजेड और इन नामों से जानते हैं, इलेक्ट्रॉल होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये काम आता है, ब्लड प्रेशर लो होने में काम आता है, चक्कर वक्कर आने में काम आता है, डायरिया जैसे केसेस में काम आता है, वीकनेस में काम आता है, बहुत सारे में इलेक्ट्रॉल काम आता है। इसके अलावा अगर जैसे हम बात करें कि आपदा की स्थिति में ऐसी जगहों पे, तो देखिए इसमें उल्टी की, दस्त की, बुखार की, क्योंकि वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलती हैं, खैर जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो जाते हैं और जो सपोर्ट जाता है, मेडिकल टीमें जाती हैं, उन टीमों में बेसिकली आप देखेंगे कि डॉक्टर्स और वो ज़रूरी मेडिसिन भी होती हैं, बट फिर भी अगर हम जानकारी के लिए इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो ऐसे समय पर लोगों को दर्द, बुखार, घबराहट होना, पेट में दर्द होना, चोट लगना, तो उसके लिए जो एंटीसेप्टिक वगैरह ट्रीटमेंट होगा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उल्टी वगैरह की समस्या आती है बाढ़ वगैरह में, और पेट दर्द, लूज मोशन, डायरिया, फीवर, ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी देखिए आपको कुछ ऐसे, अच्छा कई बार ऐसे कंडीशन में जब सुदूर इलाकों में कैंपिंग करके टेंट लगा के लोगों को रखा जाता है, फिर वो ऐसा तो है नहीं कि बस दो दिन उनको वहाँ ऐसे रहना है, फिर उनको वापस से हैबिटेट करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पे बसाया जाएगा, तो इसमें महीने दो महीने का समय लगता है। ऐसे कंडीशन में डेंगू, मलेरिया जैसे भी मच्छरों की वजह से बीमारियाँ पनपती हैं। तो ऐसे में डेंगू के लिए तो कोई एंटी डेंगू मेडिसिन आती नहीं है, वायरल बीमारी है, इम्यूनिटी सिस्टम उसको फाइट करता है। जो मलेरिया है उसके एंटी मलेरियल्स, क्योंकि वैसे भी ये गाइडलाइन होती है कि जो ऐसे ट्रॉपिकल जंगलों में और ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनको एंटी मलेरियल ड्रग्स ऐसे ही वो यूज़ करते रहना चाहिए, जिनमें क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ के नाम से आती है। तो ये मेडिसिंस, इसके अलावा उल्टी, दर्द, बुखार, ठीक है, दस्त वगैरह की, ये मेडिसिंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिनका मैंने अभी नाम बताया पीछे। और बाकी कुछ फर्स्ट एड की चीज़ें, एंटीसेप्टिक्स और ये सब कुछ, ऐसे इंजेक्टेबल्स भी होने चाहिए, ठीक है, अगर एक आध कोई एक्सपर्ट आदमी है तो, ताकि अगर किसी आपदा में ऐसे किसी व्यक्ति को समस्या हो तो उसको मेडिकल सपोर्ट दिया जा सके।
0: और इसी सबके बीच में मुझे एक और भी चीज़ याद आ रही है, बिकॉज मुझे याद है मेरी मम्मी को एक मिनी हार्ट अटैक आया था और इसकी वजह से मैं अपने घर पर हमेशा से डिस्प्रिन या फिर मैं इकोस्प्रिन ज़रूर रखती हूँ। और ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं ये सोच कर कि एक ही बार तो आया या बार बार थोड़ी ना आएगा, लेकिन एमरजेंसी के लिए वो एक दवा आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए ताकि 10 मिनट ही सही है, आपको वक्त मिल जाए हॉस्पिटल पहुँचने तक का।
1: बिल्कुल, और इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हार्ट के केसेस में, अब चूँकि स्पेसिफिकली हार्ट की बात याद आ गई, तो एक दवा होती है सॉर्बिट्रेट। मुझे लगता है कि अगर किसी के घर में भी हार्ट का कोई पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, बेसिकली लोग बीपी के पेशेंट को हार्ट का पेशेंट नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि बीपी इज़ डिफरेंट, हार्ट इज़ डिफरेंट। तो जो भी बीपी का पेशेंट है उसके घर में सॉर्बिट्रेट नाम की दवा तो ज़रूर होनी चाहिए। ये एक 1.5-2 रुपए की गोली आती है, हार्ट के शेप की गोली होती है, 5, 10 और 20 mg में अवेलेबल है। ये जब कभी भी हार्ट अटैक और क्रॉनिक चेस्ट पेन उठता है तो ये दवाइयाँ जबान के नीचे रखने के लिए दी जाती है, और ये वैसो डायलेटर होती है, मतलब वेसल्स को डायलेट कर देती है। और अगर हार्ट अटैक जैसे कंडीशन में भी हम इसको ऐड करके देते हैं उन दवाइयों के साथ में, तो ये 10-20% चांसेस और बढ़ा देती हैं। कुछ और दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको हम लोडिंग डोज के नाम पर जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं, आज हम रिपीट भी कर दे रहे हैं, जिसमें एस्पिरिन आती है जिसको हम डिस्प्रिन के नाम से जानते हैं, 300 mg देना होता है, 300 mg। दूसरा क्लोपीडोग्रेल एक दवा होती है जो भी ब्लड थिनर है, इसको भी 75 mg देना होता है। एटोरवास्टेटिन 80 mg, ये की एंटी कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल की दवा होती है, हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं इसको। और अगर बीपी बढ़ी हुई है या लग रहा है, जो कि अक्सर बीपी बढ़ी ही होती है, तो हम उसके लिए एक जो एंटी हाइपरटेंसिव जैसे कि एमलोकाइन DT वगैरह, बट मेडिकल चॉइस में हम मेटोप्रोलॉल जिसको मेटोलार XR वगैरह के नाम से जानते हैं, ये फर्स्ट चॉइस होती है ड्रग की, जिसको हम लोडिंग डोज के तौर पे देते हैं। बट डिस्प्रिन को आप एज अ होम यूज़ कैरी कर सकते हैं, बाकी दवाइयों के लिए तो एक प्रॉपर जानकारी होने की ज़रूरत है, बट डिस्प्रिन को आप नॉर्मली ऐसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दवाई दे दी है तो हॉस्पिटल नहीं जाना है, ये आपको थोड़ा सा वक्त ज़रूर देता है कि आपके पास टाइम है, आपका पेशेंट ठीक रहेगा, वो हॉस्पिटल तक पहुँच जाएगा, लेकिन उसको अगली सुबह तक हॉस्पिटल लेकर ज़रूर से जाएँ, ये इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल, और मतलब वो आपको बस थोड़ा टाइम एक्सटेंड करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको कम करता है, आपको इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस तो चाहिए ही, दवा देने के बाद आप एट दैट टाइम ये ढूंढिए कि आप कैसे मेडिकल फैसिलिटी को अप्रोच कर सकते हैं। बाकी वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उससे ऐसा नहीं है कि पेशेंट की जान बचाने के लिए बस डिस्प्रिन इज इनफ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल, और बात करेंगे आपके दिल की सेहत की, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और बात करते हैं कि हमारा हार्ट और ट्रांसफैट में कितनी बड़ी दुश्मनी चल रही है, बताते हैं लेकिन उससे पहले स्टेट्यूंट।

0: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनेसले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
0: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे, कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
1: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
0: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
1: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
0: अच्छा।
1: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
0: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
1: बहुत सारी,
0: जैसे?
1: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
0: जी।
1: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
0: और बाकी?
1: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार, यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। और इसके अलावा भी कुछ है?
1: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन यानी संक्रमण से सुरक्षा NBSU में। साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
2: और इसी के साथ आपका वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली में। मैं हूं आपकी अपनी आर श्रीमती और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी।
3: जी, और आज हमने दिमागी बुखार यानी कि जिसको हम एनसेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं।
2: अब मैं आपसे इसके सिम्टम्स जानना चाहूँगी, बच्चों में कौन से सिम्टम्स होते हैं, बड़ों में कौन से सिम्टम्स होते हैं और किस

0: वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि दिमागी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें संक्रमण हो जाना, यदि ये हो गया है तो बुखार के साथ फिर आपको ऐसे कंडीशन में झटके आते हैं जो बच्चे होते हैं। अब झटके मतलब कैसे, पूरा शरीर एकदम अकड़ जाता है, पूरा हाथ और मुट्ठियां बंधी हुई एकदम दिखती हैं, जबड़ा भी एकदम पिसा हुआ दिखेगा आपको, एकदम लॉक दिखेगा। ऐसे छोटे छोटे सीजर्स आते हैं, झटके आना। इसके अलावा बेहोशी होना, बेहोशी होने पे भी ये गर्दन अकड़ जाना, इसमें रिजिडिटी रहना, और कुछ और भी बारीक चीज़ें होती हैं जिसको बेसिकली साधारण लोग पता नहीं समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। प्यूपिल्स जो होती हैं, आँखों की पुतलियाँ होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, मतलब काफ़ी फैली हुई दिखती हैं वो। तो ये कुछ बेसिक लक्षण होते हैं जिनसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये साधारण बुखार है या दिमागी बुखार है, जो लक्षण के माध्यम से पता चलते हैं, और बाकी चीज़ें तो जांच कराने पर पता चलती हैं। इसके अलावा यदि बड़ों में बात की जाए तो झटके बड़ों में भी आ सकते हैं, उनके हाथों पैरों में भी वो रिजिडिटी देखने को मिल सकती है, प्यूपिल्स डायलेट हो सकते हैं। और एक चीज़ बड़ों में थोड़ा सा और होता है जो कि होता छोटों में भी है, बट छोटे बच्चे बता नहीं पाते हैं उसको, बड़े कई बार ऐसा पूछने पर जवाब देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके आँखों का जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, और वो दो दो फोटो उनको बनने लगती है, मतलब किसी भी चीज़ की दो फोटोज़ दिखाई पड़ेंगी, एक इंसान होगा तो वो डबल डबल दिखाई पड़ेगा।
1: मतलब जैसे बॉलीवुड दिखाते हैं और हमारे कुछ इंस्टाग्राम के फिल्टर्स भी होते हैं जो शो करते हैं।
0: जी जी, तो ऐसे कुछ लक्षण आते हैं।
1: माफी चाहेंगे, हमारे पास एक कॉल है।
2: हेलो
1: हेलो,
2: राम राम।
1: राम राम, कैसे हैं आप?
2: हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ, आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञान
2: सर जी। कैसे हैं?
0: जी सर जी भी ठीक हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत।
2: राम राम सर
0: जी। जी राम राम, कैसे हैं? और आपका शुभ नाम बताइए प्लीज।
2: श्री देवी प्रसाद।
0: देवी प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके पसंदीदा वाले शो में। बताइए आप क्या जानना चाहते हैं?
2: जैसे 10-20 मिनट एक जगह बैठे रहो तो कंपन हो जाता है शरीर में।
0: जी
2: जी सर।
0: अच्छा, कंपन मतलब हाथों पैरों में होता है या पूरे शरीर में कंपन होता है?
2: हाथों पैरों में हो जाता है कभी कभी।
0: जी देखिए, वैसे तो ये जो लक्षण आप बता रहे हैं ये कुछ विशेष प्रकार की विटामिन्स के कमी की वजह से होता है, विटामिन B12 की वजह से, B12 जिसे बोलते हैं, और भी बी के दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, कई बार आयरन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरफ और आयरन की तरफ ध्यान देना चाहिए।
2: इसमें क्या क्या आवश्यकता पूर्ति करना पड़ेगा?
0: जी, खाने पीने की चीज़ों में अगर बात की जाए तो सूखे फल हो गए और दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गई, इन चीज़ों को सेवन करके और फलों का सेवन करके आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं मार्केट में, अगर चाहें तो आप वो गोलियां भी ले सकते हैं। न्यूरोबियन फोर्ट नाम की एक दवा आती है, बीकोसूल्स नाम की एक कैप्सूल आती है, या न्यूरोकाइंड गोल्ड वगैरह के नाम से जो दवाइयाँ आती हैं, इनको लेकर के आप अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं।
2: जी।
0: इसके अलावा और कोई प्रश्न?
2: और कोई जानकारी नहीं सर।
0: जी,
2: बस यही जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, और एक हमारे प्यारे से लिसनर देवी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इनका प्रश्न ये था कि किसी जगह पे बहुत देर बैठे रहते हैं तो हाथ पैर में कंपन और झनझनाहट जैसी समस्या थी। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया जवाब इनको कुछ सहायता करेगा।
1: एंड चैट बॉक्स में भी आपके लिए कुछ सवाल हैं। इम्तियाज अहमद जी पूछ रहे हैं, चर्म रोग किस वजह से फैलता है?
0: जी, इनका भी प्रश्न अच्छा है। इम्तियाज जी को बताएंगे कि चर्म रोग कई तरह का होता है, जिसमें फंगस इन्फेक्शन भी होता है, मतलब जिसको दाद वगैरह बोलते हैं ये भी चर्म रोग होता है। एक कुष्ठ रोग होता है जो लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का चर्म रोग है। तो चर्म रोग कई तरह के बीमारियों की वजह से होता है, बट बेसिकली कुछ गंभीर बीमारियाँ जैसे कि लेप्रोसी यानी कि जो कुष्ठ रोग होता है, और सोराइसिस एक समस्या होती है स्किन की, कई बार फंगल इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे मिले जुले समस्याएं होती हैं जिनके वजह से चर्म रोग होता है।
1: अब बात करते हैं हमारे साथ जुड़े अविनाश शुक्ला जी की, जो लिख रहे हैं, जय हिंद सर एंड मैम। जय हिंद आपको भी।
0: जय हिंद सर।
1: एंड उन्होंने एक सवाल किया है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बच्चों में क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके अलावा है कि सर पेट में सडनली गैस बन जाए तो कैसे रिलीफ मिले?
0: देखिए, दूसरे सवाल का जवाब पहले इनको देते हैं कि यदि पेट में

0: गैस बन जाती है। और यदि आप श्योर हैं कि आपको गैस की ही प्रॉब्लम है, अच्छा गैस बनने की जो समस्या होती है उसमें आपको डकारे आना, पेट फुला फुला लगना, ब्लोटिंग होना, ये समस्याएं देखने को मिलती हैं बेसिकली। तो ऐसे कंडीशन में आप कुछ जो घरेलू नुस्खे होते हैं ये लगभग सभी लोग जानते हैं, बट मैं मेडिकली एसोसिएटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले तो एक कोई भी PPI खानी होती है, जिसको आप पेंटोप DSR और सायरा-D ऐसे नामों से जानते हैं बेसिकली, एक ये खानी होती है। इसके अलावा आपको डाइजीन की टैबलेट या सिरप लेनी होती है, क्योंकि जो DSR वाली गोलियां होती हैं ये बेसिकली एसिडिटी को रोकती हैं, एसिड रिलीज होने को रोकती हैं, तो बनी हुई गैस को वो ख़त्म नहीं कर सकती हैं। और इसके बाद कुछ अगर आप पे इनो वगैरह पीते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। वो गैस जो अभी आपके स्टमक में ही है, अभी आपके इंटेस्टाइंस में नहीं एंटर की है, वो आपकी वहीं से रिलीफ हो जाएगी, बट जो आपके इंटेस्टाइन में जा चुकी है उसको तो फिर जब वो रिलीज़ होगी तभी आपको थोड़ा आराम मिलेगा। और अगर ऐसे कंडीशन में पेशेंट की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो उसको हम लोग फिर एक एंटी स्पैस्मोडिक, जिसको मेफ्टाल स्पास, सुपर स्पास या ऐसे तमाम नामों से आप जानते हैं, वो दवाइयाँ भी हम उसमें ऐड करते हैं।
1: तो भाई ये बातें थी जो आपको बता दी गई हैं कि अगर पेट में गैस बनती है तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं।
0: जी
1: अब मैं आपसे बात करूंगी, सिर्फ एक आखिरी सवाल है कि जाने से पहले आप हमारे लिसनर्स को बता दें कि इन बुखारों से, तमाम बुखार जो मच्छर की वजह से होते हैं या फिर कहें तो मच्छर से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है।
0: देखिए, ऐसे बुखारों से बचने के लिए जो बेसिकली ऐसे सीज़न में आते हैं या जो एक महामारी की तरह फैलते हैं, देखिए इनसे बचने के लिए आपको थोड़ा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, पानी जो आप पीते हैं उसका विशेष ध्यान रखना है, खाने पीने की चीज़ों में देखना है कि वो वेल सैनिटाइज्ड हैं या नहीं, जो खाना आप खा रहे हैं वो अच्छे से पका है या नहीं, जो कच्ची चीज़ें खा रहे हैं वो ठीक से धुला है कि नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी जगह पर आप यात्रा करते हैं तो उससे बचना है, आसपास जो मॉस्किटो कंट्रोल की जो गाइडलाइंस होती है, आसपास की जगहों में पानी ना भरा रहने दें, मच्छर जो मॉस्किटो रिपेलेंट की दवाइयाँ होती हैं उनका छिड़काव करें, मच्छरों से बचें, और इन सभी हैबिट्स को फॉलो करके मुझे लगता है कि इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है, इनसे बचाव किया जा सकता है।
1: एंड इसी के साथ अब घड़ी ने भी कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो आपसे चाहेंगे इजाजत, फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका गोंडावाला FM रेडियो कैनल असली 89.6 FM। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। ले जाना चाहिए।
2: देखिए आकांक्षा जी,
1: जी
2: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
1: जी
2: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो RJ दीदी
1: जी।
2: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
1: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
2: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदमली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदमली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: ओ चाची, ओ चटपटी चाची, बैठी मोबाइलिया चलावत हुए घर ही में है। यह काम है या तो सुत जई है और कि तो मोबाइलिया ले लिया, गाना सुनत हुई है। अब देख लो भड़बड़ाई, ए रीतो आवत ही दिखाई पड़त थी। वाह रीता, ये रीता।
2: हाँ चाची,
1: आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ।
2: आई तो चाची, का करी आई तो रहे, बड़ा जाम
1: तो से घरिया की आवत है।
2: अरे हमारी बहनिया हो छोटी,
1: कहो ना हो इनके।
2: एक नाम रोली, हमारा नाम रीता, बर राय राय तुला राशि वाले हैं दोनों बहनी।
1: एक का नाम है गोली,
2: लोली, रोली,
1: लोली,
2: रोली ना, रोली रोली।
1: अच्छा रा है रोली।
2: हाँ रोली,
1: तू चटपटी चाची की। हाँ,
2: हाँ, तो हम तो
1: देखो, हम देखो बहनी, तू लोग आ गए ना।
2: हाँ,
1: तीन दाई इनके पल्ला खटखटाए ने।
2: हाँ,
1: और हम जानी थे ठंडवा चलाए वल्ली हुई है तो। हाँ, मोबाइलिया देखत हुई है,
2: बस सही।
1: और ये तो वल्ली सोत हुई है,
2: ये तो बहुत नीक है,
1: बाहर
2: गर्मी है ना,
1: कथा ना घर में ठंडवा चलाए सोत हुई आराम से। ओ चाची,
2: ओ चाची,
1: हमारा पल्लवा टूट जाए, हम तो बहुत परेशान है। ये दुलारी देखो हाथे वो तोड़े दे रही दरवाजा हमारा।
2: अरे,
1: अरे तो... आई थे भाई, रुकी रहो, खोलो का दुलारी।
2: चाची राम राम राम राम
1: राम राम
2: राम राम राम
1: राम राम राम राम राम तोड़ो तुम्हारे लोटन चाचा, मार जान ले ले दरवाजा टूट। तो हम तुम्हारे पल्लवा तूर के दम ले, अब तो उधियाई गई हो। उधियाई गई कैसे, या ये दिनी गवाही है, एक दिन गोली आई ही, अब एक दिन ये।
2: अरे चाची हो इतना नाराज,
1: रीता
2: हो चाची,
1: इनका नाम रोली हो, इनके रोली हम ना बुराई से बार बार गोली आ जाए।
3: गोली ना ही हो, रोली हो ना बहनी।
2: हाँ, हाँ,
1: हाँ। तो बहन ये बताओ बहनी, गोली की काव काव
2: काव चाची, हमारी बहनी एक नाम बिगाड़े हो, रोली नाम है रोली।
1: अच्छा बहनी, हमारे रोली याद आई तो रोली कहे बने, तो है गोली कहे बने।
2: हाँ, इस समय सावन है ना, नरसक गोली बहुत बिकात है, यही बारे मन में गोली बैठ गया है। खा ज्यादा हो इसे लागत है। अरे वही बहनी, गोली कहिए तो तू समझ जाओ,
1: है बतिया, है बतिया,
2: नरसक गोली खाए ज्यादा। हाँ,
1: तो देखो ये हमारे संगरिया वो चटपटी
3: का,
1: तो हमारे संगरिया क्या आवाज थोई, क्या हुए
3: ये याद नहीं पड़ रहा।
1: चीनो चीनो,
3: तू बताओ ना, हम तो
2: बच्चे हो, बदला बदला चेहरा लागत है।
3: चीनो चीनो, आई मुस्कान तो ना।
1: हाँ
2: राम राम मुस्कान, राम राम
3: चेत आएगा कि मुस्कान कितना।
1: हाँ, बिसर जाती हूँ, जानी थी बिसर जाती हूँ।
3: हाँ,
2: अरे मोबाइलिया में लगी रहा थी ना, तो दिमाग
3: मोटाई गई ना।
1: हाँ हाँ, तनी मोटाई,
3: पहले दूबर पातर रही,
1: पहले तो खाट पियत कम रही कि हम असना ही मोटाई जाए।
3: हाँ,
1: अब गरम रहती तो अच्छा पियत।
3: आजकल की जो बिटिनिया है बहुत ध्यान रखा थी अपने, कहा थी कि जीरो साइज, सुनियो कि नहीं सुनियो,
1: कौन चीज
3: कहती कि हम जीरो साइज रखा बाप।
1: तो ये जीरो का होता है,
3: जीरो, अरे जीरो नहीं जाना, तो गोल गोल जीरो बना होता है,
1: गोली
3: गोली तरह ऐसे गोल,
1: ये इनका तरह ही है, यही गोली बहनी ने
3: दिया ना, ये जीरो कहा जाता है, सुनो तो।
2: हाँ, शून्य शून्य,
3: जैसे एक एक लिखा रहा, दस लिखा रहे।
1: हाँ, हाँ,
3: और एक के पीछे जीरो रहा है।
1: अच्छा,
3: तो वह जीरो छोट एक होता है ना, नान गुनिक। तो ये लोग कहती कि हम चाची जीरो साइज, तो हम कहा जीरो साइज का होता है।
2: हाँ,
3: कहीं दूबर पातर रही मोटाए, हम लोगों का देखे कहा कहीं मोटापा है तो सबे कही ले भाई,
1: अब तू कही
3: ये मोटापा ना होए, सुन ले तू लोग सबे सुन ले।
2: हाँ, मोटा
3: मोट कहती हूँ।
2: हाँ,
3: देखो हम पढ़ा है ना, और हमारे भैया वो था अमेरिका से, कोई बतावत है के शरीर में जो है 70% पानी होता है।
2: हाँ,
3: सबे जाना तो की ना।
2: हाँ, जाने
1: तो चाची, 70 का होता है,
3: 7 और 0।
1: अच्छा अच्छा,
3: हाँ,
1: हाँ, हाँ।
3: तो 70% पानी होता है कहते हैं।
1: हाँ,
3: भैया। हाँ, हाँ। का अब हम समझ लो कि पानी है ही सब, ये बाढ़ आई गई है हम लोगन के शरीर में।
1: अच्छा,
3: तो बनिया ज्यादा हुई गई, बस बाढ़ है, अब बाढ़ उतर जाए दूबर पातर भी जाए, ये बाढ़ है तो होए।
1: तो ये हम लोग के दही में पानी कहाँ से आवा है? हम तो नाई गए ना तैरे वरे के ताले वाले में।
3: नाई होत है शरीर के अंदर होत है पानी।
1: तो जे ताले में तैले तो तेहे के होत है पानी?
3: नाही सबके होत है पानी।
2: कैसे हो जाते चाची शरीर में पानी कैसे?
1: तो रीता तो नाई रीता तो देखो जीरो ही एकदम
3: इनके बाल नाई इनके सूखा पड़ा है
2: मल्लो। अरे हमारे कहती तो नीको लागत हमका जीरो
3: रोलियों के
1: रोली तो बिल्कुल गोली हो गई
2: तो जरूर नहीं जान पड़ा था।
3: और ये के सूखा पड़ा है ना सूखा पड़ा है हमारे तोहरे तनी बाढ़ नहीं है बस ये जानो हमारे के शरीर में बाढ़ आई है।
2: सावन के बरसात आप लोग इनके अंदर घुस गए
1: यही हमारे बाढ़ आई है। बहरे नहीं खड़ी है इनकी पनिया में हम चला जाए
3: तो नहीं जमी हो यह सब हो।
1: अच्छा और ये जो इनका कहा तू रीता बहनी का ये तो वही बहुत स्मार्ट है ना।
3: हाँ तो यही तो बताई थे जीरो साइज का मतलब कि जो दूबर पातर है वो स्मार्ट
2: ना है। चाची कहाँ दूबर पातर है ना
1: ठीक हूँ बहनी तू न तू दूबर है पातर हूँ न तू बहुत मोटा।
2: चलो नीक बाबा बहुत बहुत
1: धन्यवाद। बताओ कि आज ही चश्मा वरना वा लगाए हुए का हो
3: आज हम लगाए देखे तो चश्मा के हमरे ठीक आवत है कि
2: नहीं चाची स्मार्ट लगा तो नहीं चाची
3: नवा चश्मा जो
2: यही के लिए अंदर बैठ के शीशम मुखड़े देखत रही चश्मा ऐसा लगा लिया देखत रही हुई है ना।
3: हमारे भैया आए हैं ना।
1: अच्छा
3: पिछली बार बतावा रहा है
1: हाँ
3: कि रखिया भैया आए वाले हैं
1: हाँ।
3: तो हमरे लिए चश्मा लाए
2: तो अमेरिका से लाए हुई है चाची हाँ, तो बड़ा महंगा है
3: अमेरिका का चश्मा हो
2: तो बहुत
1: अमेरिका का चश्मा हो तो मन शीशा नहीं लागे पन्नी लाग है।
3: नहीं अमेरिका में ऐसे पहना जाता है
1: पन्नी लगाए
3: पन्नी हाँ तो पन्नी हम नवा है ना यही से हम पन्नी चमकत
2: ज्यादा है चमकत ज्यादा है तो हमारे पन्नी ना उतारी
3: हाँ से अबे नवा लगी है तो पन्नी लगी लगे रहा
1: है नौकी धोतिया लिया ना तो के काम चपदा रहा हूँ
3: ले बिलुआ
1: हाँ ताकि जाना होगा नहीं नोचे
2: ताकि सब जाने के नवा नवा लाई हुआ
1: है ना
2: तो सब पूछे सोई चाची
1: हाँ तो सबे कहा कि हाँ सबे कहा कि सबे ये नवा नवा पहने हो हमके हाँ कहीं हाँ तब चपदवाली करवाई
2: तो चाची कितने दिन तक ऐसे पहने रहे ले बिलुआ
1: बनी जब धोतिया धोए तब जाए निकरा
2: तब निकाले हैं
1: निकरबे नहीं किए
3: तो हम अबे नहीं निकाल रहा है चश्मा पन्नी चढ़ा रहा है देव हमें दिखात है
2: दिखाते चाची साफ से पन्नी
3: ऐसे नहीं निकाल रहे की थोड़े दिन नवा रहा है
1: तो बड़ी नीक लागत थी आज
3: हाँ
2: चलो स्मार्ट
1: लागत थी ये बहनी मुस्कान तू अपन हलिया बताओ
3: ठीक है चाची अपन बताओ
1: तो आप ब्याह हुआ हुआ कौन था भा
3: चाची अभी का ब्याह हुआ करी
1: अब देखो तक बड़ी इनके ब्याह हो जाए चाहिए
2: अभी नहीं तो पढ़ा तो ये चाची पढ़ा लिखा तो ये
3: अब तोहरे जब इतनी बड़ी हम लोग रहा ना
1: हाँ
3: तो दूध लड़का महतारी हुई गया
2: बाल ले चाची बिटिया ने कहा अब वो जमाना गवा चाची
3: दो ही लड़के की महतारी रहे हम
4: जाई तब ब्याह करी
2: हाँ देखो बिटिया कितनी समझदार है स्मार्ट दुलावो मिले ई बीच है
4: दुलावा मिली
1: तू स्मार्ट ही तुहार दुलावो समाटे रही
3: समाटे रही और का
2: पढ़ लिख ले हैं तो अपने बाल बच्चन का भी पढ़ाई ले हैं यही मारे पढ़ा थी
1: देखो बुरा ना माने हो आजकल देखो रीतो के हम पकड़े हैं तो कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है बताओ
2: बता दो भाई ने हमारा तो राज खुल चुका है
3: अरे नहीं हस्बैंड का ही तो कहा जाते है ना
1: हाँ,
2: अब बुआ है हमारे फ्रेंड हाँ, तो
3: ब्याह नहीं भाई रहे देव का शर्मा ना
1: अच्छा ब्याह के बाद बॉयफ्रेंड आवत है
3: हाँ
2: कोई कोई के पहले आ जाते कोई कोई के बाद में आवत है।
3: अच्छा रीता देखो रखिया लेके आई है
2: हाँ चाची रस्तुआ में आई तरह जाम बहुत लगा रहा है तो हम कहीं बगलिया एक दुकान लगी है ला तब तक रखिए देख ली
3: रखिया लेके आई हो भाई
2: बहुत बढ़िया बढ़िया राखी आवा है चाची बाजार
1: हाँ।
2: हाँ, बहुत बढ़िया राधा
1: दुकान बहुत दुकान लगी
2: पूरा जाम लगा है
3: चाची मिठाई वो दुकान लगा हुई
2: बिठाऊ में मिठाई ना ही खराब हो जाए ये परसों हाँ, अभी
3: हमें जाए अपने भैया घरे
1: हाँ
3: तो भैया हमारे आए हैं
1: तो हम रखिया बड़की ले ली हो
3: नहीं हम चांदी की राखी ले थे
2: चाची भैया के लिए चांदी की राखी ले
3: भैया के हम अपने चांदी की राखी बांधा
1: हाँ तब तो हम चश्मा लेके आए
2: हैं तो चारों के लेके
1: सुनो चश्मा तो पैबे की नहीं और रखिया
3: हमारे लिए अमेरिका से रकम रकम के सामान लावत है भाई तो अब का हम चांदी की रखियो
2: ना तो कमाते हैं काहे ना बांधो चाची
3: बहुत मांग लिया है पैसा कि हमें दो पैसा हम चांदी की राखी लागे लाव अपने भैया के बांधब।
2: चाची दिखाओ जरूर जब लाओ तो।
1: हां जो पहलिया लाए वो तो बड़ा नीक पहलिया है।
3: पहलियो बस ले लिया उनसे हमका। अच्छा। नंगे गोड़ा नहीं अच्छा लगत है ना।
1: अच्छा अच्छा,
3: तो नंगे गुड़वा हम ना जाइबे मई के। हाँ। यही से हम इनसे कहा कि हमका एक जोड़ी पायल खरीद दो। कहन का करियो खरीद के? तो कहत हुआ मिलबे करी तोहार भाई आवा है अमेरिका से। तो कहा दे मार हमार पैसा उड़ाए पड़ी हो। तो हम कहा देखो ये पायल हुआ और ये बिछिया भाई सब मई के ससुरार के होत है।
1: हाँ,
3: उनका समझाए दिया हिंदी में। तब कहीं लाई जाओ पैसा मराओ जाए लाओ जाए। हम कैसे कहें?
1: अच्छा ले जाओ पैसा मराओ जाओ
2: लाओ जाओ। चाची भाषा है
3: यहाँ कहा जाए वही कहा थे मरो
2: साथ दे तो
3: यही तरह का यही तरह का
1: पैसवा मर्दवें से मांगो तो सियाई जाए।
2: तेरी की बड़ा हिम्मत करे पैसे कौन बहाना मांगी
1: सकरवा। हम जब उठें सोए के तो हम इनसे कहें पाड़े से कि तनी हमें रुपया दे दो। तो कहें कि तू रुपया का करबो
3: आ बोलियो।
1: तो हम कहें का है भैया हमें नहीं काम लागत है
3: नहीं तो पहचानता नहीं रुपया।
1: हाँ बहनी दूठो बिलौजिया चेक दे दिया ना।
2: अच्छा बहनी भी तो पहने ना
1: माना ले ली अपन चेक लाओ पैसा लाओ। तो कहते पैसा कहाँ हमारे है
2: मान लो।
1: तो सब हम कहें कि पैसा तोरे नहीं है। कहीं नहीं
3: बिलारी तो चिंता ना करो।
1: हाँ
3: तुहार दूध का हिसाब निकलत है ना।
1: हम उनका तू ना दियो।
3: ना ही हम उनका ना दे। हाँ। हम तुका दे दे चुप्पे और तू अपन काम चला ले।
2: अब
1: सुन लो बहनी जोन दूधवा पैसा हो तो बहुत टिटियाई लेते
2: हैं। नहीं यही तो बात
1: है। हमें को पैसा नहीं दे।
2: मर्दे लोग
1: सब ऐसे तो। और जब सुन लो जब मांगा हो तब सुनो ये बात। अब तू क्या कर वो पैसा लेके?
2: अब देखो बताओ खर्चा नहीं है।
3: हाँ राखी
2: त्योहार आएगा मिठाई
3: कितना पैसा खर्च करेंगे?
2: चाची हमारे यहाँ तो कहा था तुका कत्ता पैसा चाहिए। अबे दो दिन दिए रहन
1: ले आओ ले आओ अब
3: हिसाब हो दे वहाँ
2: कितने का लाई हो एक एक हिसाब दियो। अबे दो दिन दिए रहन
1: ये अपन ठंडवा का है बंद किया हो।
3: अब फिर तू बेतुकी बात करियो
1: का
3: कहीं से की लाइटिया नहीं है?
2: ए चाची अमेरिका से लाइटिया मंगवा लिए होते हो।
3: अमेरिका से लाइटिया मंगवा लिए होते
2: और काज नहीं चाची लाइटिया ना जनरेटर मंगवा लिए मतलब वही जनरेटर इन्वर्टर
1: जनरेटर का हो।
3: बताओ हम काका मांगी अपने भैया से।
2: ए चाची अरे आखी बनाई जनरेटर मांग लियो सब बहनी का आराम मिली हूं मैं ना।
1: हमार बतिया सुन
3: देखो हमार हमार घर में हमार मैके सामान लगा ये जो ठंडा लगा है।
2: हाँ।
3: ये हमार भैया हमार भैया बहुत हमें मुहात है वहाँ लगवाए
2: तो चाचा ना लगवावत है चाची
3: चाचा लगवाई है
2: उन्हें क्या है लोटा लेके चला थे भागा थे
3: चाचा हमारे भैया आवत है। हाँ। तो चाचा एकदम कन्नी काट ले भाग ले थे खेते।
2: चाचा से कहो ना उनका समझा दे एक बार हमारी बहन ने परेशान ना किया
3: उनके ऊपर बोझ डालो। हम भैया ना डालो
1: बताओ जनरेटर का होता है?
3: जनरेटर होता है कि जैसे लाइटिया ना रही तो उससे लाइटिया जो है आ जाए।
1: अच्छा
3: मशीनिया आवत है
1: मशीनिया कहा तू जनरेटर का ही कहती हो
2: जनरेटर मशीनिया ना होकर जनरेटर कहा
3: जनरेटर।
1: ये गोलियां बड़ी हुई काज नहीं काका बतावत थी हमें कहाँ से पढ़ती रे अंग्रेजी अंग्रेजी जानती थी
2: हम शहर में पढ़े हैं
1: भाई अंग्रेजिया बोला थी तब
2: तो हम दोनों बहनी पढ़े हैं शहर हुआ में तब तो
1: फिर क्या तुम पढ़े हो
2: और का।
1: हाँ रे मैया हम तो जानते नहीं कुछ पढ़े नहीं
3: तो दुलारी हम अनपढ़ होई।
1: अरे तू तो नौ पास ही दसम फेल भयूरा
3: तब पढ़े तो है।
1: हाँ
2: नवा तक पढ़ी तो बेकार
3: कोनो बात नहीं हम पढ़ी हन
1: पढ़ी। हाँ नहीं पढ़े
3: और पढ़ी जितना होई उतना हन लेकिन कढ़ी बहुत हन और तू कढ़ी हो।
1: अरे हम तो कढ़िये ने हन हो पढ़ियन नहीं लेकिन हम कढ़ियन खूब
2: आई सब कुछ पढ़ाई थोड़े होता गुण हुनर भी तो बहुत कुछ होते हैं।
3: अच्छा एक बात याद आई गई जो आई है बहनी इनका तो गोली कहती हो हमारे लिए रोली हो गनवा बहुत नीक गावत है।
1: ये गोली बहनी
3: हाँ बहुत नीक गावत है
1: तो रखाउंदी के गवा दी एक ठो।
3: हाँ तो हम तो कही थे कि सुन ले आई है तो सुन ही लो और हम तो कहे थे कि हम अब की बुलाई बहन का अब जब हम लोग करीब ना वो
2: हाँ,
3: चौपाल में बैठा रही है वो गाना
2: अपनी बहनिया का
3: बहनी भुला नाम है भूलन जाता सब जिससे कहो तो पार्टी है पार्टी में जाए खे अब भुला हुआ सब भूले।
1: हाँ बताओ हम लोग पुरान बतिया सब बिसरा
3: बिसरा जाते है इतना गुस्सा लगा इतना रिस लागत है कि बताओ भुला हुआ कहा जाता है बहनी हमारे घर भुला हुआ है
1: कितना मीठ लगा
3: अवध माँ तो यही भूल हुआ चलत रहा है, अवध माँ भूल हुआ चलत है, लेकिन अब का है पार्टी है हमारे घरे आयो। और पार्टी में का होता है तनी बहुत खवाई दी नाची को
1: मेरे बाल नाचो चलो भाई। भीजे पा भीजे
3: भीजे नहीं डीजे कहा जाता है वो डीजे डीजे
1: अच्छा जीजे
2: नहीं डीजे डीजे डीजे कहा थे डीजे
1: अच्छा अच्छा तो चलो ढोलिया बजाओ आज तू ही बजाइबो
3: बजा ली थी रोलिया जौन है सब गुना पारंगत है
1: अच्छा
3: आ, सब कही ले थे ढोलियो बजा ले नहीं बजाई तो बजा दे उमर का
1: तो ढोलिया कहाँ है वो बजाबे कहबो
3: अरे अब तने सब आई है छोट छोट बिटिया क्या करी है यहो तो हिला डुला करे अपनी जगह से।
1: हाँ हाँ तब तो हाँ का कहा तू
3: जीरो साई हाँ।
1: तब भाई तो पातर हो जाए
3: हम लोग ना हिल पाए लेकिन ये लोग तो अपने जगह से
1: तब भाई तो चाची स्मार्ट बना
3: और हाँ, का स्मार्ट बने खाए आज बड़ा गरम
1: स्मार्ट कहा जाता है स्मार्ट
3: स्मार्ट नहीं
1: हाँ
3: अबे का बोली से स्मार्ट
1: स्मार्ट
3: स्मार्ट बोलो स्मार्ट
2: सारे चाची के गर्मी ज्यादा लागत है ना
1: बहुत गर्मी आन
3: है और लाइटिया वाले अब एक एक गनवा जोन है लाइटिया के वालन के ऊपर बहुत सही बना है
1: कौन
2: है दादा चाची पर यही बात पे
3: के क्या है कि जो उन्हें सहवा काटे लाइटिया मरी जाए और जरी जाए और काली मैया उनका धरती से उठा ले
2: सुना दे चाची का पता लाइटिया है जो डर के मारे
1: एक कही दो उसे कहते आईन जाए हम तो कहीं मरी जाए
3: जो उन्हें

0: चाहिए।
1: अब तो लाइट वाले डरे जाइए भैया, अच्छा ऊपर ना जाएगा।
0: ऐसे आसान ना समझो।
1: हाँ मेरे चाची का
2: मामा चटपटी हो, ऐसे ना धरागा।
0: हाँ पूरे कहू बहनी पूरे कहू।
2: हाँ तो हम कोई छोड़ित नहीं है, कोई डराइत नहीं।
0: हाँ अरे पुलिस का नहीं डराती।
2: हाँ तो लड़िया वाले इनका का डराई,
0: तब उनका का डराई है
2: ऐसे गरियाई।
0: हाँ
1: चाची आज चैट बॉक्स जरूर देख लियो एक बार।
0: मैंने कहा थी चैट बॉक्स देख लियो, चैट आवत है
3: चैट
0: टिक्की चैट, टिक्की चैट।
2: तो लोग अभी बड़ी नादान हो
0: हाँ।
2: तो ना समझ पाइए वो होते चैट बॉक्स।
0: मुआ कौन मेरे बनाई है
2: तो कर सब
1: चाट वाला मुँह बना
2: रहा।
0: देखो कौन
1: बनाई चाट, मतलब चाट।
0: हमें अपने घर के बिलरिया याद आ जाती जो मेरी मुँह बनावती। घर से बिलरिया
1: नहीं हुआ चाची, बड़ी सुंदर बिलरिया ना का हुआ चाची। क्या करते
0: सुन उनका मुँह का लेना है का क्यों का क्यों कौन बात
2: सिया चाट।
0: देखो वैसे खाते तो
1: आप लोग जो रंग डाल देती हूँ ना इससे और मजा आ जाता है।
2: चलो भाई गावे जो बहने ऐसे
0: हंसते हैं गाय दे
2: उनका गलवा जो उनका। अब तुम पुरवाए लिए हो
0: हमारे में, हमारे बहुत बहनी बहुत गर्म
2: है। तो गर्मी कैसे नहीं लगा था तो है बस खाली गर्मी आना
0: तो अरे कहू तन को एक को बूंदी पसीना नहीं है।
2: बहनी देखो बाहर चला
0: बूंदा एकदम मरी जाए
2: कहीं से हमारे दोहरे बाढ़ हवा है, पानी की मोटापा ना हो।
0: यहाँ
2: बात है
0: यही पूरे
1: निकला
0: करो

0: हमारे बना कहते तलिया बजाई दे
1: यार,
0: बढ़िया गावत नीक गावत है,
1: बड़ी गुनागर हो
0: नीक गावत है।
1: वह ऐसे तो अब कहा कि चाहे रीता से कहा कि रोलियो को ले आयो।
2: हाँ तो हाँ। मेरे ले आया जाम लगा रहा
0: ना ही नहीं का करू मनी जाम लग रहा।
2: हाँ बहुत जाम लगा रहा
0: मतलब बजरिया माँ
1: तो संघरिया ही का
0: नहीं हाँ, क्या क्या बिकत है ना मार दुकाने हाँ। लगी मार दुकाने लगी बस वो भिड़िया जो है उमड़ पड़ी है
1: यहाँ तो है तो गर्मिया जो है
0: दुलारी थोड़ा सामान छूट गा है
1: हाँ।
0: तो तुगा चले पड़ी बजरिया
1: चली छे जब कहा वो तब बचा दिया भाई
0: तू तो कहा रहे हो कि हमें
1: हाँ हम मौक समान वाले लेख हो भाई हाँ। भैया हमारे समान में कुछ पूछ नहीं
0: भाई बढ़िया एक का दूध दे दियो हमें हम घर में पेड़ा बनाए हमारे भैया बाहर का ना ही खाते हैं
1: तो हम हमहू दे दियो
0: हाँ तो हम थोड़ा दे दे
1: हाँ
0: है? लेकिन तू दूध हमें नीक वाला
1: आज जो मिठाइयाँ बनाई हुई बरेडवा वाली
0: निकून दूध दियो
1: हम निकून थे भाई बताओ संजवा जब खुनवाई रहा बरेड के मिठाई बनाए है
0: अरे बरेड के रसगुल्ला बनाए रहा
1: तो हमका कब खवाई बो हो
0: अरे खवाई दे
1: खाई लियो
0: ना ही धरे हम धरे
1: तो बरेड के रसगुल्ला है रीता
2: हाँ
1: बरेड के रसगुल्ला खाबो
2: हाँ हाँ बनाए रहन
1: काओ
2: ब्रेड के रसगुल्ला
1: तब
2: हाँ बना रहन
0: खत्म हुई और का
2: हाँ हम कहें अब एक दुई का ले चली फिर कौनो दिन ज्यादा सारा बनाए तो
1: बताओ कस के बनाए पहले हमें बताओ रहनिया कस के बनाए
0: रीता तू ही बता दे
1: रीता बताओ
2: ब्रेड का जैसे किनारा काट लो मन हो ना मन हो तो नाव काटो कोनो नहीं दिक्कत नहीं है थोड़ा बासी ब्रेड हो तो ज्यादा नीक है ताकि भुरभुरा रहे
1: अच्छा अच्छा
2: ओका फिर मिक्सर में बुरादा जैसा पीस लो
1: अच्छा ओका भूने के नहीं
2: भूने के नहीं पड़ता
1: अच्छा हाँ।
2: ओके बाद में अगर आपके पास मलाई हो तो हाँ। बहुत अच्छा नहीं तो दूध से गूंद ले
1: अच्छा।
2: और गरी चूरा डाल दे थोड़ा हमारे पास उस समय नहीं रहे तो हम लच्छा डाल दिया रहे
1: हाँ।
2: पर चूरा डाला जाता है
1: बुरादा बुरादा
2: हाँ वही बुरादा चूरा
1: अच्छा
2: है ना और वही माँ आटे का गूंद ले और छोटी इलायची जो होता है हरी वाली होती नहीं है ओके चूरा वह पीस के महीन पाउडर बना के बहुत डाल लो तो उसे महकी तो और अच्छा लगी ओके बाद ओके आटा गूंद के 10-15 मिनट रख दे
1: तो आटा का गुंधाई जाता है
2: हाँ बिल्कुल आटा जैसा हो
0: जाता है
1: अच्छा फिर
2: जैसे रोटी का आटा होता है हाँ, वैसे मुलायम आटा
0: अब आगे हम बताई थे
2: बताते
0: जब आटा बना लियो ना
1: हाँ
0: तो उसके अंदर कुछ मेवा वेवा भर दियो
1: अच्छा
0: तनी हाँ किशमिश भर दियो चिरौंजी भर दियो
2: खोया भर दियो
0: तनी बादाम
2: भर दियो
0: काजू आजू कूट काट के भर दियो भर दियो गुलिया आएगी और गुलिया आएगी तल लियो और चशमिया पाक दियो
1: तो ये चाची अरे ये बताए तो दिन कसके बनावे है
0: हाँ।
1: तो बजरिया जब चलो तो हमारे साथ लकड़िया वाले दुकानिया चलो जो मशीनिया ला गए
0: और लकड़िया वाली दुकान का करी हो जाएगी
1: अरे बुरादा ले बे कहीं नहीं क्यों मन बुरादा ना दे
0: भैया हम मरी जाए वहाँ ठीक है
1: कहा बहनी
2: अरे नाई चाची मरे मरे ना चाची आए थे मिले नारियल गरी
0: गरीब बुरादवा कही है
1: बहनी कौन एक बुरादा कही हुआ
2: अरे गरीबा के गरी गरी मेवा मावा जो बनते है पागा जाते वही के चूरा वाला बुरादा
0: है लच्छा आवत है जो खीरियम डाली तरह
1: अच्छा खीरियम जो सफेद का आवत है
0: सफेद
1: तब ये कहते कि बुरादा ना दे
2: हाँ तो के बुरादा मिले थे बाजार में बुरादो मिले थे चाची
1: तो लकड़ी एक बुरादवा था
2: नहीं हमें लगा थी पढ़त लिखत नहीं है का कुछ मालूम नहीं
0: हम हो या हमारा करेजा हो कि हम इनका सिखाई थे ये हमारी
2: चाची बड़ा मेहनत लगा
0: सिखाई थे नहीं ये कुछ हो नहीं जानी थी
2: हाँ चाची अब लागत है हमऊ का
0: जानी गयो ना
1: हाँ, जान बहुत इमारत तू है हम
2: तब का करी चाची
0: इनके पीछे हमारा इतना दिमाग खर्चा होत है कि हम पगलाए
2: होई चाची होई
1: सुनो तो हमारा सखी ना हो
0: अब सखी जुराए ना तो हमार भेजा खाई हो
1: भेजा ना खा लेकिन हमने जो ना जान पाए तो तुम्हें बतावे परी बतावे परी बतावे
2: बार बार बताए पड़ी लागे तुमका बार बार बताए
0: पड़ी तुम्हार दिमाग हुआ लकड़ी की दुकान तक पहुँच गया
1: हम वहाँ बुरादवा जानी थी अरे
0: भाई सोचक नहीं कि मीठे का लकड़ी बुरादा कस लागी
1: अभी हम वहाँ सोचे पहलवा तो दिमाग हुआ मावा लेकिन मैं नीक लागे
0: चलो कोनो बात ने माफ किया अब ना ये बात
2: बताई चाची हम बताई एक हाँ। दिन आप बनाए और इनका बुला लियो
0: अरे हम अब्बा
2: इनका दिखा दियो बुरादा का होते इनके हाथ में
1: दही के बनाई ही
0: अब्बा हम दिखा दी है हम इनका ये नहीं है
2: कि बनाई दिखा दियो बढ़िया ढंग से खाए के देख के तब राखिए बना लियो जब भैया को जाए तो
1: बना ले
2: बना ले
1: बना के ले जाओ बना ले हां तो सुनो
0: रोली
1: एक एक सुनी लो पहले हाँ। एक बीरे ले लो हमें भाई खवाए दो रसगुल्लो हमारे मना कहाँ तक खाए
0: ए रीता बहनी हमरे किचन हम चली जाओ चौको हमारा मुदा रखा है
2: हाँ चाची
0: उठाए
2: ला चाची अंधेरा भाई उठे लाइटिया है नहीं तो कुआ हम ना जी अंधेरे में
0: अरे चली जाओ
2: हमें बहुत डर लगता है
0: मुस्कान चली जाओ हमारे चौको हम धरा
2: तू बहादुर बिटिया तू चली जाओ
0: हाँ रसगुल्ला मुदा धरा
2: ऐसे रसगुल्ला
1: तो खाई ले हम
0: अरे तो जाओ तू खाई
1: ले जाया बिरेक ले लो बहनी बिरेक
2: और पनिया भी ले आओ अच्छा।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: बड़ा नीक बनाए रही हूँ चाची, बड़ा नीक। बड़ा नीक बनाए रही है ना,
4: सही बहुत नीक,
3: मजा आएगा खाए के, मुँह मिठाए गवा।
4: हाँ,
3: चिनिया खूब नाए रही, खूब नाए रही,
4: तब तो मुँह मिठाए गवा।
5: हाँ, अभी एक ही मिठाई हुई गई हमारे पास, हमने भैया हमारे हाथ की बनी खा था, और तू दे दूध।
3: हाँ दे भाई,
5: पेड़ा बनाई ली।
3: पेड़ो बन जाए, बर्फी बन जाए।
4: चाची आज हम एक मिठाई और सीखे हैं, कौन सी बता दे?
5: कौन सी
3: बताए तो बनी, बताए
4: मूंगफली की
3: बताए तो बताए।
5: घरेलू मिठाई खाए चाहिए, दुलारी बजरिया की मिठाई ना लायो
3: खाए। हाँ बताए,
5: कहा
3: मन मिलावट हो जाता है, खाए खाए मन,
4: यही मैंने बताया।
5: देखो और जाने का
4: तो बताए चाची,
5: आदमी वैसे मर जाए,
3: बेराम हो जाबो बहिरे।
4: बताओ मूंगफलिया के छिलका छील ले, भुनी मूंगफली लाए आधा किलो,
3: भुनी
4: भुनी मूंगफली।
3: अच्छा भुनवाए ले।
4: हाँ भुनी हो भुनवाए ले, जैसी हो भुनी हो पहले।
3: अच्छा अच्छा, फिर
4: ओके, छिलका फूक फूक के उड़ा लो, लेकिन पंखवा बंद कर दियो, नहीं तो काम बढ़ जाए आपके।
3: अच्छा अच्छा,
4: हाँ
5: उड़वा हुई जाए पूरे,
4: तब ओका फिर मिक्सर में पीस लियो।
3: हाँ
4: ओके, बाद में चासरी तैयार कर लिए एक तार की।
3: हाँ
4: है, अब हमें वही पाउडर डाल के खूब भुनत रहे खूब बढ़िया। हाँ। और जब भुनाया जाए एकदम तेल छोड़े लगे, मतलब उमा, तब मैं एक चम्मच देसी घी डाल दियो।
3: हाँ।
4: बस वो ठंडा जाए, आटक तरह गूंद जाए, ओके बाद में उसका बेल के आटक तरह और पीस पीस काट के जमाई दियो, ठंडा
3: काजू बर्फी तरह
4: भाई तना हो जाए,
5: कजुआ की बर्फी।
3: हाँ, जैसे काजू कतरिया बनते
4: हैं। हरारी भी हो, आप चाहे व्रत वो खा लो, जन्माष्टमी
3: तो नवरतम बनाई ले।
4: हाँ
5: जन्माष्टमी, हाँ जन्माष्टमी ठीक है, ये तो बढ़िया है, अब हम बनाए ली भाई।
4: हाँ,
5: तो हम तो खवाए दे, तू ना बनाए, तू तो बनाए नहीं पही हो ना।
3: हम ना बनाए पी भाई, हम बने भी ना करे।
4: ये चाची अभी तू कही बीजी कही दे, बहुत इजी हो है।
5: अब तुम बिजी कहियो, अब बात का बता,
3: मजा ले लेती
4: ना चाची, इजी लागे थे आज वैसे बोले थी तो हमें बड़ा अच्छा लागत है।
3: इजी
5: इजी
3: इजी,
5: देखो कल मेरे बोला थी
3: हमें अपन
4: मुंह सुंदर लागत है, जैसे सारमम गाते हैं जी।
3: अपने मर्दवे कहा थी
5: ए दुलारी। हाँ, हाँ, अच्छा तू टाइम बहुत पास करती हो।
3: ई कौन चीज होता
5: है टाइमिया निकाल रही हो, एक गनवा सुनाई दे, रलियो आई है उन्हो सुनाई दे, उनके सुने तो
4: हाँ, चाची सुनाए दे। चाची बहुत अच्छा गावा थी
3: ए बनी, मेरे बहुत गर्म लाग है। आज इनके बत्ती बुताई गए है,
4: चाची बेनुआ रखे चाहिए आपका,
5: अब ऊपर 3 मंजिल पे रखा है।
4: अच्छा अब आगे से ध्यान रखे, लाइट या कोनो भरोसा नहीं
5: है।
3: 3 मंजिल पर है तो बताई गोलिया चढ़ जाए, कूद कूद।
4: हाँ गोल गोल है ना।
3: हाँ बहनी हमें कुछ दे देना, हम मर जाए बहुत।
4: नहीं चाची आप लोग मरे ना, कहो त्योहार बगल में है, ऐसा ना बोले चाहिए।
5: बरसे वाला है, इतना गर्मस किए है, इतना गर्मस किए है, अब पनिया जरूर बरसी।
4: हाँ चलो बरस
3: जाए,
4: हमारे
5: तो हो गायो। हाय बहनी,
3: हाँ हाँ

0: वाह चाची मजा आएगा।
1: जब ये गाना आवत है तो हमरे आँख से
0: सही कहा चाची, सही कहा
1: पूरा घाटी बहन भाई भाई बहन के प्यारे से सोचे थे कि हमार भैया सात समुंदर पार बैठे हैं और हम यहाँ देखो काका खाई थे
0: हम तो यहाँ कही थे
1: कि जेकर जेकर भाई बहिरे कहूँ रहा थे दूर देश पर देश रहा थे ना ही पहुँच पावत है तेका भगवान स्वस्थ रखे सुरक्षित रखे और लंबी उम्र दे।
2: और हम जो बहनन की
1: यही मंगल कामना के यह फरियाद
2: का रक्षाबंधन
0: सब के भाई बने
1: रहे खूब बधाई दे और
2: बधाई दे थे कि भैया इसे सब
1: जहाँ रहे सुखी रहे
0: सुखी रहे
1: बस
2: बढ़िया त्योहार बीते और बढ़िया से जो पाव आओ भाई है उनका
1: और का नेक निछावर। हाँ अरे नहीं तो भाई जैसे बाहरवा रहा था तो नेक निछावर भेद दे नहीं। और सुनो हम तो एक बात सुनन चाची
0: का चाची
1: अरे हम सुनन की मोबाइलिया में यहाँ रुपया आवत है।
0: अच्छा चाची कैसे चाची
1: कसके तू जाने थे।
2: अरे बताई थे कि वो कौनो चला है पेटीएम टेटीएम यहाँ कुछ चला है चाची
0: ए चाची
1: ये बहन ई का होते
0: ए चाची
1: पेटवम
0: ए चाची आपके भैया तो अमेरिका से मोबाइलिया भेजा तो ये फिर
2: नहीं भाई हमारे भैया तो चला आवत है सीधे
1: हे पेटवम वो पेटवम
2: पेटीएम करत है
1: हाँ।
2: और हुआ से रुपया तोहरे खाता में आ जाए बैंको में चला जाए
1: सी कसके बहनी होते ही कसके
2: ऐसे होते बहन नहीं रकम रकम की मशीन चल गया है वही से रुपया आवत है
1: तो ऐसी कहियो ऐसे मनइयो आ जाए।
0: हाँ चाची कितना मजा आ जाए ना अगर ऐसा हो जाए
1: ना आ जाए चाची ऐसे मनइयो
2: वहाँ से
0: मनइवा कैसे मोबाइल में चलाए
1: जैसे भाई रुपयवा आवत
0: है रुपयवा आ जाते मनइवा कैसे चलाए लेकिन मनइवा जो मोबाइल जो चला है उमा वीडियो कॉल होते उससे सब देखा था
2: वहाँ हो जाए वीडियो कॉल
1: वहाँ हो जाए बहनी तो हमारे तो
0: हमारे सामने
1: हमारे तो मोबाइल ना ही है बहनी
0: ना ही तो हमारे लोग इनके शहरों में होते है सब
1: तो बढ़िया बात बता भाई मोबाइलिया खरीदवाई दियो।
0: हाँ तो आपके शहर आयो
1: हम बताई
0: राखी बांधो पैसा भाई भाई शहर चलो
3: साथे भैया सब लोग मोबाइलिया कहाँ नहीं मांग लेती हूँ शहरवा वाला।
1: हाँ हो सही नीक बताई
0: सब अपने अपने भाई से बात
2: भाई कर रहे हैं कुछ मांग अपना
0: ए चाची मांग लियो
2: मेरे ना मांग अब हमार भैया ऐसे पुरवाए रहा था सब चीज
1: हम तो बहनी हम तो बहनी जान तू का कहबे
2: हम तो यही थे हम आशीष थे अपने
0: अरे तो चाची भैया के देख पई हो मैं बात कर पई हूं
1: ऊ तो कहबे करबे जियत रहे तब तो रुपया पाई हमरे लोग है ना तो हम तो ये कही थे हम तो अपने भैया से कह दे उन्हें समन्वय बे हमार मोबाइलिया बगा दी गए खराब हो गए आप कहती होशियार है
0: तो कहूँ कहूँ दिमाग चला जाती चाची।
1: हाँ अपन ही पढ़े लिखे जाए तोरे लोग पढ़े लिखे हो रीता कितना पढ़े हो
0: बताए तो रहा चाची एकदम बारहवीं पढ़े हैं।
1: अच्छा बारह
2: पढ़ी
1: बहुत पढ़े हैं
2: तो हमसे तो ज्यादा
0: पढ़े चाची
2: हम दसवां पढ़े हैं तो बारह पढ़ी हो
0: चाची हो तो चाची हो चाहे
1: हम तो बनी दुइये पढ़े हमारे तो बहुत
0: आपके बताए हमारे चाची परेशान हो जाती
1: अरे तो हमारे सखी हो तो परेशान हो जाते
0: हाँ तब का करे बेचारी हमसे
1: गोली कितना पढ़े गोली
0: बता दो बहनी बता दो कितना पढ़ी बता दो बहनी आज आज बता दो
1: कि हमारे घर नहीं पढ़ी हुई अंगूठा टेक हुई बहनी दुई खाली
2: दुई पढ़ा है पढ़ी हो या हमें लागत है ये हाई या हाई हाई इसको हाई
0: हाई हाई हाई स्कूल पढ़ा
2: हाई
0: नहीं हम इंटरमीडिएट हम
2: इंटरमीडिएट
0: बारहवीं बारहवीं हम पढ़े हैं
1: बहनी कहती है इंटरमीडिएट हनी
0: हम दोनों बहने बारहवीं पढ़े हैं चाची
1: बारहवा कहो ये काहे कहा तू इंटरमीडिएट हन
2: चाची इनके शहरवा में कहा जाते ना इंटरमीडिएट।
1: अच्छा यहाँ कहा जाते बहनी
0: हाँ और क्या।
1: अच्छा अच्छा तो ये बताओ चाची
2: का
1: कि अब घर का चला जाए बहुत अबियर हुई।
2: अरे अब रीता बहनी कहीं ना उठते बताई नहीं
1: है बहनी कुछ सुनाई पाओ सुनाई तो हमारे भैंसिया कोई खोल दी है दादा
2: वाह गाय के लिए आज उद्यान बैठी है तो
1: सब गाय लो कुछ गाय लो बहनी रीता कुछ गाय लो तू तो बड़ी गम नहीं सुनन है आवत है।
0: अरे दो लाइन लिखे रहा लेकिन मिलता नहीं है कहूँ लिख के रख दिया है
2: अरे तू ऐसे गाओ ऐसे
0: लाइटिया है नहीं कहाँ ढूंढे गई
2: लिखा बड़ी वाला ना गाय पाई हो।
3: अच्छा चलो देखते हैं।
2: तो चलो इनसे पूछ लो, रोलिया तो आवत हुई
1: ए बहनी गोली गाय दो।
3: चलो ठीक है।

0: अब हम लोग रखिया के गंदमा गावा गाए। अब रीता तू सुन गयो, जब तू फिर आई बो अगले बाजी तब तू जन्माष्टमी के गाना ले आया।
1: जन्माष्टमी है
2: कि जैसे समान लागत है बस त्योहार शुरू हो जाए। अब देखो नाग पंचमी भा,
0: हाँ
2: अब रखियाई आई गई,
0: रखियाई गई
1: बहुत होते हरियाली तीजियो तो होता
2: है हरियाली तीज
0: हाँ भाई बहनी
2: जन्माष्टमी हो छठी
0: छठी
1: और फिर गणेश जी आए जाए।
0: तो बहनी अब सुनो, ऐसा है कि हमार भैंसियो तो राई गए खुटवा उखाड़ लिए सी, अब हम जाते घर के चलबो सबे की भी रुकबो
1: ना ना चलो चलो चलो
0: तब चलो बहनी चला जाए
1: बहुत काम बहुत है
2: अपन काम करी।
0: हां तब चलो बहनी चलो
1: तेरी का बहनी
0: चलो भाई चला जाओ बकरे बाजी सुनाओ
1: चलो ठीक है
0: और ले धई ना हमारी निक्के कराई दी हो कमवा
2: चलो ठीक कराई दी
1: ए चाची अगली बार लाइटिया सही कराए लियो देखो
0: और लाइटी अपन बनवा लो
2: हमार खराब नहीं बहनी
1: तब का हुई हुआ
0: बिजली चली गई है
2: बिजलियां चली गई हम तो गरिया
1: अब गरिया दियो
0: अब और का करे
2: अब का करी हम
1: अब उनके समझ में आ गया ये
0: लाइटिया तो चलो सभी चली थे आई सबका राधे राधे राम राम बहनी
1: राम राम चाची
2: और देखो
1: सबका रक्षा बंधन की शुभकामनाएं।
0: हां हां
2: और चैत मास में बास में आई के
0: हां
2: तो बतायो कि प्रोग्राम आप लोगन का कस लागत है।
1: हाँ बहनी सब लोग बताओ
2: ज्ञान स्थली 89.6
3: FM ये है रेवड़ा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जाने से पहले बड़ा अहम सवाल हमने पूछा था। हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एंड फिजिशियन होम्योपैथ। क्योंकि जाने से पहले हमने ये कहा था कि हर बार जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे पड़ता है या योगा से स्पेसिफिक कोई भी इवेंट किया जाता है तो उसकी टैगलाइन दी जाती है, लेकिन हम स्पेशली अगर बात करें इंटरनेशनल योगा डे पे तो क्या वजह है कि कभी आध्यात्मिक रूप से उसको जोड़ के बताया जाता है, कभी सामाजिक रूप से, इतने अलग अलग पहलुओं से योगा को जोड़ा जाता है, क्या महत्व है योगा को, वो भी इंटरनेशनली सेलिब्रेट अब किया जाने लगा है?
1: देखिए, योगा को छोटे में आंकना तो गलत होगा, बहुत विस्तृत रूप से इसके, बहुत ब्रॉड रूप से इसको जानना है। और इसके लिए ये है कि अब आप मौलिक रूप से अपने आप को स्वस्थ यद करना चाहते हैं तो मानसिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सभी प्रकार के विकास की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको हर दूर दूर तक गांव में से लेके और शहर में सबका रहन सहन अलग अलग होता है, एक जैसा आप नहीं मान सकते पूरी तरीके से। तो सबको व्यवस्थाएं देना और सबके लिए अलग अलग, क्या सबके लिए ज़रूरत है, सबकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, तो सबको अलग अलग कैसे पैमाने पर खरा उतरा जाए और कैसे उतारा जाए, इसलिए हर बार कुछ ना कुछ नया भी करते रहते हैं और विस्तृत होने के नाते तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ नया चीज़ जोड़ते भी रहते हैं और अच्छे से आपको समझाया जा सके। मान लीजिए इस बार ये हुआ कि ऐसी चीज़ें, इस बीमारी, कभी कभी होता नहीं, जैसे कोविड में आपने बहुत सी चीज़ों की नई चीज़ जानी होगी, कुछ नए आसन आपको सिखाए गए होंगे, कुछ आपने नई जड़ी बूटियों के बारे में जाना होगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना था।
0: बिल्कुल
1: ऐसा नहीं था, उसका नाम था नहीं, तो बहुत व्यस्त, हमको जानकारी नहीं था। ऐसे ही योगा का है, हमको जानते ही नहीं है लेकिन बहुत वृहद है।
0: बेशक, ये तो आपने सही कहा कि बहुत ही वृहद है और कहीं ना कहीं जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, इसीलिए शायद बार बार टैगलाइन भी हर तरह से इसको चेंज किया जाता रहा है। डॉक्टर साहब, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं हमने योगा की बात की है तो योगा से हम जाना चाहेंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं, हम फिजिकल, हमारा बहुत सारा काम है, हमारा इवन काम ही MR का है, मैं जा के जगह जगह दवाओं के बारे में रिप्रेजेंट करता हूँ, या मेरा काम फील्ड का है, या मेरा काम बहुत उठाने रखने का है, बहुत हम ऑलरेडी घर में बहुत सारी चीजें उठाते रखते हैं, चाहे महिलाओं की बात कर ले चाहे पुरुषों की, तो उनका मानना होता है फिर हम योगा क्यों करें, फिर योगा अलग से क्यों करना है, इसके बारे में प्लीज आप बताएं।
1: देखिए, जो काम आज हो रहे हैं ये काम पहले भी होते थे, लेकिन पहले क्या होता था, खाना बनाने के लिए मशीनरी नहीं थी, तब तो मानते थे हम लोग, आटा भी चक्की से पिस के आता था, दूसरे तरीके से महिलाएं खुद पीस डाल

0: पीसते थी, मसाले पीसते थे, अब आपने मिक्सी खरीद ली, काम खत्म। काम तो आज भी आप मसाला पीसने कर रहे हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन क्या आप सिलबट्टे पे कर रहे हैं? हाथ मूवमेंट में आ रहा है? नहीं आ रहा। अब तो आटा गूंथने की भी आपने देखा होगा मशीन आ गई। इंडक्शन खरीद लिया, पहले लकड़ियाँ काट के लाते थे, फिर उसको रखते थे, सेट करते थे, फिर जलाते थे। मतलब फिजिकल, हमारा कहने का मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा था। पानी निकालने के 10 बाल्टी की अगर ज़रूरत है परिवार में, तो 10 बार 20-20 हैंडल चला रहे, तो 200 हैंडल पानी चला रहे। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। बटन दबाया, पानी ऑन हो गया। तो कहने के लिए तो आप दिन भर बिजी हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं। कुछ कपड़े धुले? कहेंगे हाँ धुला गया कपड़ा, लेकिन अब मशीन में धुले ना, पहले बाल्टी से धुलते थे, मेहनत होती थी, थक जाते थे, पस्त हो जाते थे, पसीना निकलता, सोते थे। अब ये सब नहीं हो रहा है। तो फिजिकल वर्क अगर घटा है, लेकिन खान पीन तो आपका घटा नहीं, वो तो और खराब हुआ। पिज्जा वर्कर का आपने नाम भी नहीं सुना था, पाश्चात्य संस्कृत में हम लोग जुड़ते चले गए, थोड़ी खान पीन की भी स्थिति खराब हो गई। इसीलिए अब योगा बहुत जरूरी है आपको फिजिकल बैलेंस करने के लिए, मेंटल बैलेंस करने के लिए। तो इस चीज के लिए योगा आपको करना ही पड़ेगा। सबको लगता है फिट है, कौन तय करेगा फिट है? आपके बॉडी के मानक ही तो तय करेंगे। अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया 40 की उम्र में तो आप फिट नहीं है, डायबिटिक हो गए तो आप फिट नहीं है। तो आपको, आप ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन अब जीने की इच्छा नहीं है। तो फिट रखने के लिए आपको फिर पुरानी पद्धति में जाएंगे, कुछ नई चीजें करेंगे। तो इसलिए एक योगा एक ऐसी चीज है जो पहले से हमारे यहाँ थी, प्रचार प्रसार की कुछ कमी थी, अब अच्छे से हो रहा है। अच्छे अच्छे प्रशिक्षक हैं, बढ़िया प्रशिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनसे मिलेंगे, सीखेंगे, तो आपका शरीर दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं, बढ़िया से हो सकते हैं। दवाइयाँ छूट सकती हैं, जरूरी नहीं कि सारी दवाइयाँ चलती ही रहें, छूट भी सकती हैं।
1: और सब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वस्थ समाज की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वस्थ खान पान, जैसा कि अभी आपने कहा कि जीवन शैली सही नहीं है, तो हम किस तरह स्वस्थ हो पाएंगे? जापान के बारे में जब बात आती है तो फिर कहा जाता है कि वो लोग बहुत फिट होते हैं, सबसे ज्यादा एज भी वहां के लोगों के रिकॉर्ड की जाती है। और जहां तक मुझे पता है, कई जगह ऐसे वहां पे एक रेडियो स्टेशन है जिसपे सुबह 20 मिनट और शाम में 20 मिनट निकाल करके बूढ़े बच्चे से लेके हर कोई उसको वहां पे योगा कराया जाता है, एक्सरसाइज, बेसिक्स एक्सरसाइज जो होती है वो कराया जाता है। और कहा जाता है कि ये सबके लिए मैंडेटरी, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं उस वक्त आप उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए पॉज करें और 20 मिनट का टाइम निकालें और उसको करें। तो कहीं ना कहीं वो एक पूरी समाज को स्वस्थ करने के साथ वो एक्शन भी दिखता है। क्या लगता है आपको कि हमको इन चीजों में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी 20-25 साल का भी कोई बंदा है, उसका भी पेट बाहर ही चला आ रहा है। दुकानदार हम लोग जिनसे जाते हैं सामान खरीदते हैं, मतलब आपको उनके चेहरे से पहले उनकी तोंद नजर आ जाती है। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं कि ये हेल्थ को लेकर के। तो हमें क्या अभी करने की जरूरत है? आपने योगा बताया, अब आप कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, आपके शहर में भी है, यानी आप जहां पे हैं आपके नियर बाई में वो सेंटर्स हैं। तो अब हमें क्या उन सेंटर्स का किस तरह से लाभ उठाना चाहिए, किस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं?
0: देखिए, व्यवस्थाएं तो सरकार की तरफ से पूर्णतया है ही है, लेकिन यदि जागरूकता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, बगल में चल रहा है, तो आप कैसे जान पाएंगे? उसको ऐसे लीजिए, लोगों पहले अपने अवसाद का नाम कभी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन अब इधर डिप्रेशन के मरीज बहुत हो गए हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हाय तौबा लगी रहती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका ऑफिस का काम 8 बजे तक खत्म हुआ तो फिर आप क्या योगा करेंगे, आपको क्या जरूरत है, आप तो थक गए, आप चूर हैं, आपका हो गया योगा, हो गई फिटनेस, ऐसा नहीं है। मानसिक संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। तो आपको शुद्ध चीज़ें, क्यों कहते हैं कि हरी साग सब्जियाँ खूब खाने चाहिए, ताजे फल लेने चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना कि आपके मेंटल लेवल को भी ठीक करता है। तो आप जब योगा करेंगे तो पड़ोस

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: डिलीशियस
3: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गन असली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। तो जी हाँ, आप सभी का बहुत इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन, ऐसा सब लोग शांता को मुंबई से हैं भाई, शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या। और जिसके पश्चात धर्मेंद्र मोहन जी हैं, मनुष्य जी नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक माई सॉन्ग तुझ संग प्रीत लगाई सजना। और भाई हमारे साथ सनी पांडे भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग मैम। आज तो मैम नहीं है, आज अपना काम चलाइए सर से। जी हाँ, आपसे मिलते हैं और खूब ढेर सारी बात करते हैं, तब तक आप भी चैट रूम में आ जाइए भाई, जरा इसकी शोभा में बढ़ा दीजिए, इसकी सुंदरता में वृद्धि आज तभी होगी जब आपका शुभ संध्या, हमारा सलाम तो आप तक पहुंच चुका हो, और इंतज़ार है कि भाई अब आपका सलाम भी हम तक पहुंचे। तो जी हाँ, आइए अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और आपसे मिलते हैं संगीत में, इंतज़ार के उस पास सुनते रहिए। और रेडियो गन 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा कर रहा है आपका इंतज़ार।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

जी हाँ, एक बार पुनः से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, वंदन और नमन। हमारे साथ श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आपको कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी। मिश्रा ऑप्टिकल जी गोंडा से हैं, गुड इवनिंग सर जी, शुभ संध्या। आपको कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और भाई, काका जी को पहली बार देख रहे हैं भाई, और काका जी बड़े क्यूट से लग रहे हैं, क्या बात है जी। शुभ संध्या आपको भी। सब जोन लिखते हैं, कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, ज़रूरत पड़ी तो यादों ने साथ छोड़ा, वादा किया था सितारों ने साथ निभाने का, सुबह होते ही सितारों ने भी साथ छोड़ा, क्या बात है। कदम कदम पर इंसान की ज़िंदगी में खुशियां बहारें टिकती नहीं है, यारों ने साथ छोड़ा, अब असल में मदद की ज़रूरत होती है, तब अपने भी दूर हो जाते हैं। सितारों ने साथ छोड़ा, जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है कि वे अंधेरे में साथ देंगे, वे भी सुबह हकीकत या उजाला होने पर उजल हो जाते हैं, क्या बात है। सच्चा ज्ञान और झुकना सीखें, क्या बात है। कुएं से पानी भरने वाली बाल्टी जब झुकती है तभी भर कर बाहर आती है। जीवन में विनम्रता ही सफलता की कुंजी है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो फिर इतनी बड़ी घमंड किस बात की। जी हाँ भाई, आज हमारे सबलू सावंत जी एकदम दार्शनिक विचारधारा के हो चुके हैं, क्या बात है। और बहुत ही प्यारी बात लिखी, और पीपी परिवेल भाई, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, भाई बहन के टूट प्रेम और विश्वास के पावन पर्व की शुभकामनाएं, और इसी के साथ होली का रंग भी है, वाह क्या बात है साहब। डीपी बहुत शानदार लगा रखे है आपने सबलू जी। अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, अपनी हस्ती से मुकर जाने को जी चाहता है, यही जीना है तो मर जाने को जी चाहता है। हर मुसाफिर की थकन कहती है अब लौट चलो, हर मुसाफिर की थकन कहती है अब लौट चलो, कौन जाता है मगर जाने को जी चाहता है। दस्ते तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, दस्ते तन्हाई का एक एक दिन एक एक बरस, कितने दिन हो गए घर जाने को जी चाहता है। जी हाँ, वास्तव में जो ज़िंदगी होती है वो इंसान को थोड़ी बहुत थकाती है, और थकने के बाद इंसान कहता है कि अब लौट चलते हैं। कहीं ना कहीं जो इंसान का माजी होता है, जो उसका बीता हुआ कल होता है, उसकी यादें उसके जहन में जब कभी भी आती हैं, तो वो अपने आप को उस समय की अपेक्षा तन्हा ही पाता है। लेकिन कहा जाता है कि दिवस जात नहीं लागहीं बारा, समय बीतते पता नहीं चलता है, लेकिन तब जब साथ आपके पास अच्छा हो, और अगर ये साथ अच्छा नहीं होता तो एक एक घड़ियां लगता है कि एक एक युगों के समान बीत रही हैं। ऐसी स्थिति में इंसान सोचता है कि क्या करे अंदर से, कुछ एहसास को वो टटोलते हैं हम लोग, और सोचते हैं कि चलो अपने आप को यहाँ पर व्यस्त रखते हैं, शायद उस जानिब उस तरफ हमारा मन न जाए। लेकिन ज़िंदगी है साहब, और कहीं ना कहीं जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, पलटते हैं, लौटते हैं, तो शायद उस माजी का एहसास हमको पुनः हो जाता है। जी आइए भाई, अब ऐसे मौसम में कोई अपना होना चाहिए, कोई साथी होना चाहिए जिसके साथ हम जी लगा लें, और जी लगाने के बाद फिर लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना ही चाहिए जो आपसे अनकंडीशनल लव करता हो। मतलब अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में अनकंडीशनल मतलब हम अगर लोगों के हिसाब से चलते हैं तो शायद वो हमको प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और अगर हमने उनके हिसाब से नहीं काम किया तो शायद वो
प्यार हमें नहीं मिल पाता। ऑफिस है, आपने काम अच्छा कर दिया, लो भाई थोड़ा सा प्यार ले लो। घर में किसी ने सहयोग कर दिया, चलो भाई थोड़ा सा प्यार बांट दिया। एक होता है कि राइट या रॉन्ग होना, गलत या सही होना। तो सही का साथ तो लोग देते हैं, लेकिन गलत होने पर भी साथ देना, ये अनकंडीशनल लव की शर्त है, यही उसकी पहचान है। कि मुझे नहीं पता कि आप सही हैं या गलत हैं, आप सही हैं या आप गलत हैं, मैं आपके साथ हूँ। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो माँ का प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति, वो अनकंडीशनल होता है, शर्त नहीं होती। वस्तुतः हम कभी कभी आकर्षण को, कभी कभी पजेशन को, जो अधिकार है, उसे प्यार मान बैठते हैं। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं और हमारे पास उतना ज्ञान नहीं, लेकिन अगर सोचिए कि कोई माता पिता हैं, उनकी कोई पुत्री है जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, पुत्री की खुशी ये है कि वो कहीं अलग विवाह करना चाहती है, और ये बात पता चल जाए और वो उनकी जाति में ना हो, ऐसी स्थिति में क्या पुत्री के प्रति उन पेरेंट्स का प्रेम बना रहेगा या कम हो जाएगा? ज़्यादातर उम्मीद ये है कम हो जाएगा, क्योंकि प्लाटिंग इज नॉट अनकंडीशनल लव। ये मेरा प्लाट है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा घर बनाऊँगा, ये पजेशन होता है, ये मेरे बच्चे हैं, जैसा मैं चाहूँगा वैसा ये करेंगे, तो हम उनसे प्रेम करते हैं। अगर वो अपनी खुशी के लिए कहीं अलग जाते हैं तो हमारी भावनाएं भी सही होती हैं कि भाई ठीक है, हमने दुनिया आपसे ज़्यादा देखी है, लेकिन अगर उनकी शर्त यही हो जाए तो शायद हमारी मोहब्बत कम हो जाएगी। और एक इंसान अगर आपकी लाइफ में ऐसा है जो आप सही हैं या नहीं, आप गलत हैं, ये फर्क ही नहीं पड़ता उसको, इस बात का मसला ही नहीं है, तो वास्तव में वो इंसान कभी टूटता नहीं है अंदर से, क्योंकि वो गम को बयां कर पाता है। और हमारी एक बात, छोटी सी बात है, लेकिन याद रखिएगा कि जो इंसान अपना दर्द नहीं कह पाता, अपनी पीड़ा नहीं कह पाता, उस इंसान को क्रोध बहुत आता है, वो इंसान गुस्से में बहुत रहता है। अगर कोई इंसान गुस्से में है तो ये मत सोचिएगा कि वो ख़राब है, उसके साथ ये हुआ है कि उसके हृदय का दर्द, वो अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पा रहा है। और जब आप अपना दर्द, अपनी पीड़ा कह देते हैं तो आपको क्रोध कम आता है। जी हाँ, हमारे साथ अरविंद जी हैं, मन का पुल से। हेलो मनु सर, कैसे हैं आप? शुभ संध्या, आपको भी शुभ संध्या। और हमारे साथी तो आप हैं मनु सर। जी हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा आपके साथ हूँ अनकंडीशनल लव के साथ। फिलहाल चलिए चलते हैं एक पहले से गीत की ओर, गीत के बाद फिर आपसे करते हैं मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो कनेक्ट 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा कर रहा है आपकी प्रतीक्षा।

0: जी हाँ, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, बहुत ही प्यारा सा गीत है, आपने सुना, आवाज पहचान चुके होंगे आप। जी हाँ, ये साक्षात माँ शारदे का वरदान जिनको प्राप्त था, यानी स्वर कोकिला लता मंगेशकर, और उनके साथ जिन्होंने कभी गाना सीखा ही नहीं, यानी किशोर कुमार, यानी आभास कुमार गांगुली रियल नाम। सावन का महीना बीत चुका है और अब भादो भी आ चुका है। जी, मतलब ये दो महीने ऐसे होते हैं जिनका अपना एक विशेष महत्व होता है। अगर हम बात करें जिंदगी के उन अछूते मौजूदात की जो हमारी जिंदगी को छूकर गुजरते हैं, हमारे पास आते हैं, और फिर लगता है कि सब चला जाए लेकिन ये न जाए। जान देने की घड़ी थी और मैं जिंदा रहा, जान देने की घड़ी थी और मैं जिंदा रहा, आज उसकी रुखसती थी, रुखसती मतलब विदाई, आज उसकी रुखसती थी और मैं जिंदा रहा। अब कहीं भी डूब मरने की भी गुंजाइश नहीं, अब कहीं भी डूब मरने की भी गुंजाइश नहीं, उसकी आंखों में नमी थी और मैं जिंदा रहा। जिनकी गर्दन झुक चुकी थी वो तो कब के मर गए, जिनकी गर्दन झुक चुकी थी वो तो कब के मर गए, मेरी गर्दन कट गई थी और मैं जिंदा रहा। किस तरह नजरें मिलाऊं अब मैं उसके हिज्र से, हिज्र मतलब दूरियां, किस तरह नजरें मिलाऊं अब मैं उसके हिज्र से, बात मरने की हुई थी और मैं जिंदा रहा। सबको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, सबको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, इतनी जालिम जिंदगी थी और मैं जिंदा रहा। जी हाँ, मैंने आपसे कहा कि सावन गया और भादो आया, तो क्यों ना कोई ऐसा गीत आपको सुनाएं जिसमें सावन और भादो दोनों आए। और आप जानते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें सावन और भादो दोनों आ जाते हैं, जरा अनुमान लगा कर बताइए भाई, हमारे श्रोता, हमारे प्यारे श्रोता तो बहुत अच्छे से अंदाज लगा सकते हैं। जी आशु मिश्रा जी, आप सुनते हैं हमको, प्रणाम चरण स्पर्श करते हैं आपको, और कैसे हैं आप, तो ऐसी कौन सी भाई जरा गेस कीजिए। सावन और भादो ये दोनों एक साथ कहाँ पर हो सकते हैं? जी हाँ, यहाँ पर हो सकते हैं। आपको सुनाते हैं प्यारा सा नगमा जो सावन और भादो दोनों में है, और वो दोनों इंसान की आंखों में होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। जी हाँ, फिल्म का नाम महबूबा, मेरे नैना सावन भादो। आपको ले चलते हैं किशोर कुमार जी की दुनिया में पुनः एक बार, और ये प्यारा सा गीत कर रहा है आपकी प्रतीक्षा। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा फिल्म महबूबा का आप सभी के लिए, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, बहुत ही प्यारा सा गीत।
1: गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

जी हाँ, वो घड़ी आ गई आ गई। अब गीत बजेंगे, लेकिन वो गीत बजेंगे जो चाहेंगे आप। अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में। पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियां जगती हैं अब कैसे भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोस्ट ले लटके हैं चौखट पर।

गीता श्रीवास्तव जी उपस्थित है, चरण स्पर्श करते हैं। बहन जी आपको कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। महेंद्र दीपेंद्र जी राजस्थान से जी आपका भी प्रणाम करते हैं, आपको भी। इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ हैं जी, हाँ आदाब आपको जी। अब गीतों का बजना होता है प्रारंभ, तो पहली फरमाइश हमारे पास आई है। हम एक फरमाइश चैट बॉक्स से लेंगे, एक फरमाइश फ़ोन से लेंगे। तो आप ये मत देखिएगा कि हाँ मेरा पहले नंबर पर था फिर दूसरे नंबर पर किसी और का बजा। एक फरमाइश फ़ोन से, एक फरमाइश चैट बॉक्स से। तो जी हाँ, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ। और पहली फरमाइश हमारे पास है महेंद्र दीपेंद्र जी की, जो हमको सुनते हैं राजस्थान से। आइए आपकी फरमाइश को करते हैं पूरा। जी हाँ, और ये गीत बहुत प्यारा भेजा है, देखते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ भाई, महन जी के गीत अक्सर सामान्यतया शानदार होते हैं, और आज देखते हैं कौन सा गीत है जी। जब आह, क्या गीत चुना है आपने।

जी हाँ भाई, और अगली फरमाइश हमारे पास अनु जी की है बेलसर से, आजा कन्हैया ट्विटर पर।

जी हाँ भाई, कुछ मॉडर्न लोग ऐसे हैं जो कन्हैया जी को ट्विटर पर बुला रहे हैं। और वास्तव में अब भाई भादों की अष्टमी भी नज़दीक है। चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, हमारी बहन जी सुनती हैं और उनका गीत है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। बहुत ही प्यारा सा गीत ये, आशु जी की फरमाइश पर।

0: तेरा साथ है।
1: जी हाँ बिल्कुल, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अब चलते हैं भाई सोनिया तिवारी जी की तरफ, और बहुत ही प्यारी सी फरमाइश। फिल्म का नाम शादी में जरूर आना का बहुत ही प्यारा सा गीत ये सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर।

चलते हैं अपने एक ऐसे श्रोता की ओर जो बहुत ही चुनिंदा गीत भेजते हैं श्री आनंद जी, और आज गीत भेजा है आपने, जब तक हमने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। बहुत ही प्यारा और मर्मस्पर्शी गीत, जिंदगी की हकीकत को बयां करता हुआ।

बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नगमा। अब चलते हैं भाई अपने इम्तियाज जी की तरफ। मेरे बहुत ही प्यारे से श्रोता हैं और जब भी गीत लेकर आते हैं तो एकदम नया गीत लेकर आते हैं। आज भी उम्मीद है नया गीत होगा, रंगीला मारो घाघरो। जी हाँ, आइए सुनते हैं रंगीला मारो घाघरो इम्तियाज जी की फरमाइश पर।

यहाँ रंगीलो मारो घाघरो के बाद चलते हैं जुग्गू भाई की फरमाइश पर और गीत भेजा इन्होंने दुश्मन दुश्मन जो दोस्तों से प्यारा है, बहुत ही प्यारा सा गीत है जुग्गू भाई की फरमाइश पर।

जी हाँ, क्या देखा? और ऐसा दोस्त देखा जो पहले दुश्मन था। अब चलते हैं भाई, श्री राम नरेश की जी की फरमाइश है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, फिल्म का नाम अवतार, बहुत ही प्यारा सा गीत ये, श्री राम नरेश जी की फरमाइश पर।

जी हाँ, दिल की नैया है और इसके पश्चात भाई हमारे पास शमा जी हैं लखनऊ से, और गीत उन्होंने भेजा है तू मिला दे मिला दे मिला दे मेरे महबूब से तू मिला दे। बहुत ही प्यासा गीत ये, पर्दे पर है सलमान खान और आवाज़ है सोनू निगम की। जी हाँ, आइए

जी हाँ, और अब बढ़ते हैं अपने बहुत ही प्यारे और जानकार श्रोता की तरफ। जी हाँ, नाम है उनका श्री राजेश सिंह। बहुत ही मासूम इंसान है, लेकिन फिलहाल दिल में आग लगी हुई है। दिल में आग लगाए, और वो भी कब? सावन का महीना बीत चुका है, भादो आया है, और तब ये आग लगी है। तो दिल में आग लगाए, सावन का महीना, श्री राजेश सिंह जी, मालवीय नगरी।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब बढ़ते हैं भाई सबलू जी की तरफ। बाली उम्र को सलाम, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। जी हाँ, लता जी का बहुत ही प्यारा गीत ये सबलू जी की फरमाइश पर।

जी हाँ भाई, बालीउमर को सलाम। और अब चलते हैं भाई, हमारे साथ पूर्णिमा जी जुड़ी हुई हैं और उनकी फरमाइश है बहुत ही प्यारी सी, ये इश्क बड़ा बेदर्दी है। अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा गीत।

0: भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री

0: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
2: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
3: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास है। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा MSME की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186

लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वही 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता है। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यहाँ चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है, ये बहुत ही प्यारा सा भजन। और अब भाई चलते हैं अपनी फरमाइश को आगे बढ़ाते हैं और फरमाइश पूरी करते हैं शशि सिंह जी की, वर्षों पुराना ये याराना। जी हाँ, श्रीमती शशि सिंह जी की फरमाइश पर, वर्षों पुराना ये याराना।

जी हाँ, जैसे मेरा अदब उठा, बहुत ही प्यारा सा गीत हम इंजॉय कर रहे थे श्रीमती शशि सिंह जी की फरमाइश पर, वास्तव में बहुत ही प्यारा सा गीत ये। और अब चलते हैं, राजू सलमानी जी की फरमाइश है और उनकी फरमाइश है, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी।

जी हाँ, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी और अब चलते हैं भाई। देखने के पश्चात तब देखा और इस कदर देखा कि मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। जी हाँ, राजू जी हमको सुनते हैं सीतापुर से, वो फरमाइश है मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। आइए सुनाते हैं ये प्यारी सी फरमाइश।

जी हाँ, मुंडा गोरा रंग देखेगा तो दीवाना हो ही जाएगा। जी हाँ, और इसी बीच भाई नेपाल में जो कुछ भी हुआ, हमारे निब्बर भाई श्रोता हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए निब्बर जी की फरमाइश पर ये नगमा है, अल्लाह रहम करना। जी हाँ, मौला तो रहम करना, और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी दुआएं, अपनी प्रार्थनाएं तो ऊपर वाले तक भेज ही सकते हैं।

0: क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ?
1: पापू, तुम आ गए पापू?
2: बापू।
0: मुन्नी, देख मैं तेरे लिए गुड़िया लाया।
1: गुड़िया? बापू, करीमन आपा बड़ी अच्छी बातें सुनाती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, ईमान के रास्ते पर चलना चाहिए।
0: ईमान? ईमान क्या होता है आपा?

जी हाँ, अल्लाह रहम करना, मौला तो करम करना, बहुत ही संवेदना वाला ये गीत हम सभी ने सुना। आप चलते हैं जी रेणु जी की तरफ और उनकी फरमाइश है। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, फिल्म का नाम दिल वाले, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना, और इसके पश्चात चलते हैं। नाज़िया अंसारी जी की फरमाइश है, ज़रा पर्दा हटा दूँ। बहुत ही प्यारा सा गीत ये नाज़िया अंसारी जी का, ज़रा पर्दा हटा दो। क्या बात है, बिल्कुल भाई, पर्दा हट चुका है और गीत आ रहा है।

जी हाँ, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा हटा दो, बहुत ही प्यारा सा गीत ये हमने सुना। अब चलते हैं भाई, अगली फरमाइश हमारे पास है कार्तिक कश्यप जी की, सन सनानंद साए साए। जी हाँ, तो पूरी करते हैं ये फरमाइश।

0: नफरत की हमारे शहर में लग न जाए आग, नफरत की हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286 9976 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा,
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। जब आते हैं तो किसी शायर को लेकर आते हैं, किसी कवि को लेकर आते हैं, बात करते हैं उनकी, और हमारे हिसाब से वो नींव की ईंट हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी होता है। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम है अहमद फराज। उन्होंने लिखा कि उसको जुदा हुए भी जमाना बहुत हुआ, उसको जुदा हुए भी जमाना बहुत हुआ, अब क्या कहें ये किस्सा पुराना बहुत हुआ। ढलती न थी किसी भी जतन से शबे फिराक, ऐ मर के जाग तेरा आना बहुत हुआ। मतलब मर गे ना गहाम का मतलब होता है कि अचानक किसी की सडन डेथ हो जाए, अचानक से हो जाए। हम खुल्द से निकल तो गए हैं पर ए खुदा, खुल्द कहते हैं स्वर्ग को, हेवन को। हम खुल्द से निकल गए हैं, हम खुल्द से निकल तो गए हैं पर ए खुदा, इतने से वाकिए का फसाना बहुत हुआ। अब हम हैं और सारे जमाने की दुश्मनी, अब हम हैं और सारे जमाने की दुश्मनी, उससे जरा सा रब्त बढ़ाना बहुत हुआ। रब्त मतलब रिश्ता। अब क्यों ना जिंदगी पे मोहब्बत को वार दें, अब क्यों ना जिंदगी पे मोहब्बत को वार दें, इस आशिकी में जान से जाना बहुत हुआ। अब तक तो दिल का दिल से तारुफ न हो सका मुलाकात, अब तक तो दिल का दिल से तारुफ न हो सका, माना कि उससे मिलना मिलाना बहुत हुआ। क्या क्या न हम खराब हुए हैं मगर है दिल, क्या क्या न हम खराब हुए हैं मगर है दिल, ए याद ए यार तेरा ठिकाना बहुत हुआ। लो फिर तेरे लबों पे उसी बेवफा का जिक्र, लो फिर तेरे लबों पे उसी बेवफा का जिक्र, अहमद फराज तुझसे कहा ना बहुत हुआ। जी हाँ, तो अहमद फराज की बात लेकर आज आपके पास आए हैं। हमारे साथ सोनिया जी हैं, गुड नाइट। अरे अरे अरे अरे, अभी आए अभी बैठे, अभी दामन संभाला है तुम्हारी, जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। ये गुड नाइट कहने का अधिकार भाई हम अपने अपने श्रोताओं से रखा है। हमारे साथ रावण राज उपस्थित हैं भाई, चलिए नमस्कार। मनु सर जी आपको भी नमस्कार, और बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, अब चलते हैं भाई गजलों की दुनिया में, और आज शुरुआत करते हैं बहुत ही पुरानी और प्यारी सी गजल से। जी हाँ, हो सकता है आपने ये गजल सुनी हो, हो सकता है ये गजल पहली बार सुन रहे हो। सुनिए और सुनकर बताइए कि ये गजल आपको कैसी।

जी हाँ, ये लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयाल में का नया वर्जन है। अब आपको सुनाते हैं इसका पुराना वाला और ओरिजिनल वर्जन जो गाया है मोहम्मद रफी कायाती गले के मालिक। आइए अब आपको वो वर्जन सुनाते हैं।

0: राशि प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: कोलकाता वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को।
0: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी

0: मॉनसून धमाका ऑफर, हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन, वंदन, नमन और स्वागत। जी हाँ, हमारे साथ अनूप मिश्रा जी। हाँ, सो चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी। और वैसे भी आज आपका जन्मदिवस है और पार्टी आपने नहीं दी है, मतलब अब तो ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी हमको, क्योंकि मतलब पिछले कई वर्षों से आप इस पर्व को हमारे साथ नहीं मना रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे इस वर्ष आप मनाएंगे। बहुत बहुत जन्मदिवस की शुभकामनाएं आपको अनूप जी, और ईश्वर आपको हर क्षेत्र में कामयाब करे। हमारे साथ अरविंद जी हैं मनकापुर से जी, और सविता शास्त्री जी हैं जी, चरण स्पर्श करते हैं आपको। और आइए अब सुनाते हैं आपको, सनी पांडे जी हमारे साथ हैं। मनुषा गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल, और हो सकता है ये गज़ल आपने इसके पहले सुनी हो या हो सकता है न सुनी हो, लेकिन अगर दिल को छू जाएगी तो ज़रा एक बार बताइएगा कि ये नगमा आपको कैसा लगा।

0: माने, प्लीज माने।
1: कहाँ आएंगे कि नहीं?

0: जी हाँ, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, और तुरंत उत्तर मिला हमको डैडी फिल्म की बहुत ही खूबसूरत गजल। क्या जानकारी है भाई श्रीमती सविता जी को, बहुत ये जानकारी बहुत कम लोगों को थी और आपको थी भाई, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जी। बढ़ते हैं अहमद फराज की तरफ, उन्होंने कहा कि जब तेरी याद के जुगनू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख से आंसू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके, सख्त तारीख है दिल की दुनिया, तारीख मतलब अंधे अंधकार, सख्त तारीख है दिल की दुनिया, ऐसे आलम में अगर तू चमके। हमने देखा सरे बाजार वफा, हमने देखा सरे बाजार वफा, कभी मोती कभी आंसू चमके, आंख मजबूर तमाशा है फराज, आंख मजबूर तमाशा है फराज, एक सूरत है कि हर सू चमके। सू मतलब चारों ओर हर दिशाओं में, और कभी कभी ऐसा होता भी है, आपने कभी महसूस किया होगा कि एक ही सूरत होती है जो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ती है, और ये लगता है कि ये मोहब्बत का असर है, ये प्यार का असर है, और इस असर में हम सभी कहीं ना कहीं वावस्ता हैं, कहीं ना कहीं रूबरू हैं, जानते हैं इन चीज़ों को। और किसी शायर ने कहा था कि हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं किया अपनी लाइफ में, तो शायद एक स्वर्णिम लम्हा आपने अपने जीवन का खो दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं भाई, बहुत प्यारी सी आवाज़ में, अभी तक गुलाम अली साहब की आवाज़ नहीं सुनी आपने, अब आइए आपको ले चलते हैं गुलाम अली साहब की तरफ और सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल।
1: पंद्रह सौ

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर 9:30 पर आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और प्रयत्न कीजिए कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार श्रोतागण, मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेट नाइट हॉरर शो। रात जितनी गहरी होती है, कहानियां भी उतनी सच्ची लगने लगती है। कुछ कहानियां डराती नहीं, बस धीरे धीरे आपके भीतर उतर जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। कश्मीर, जहाँ लोग कहते हैं कि हर चिनार का पेड़, हर झील, हर पहाड़ अपने भीतर किसी न किसी की याद संभाले बैठा है। लेकिन अगर किसी की याद वहीं रह जाए और इंसान लौट आए तो क्या होता है? आज की कहानी है चिनार गवाह है। आइए सफर शुरू करते हैं। पहाड़ी पर एक टैक्सी चल रही है। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है जो शीशे से टकरा रही है और दूर कहीं कोई नदी बहने की आवाज आ रही है। ड्राइवर लगभग मध्यम आयु का है और अचानक ही बहुत सहज आवाज में कहता है, साहब बस 10 मिनट और आपका गांव आ जाएगा। आरव करीब 38 वर्ष का शांत लेकिन भीतर से थका हुआ इंसान है। वो कुछ नहीं बोलता। ड्राइवर ने फिर पूछा, पहली बार आ रहे हैं इधर? आरव ने कहा, नहीं, बहुत साल पहले आया था। अच्छा, तो साहब आप इस रास्ते को तो पहचानते होंगे? आरव ने कहा, रास्ते शायद बदल जाती है पर यादें नहीं। कुछ क्षण मौन रहता है, फिर ड्राइवर धीरे से कहता है, सही कहा आपने, यहाँ लोग कहते हैं पहाड़ सब याद रखता है। टैक्सी एक छोटे से गांव में रुकती है। इंजन बंद होता है। दूर से बच्चों की आवाजें आती है। कहीं लकड़ी काटने की धीमी ठक ठक आवाज भी आ रही है। हवा में घंटियों की बहुत हल्की हल्की झंकार सुनाई देती है। ड्राइवर ने कहा, लीजिए साहब आपका दरांग आ गया। आरव धीरे धीरे उतरता है, सूटकेस जमीन पे रखता है और कुछ पल वहीं खड़ा रहता है। 15 साल एक इंसान को बदलने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन कुछ जगह समय से समझौता नहीं करती। सामने वही पहाड़, वही नदी और गांव के किनारे खड़ा एक विशाल चिनार का पेड़। आरव की नजर उसी पर ठहर जाती है। उसकी सांस एक पल को जैसे रुक जाती है। हवा अचानक तेज हो जाती है और चिनार के सूखे पत्ते गिरने लगते हैं। आरव धीरे धीरे चिनार से ही बात करने लगता है। नदी के उस पार चिनार के पेड़, तुम अब भी यही हो? तभी पीछे से किसी के कदम की आवाज आती है। एक 70 वर्ष के बुजुर्ग अत्यंत स्नेहिल आवाज में कहते हैं, आरव। आरव चौंकता है, अरे यूसुफ चाचा। यूसुफ चाचा हंसते हुए कहते हैं, पहचाना तो सही, मुझे लगा था अब शहर में रहते हो तो हम गांव वालों को कहाँ पहचानोगे। आरव ने बोला, यूसुफ चाचा आप तो बिल्कुल नहीं बदले। यूसुफ ने कहा, अरे उम्र बदल देती है बेटा, मगर कुछ इंतजार कभी नहीं बदलते। दोनों धीरे धीरे कच्ची पगडंडी पर चलने लगते हैं। यूसुफ ने पूछा, शहर में कैसे हो? आरव ने कहा, मत पूछिए चाचा, काम बस काम। और दिल? आरव धीरे से कहता है, दिल तो चाचा यहीं कहीं छूट गया था। यूसुफ चाचा उसकी ओर देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कहते। कभी कभी सबसे बड़े सवाल चुप्पी पूछती है। यूसुफ ने कहा, घर खुलवा दिया है, साफ भी करवा दिया, कोई दिक्कत हो तो बता देना। आरव ने बोला, धन्यवाद चाचा। कमरे में हल्की सी नमी थी
पुरानी लकड़ी, पुरानी किताबें और खिड़की से दिखता नदी के उस पार वही चिनार। आरव मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। कमरे में बिल्कुल अकेलापन है। मेज पे रखा एक बैग है जिसको आरव खोलने की कोशिश करता है और तभी उसमें से एक पुरानी डायरी नीचे गिरती है। आरव उसे उठाता है, कुछ पल बस उसे देखता रहता है जैसे उसे खोलने से कोई पुराना दरवाजा भी खुल जाए। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर कभी लौटो तो चिनार के पास नदी के उस पार जरूर जाना। नीचे कोई नाम नहीं था लेकिन आरव का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत डायरी बंद कर लिया। अचानक बाहर की हवा और तेज हो जाती है और खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो जाती है। आरव चौंक कर खिड़की की ओर देखता है। बाहर चिनार के नीचे उसे एक आकृति खड़ी दिखाई देती है, सफेद फिरन पहने, स्थिर, बिल्कुल बिना हिले। आरव एक कदम आगे बढ़ता है, धीमे से पूछता है, कौन? अगले ही पल हवा फिर से चलती है, पत्तों का एक घना गुबार उठता है और जब साफ होता है वहाँ कोई नहीं था। आरव की सांसें तेज हो जाती है। क्या उसने सचमुच किसी को देखा था या 15 साल पुरानी कोई याद आज पहली बार उसका इंतजार पूरा कर रही थी? श्रोतागण, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: प्यारे श्रोतागण, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो का अपना प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो। श्रोतागण, कभी कभी डर उस चीज से नहीं लगता जो हमारे सामने खड़ी होती है, डर उस चीज से लगता है जो हमारे भीतर बरसों से चुपचाप खड़ी रहती है। आइए लौटते हैं आरव की उस रात में, जिसने अभी अभी उसकी पुरानी यादों का दरवाजा खटखटाया है। रात गहरी हो चुकी है, घड़ी में टिक टिक टिक टिक की आवाज आ रही है, बाहर हवा लगातार बह रही है। आरव कई मिनट तक खिड़की के पास खड़ा रहता है। वो बार बार उसी जगह को देखता है जहां कुछ क्षण पहले उसने सफेद फिरन में किसी लड़की को देखा था। अब वहां सिर्फ चिनार था और उसके नीचे गिरे हुए पत्तों की मोटी परत दूर से दिखाई दे रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। आरव ने कहा, हेलो। निशा ने उस तरफ से पूछा, पहुंच गए? आरव ने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ निशा, अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ। निशा ने कहा, कैसा लग रहा है इतने साल बाद उसी गांव में वापस आना? आसान तो नहीं होगा। आरव कहता है, कुछ जगह बिल्कुल नहीं बदलती और शायद यही सबसे मुश्किल बात है। निशा फिर पूछती है, आरव क्या तुमको यकीन है तुम्हें यहाँ आना चाहिए था? आरव कहता है, निशा अगर इस बार भी नहीं आता तो शायद कभी नहीं आ पाता और जिंदगी भर तड़पता रहता, जिंदगी भर पछताता रहता। कुछ पल दोनों चुप रहे, जैसे दोनों एक ही नाम लेने से बच रहे हों। निशा ने फिर धीरे से कहा, आरव अगर कुछ भी अजीब लगे तो प्लीज वापस लौट आना, सिर्फ एक अधूरी बात के लिए, पूरी जिंदगी के लिए रुक मत जाना। आरव बहुत धीरे से जवाब देता है, कुछ बातें पूरी जिंदगी रोक देती है निशा। कॉल समाप्त होता है, कमरे में फिर वही सन्नाटा। आरव ने फोन बंद कर दिया। उसकी नजर फिर उसी डायरी पर चली गई। इस बार उसने डायरी खोला, पहले कई पन्ने बिल्कुल खाली थे और फिर एक तारीख लिखी थी, 18 अक्टूबर। बस साल नहीं लिखा था, उसके नीचे कुछ पंक्तियां थी, आज फिर हम चिनार के पास बैठे। उसने कहा, अगर कभी मैं तुमसे पहले चली गई तो मुझे ढूंढते मत आना, मैं यहीं रह जाऊंगी। आरव ने पन्ना बंद कर दिया, उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर सूखे पत्ते पर किसी के कदम पड़ने की आवाज आने लगी। आरव ने सांस रोक लिया, कदम धीरे धीरे खिड़की के पास नीचे आकर रुक जाते हैं। फिर बहुत धीमी आवाज, जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा होकर सिर्फ एक शब्द कह रहा है, आरव आरव आरव। आरव झटके से खिड़की खोल देता है। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ चिनार के पत्ते जो हवा में गोल गोल घूम रहे थे। अचानक उसकी नजर नीचे गई, नीचे गीली मिट्टी पर जूते के निशान थे, एक जोड़ी जो सीधे खिड़की तक आए थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। आरव कुछ देर उन निशानों को देखता रहा, फिर धीरे धीरे बाहर आया। रात हो चुकी थी, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो चिनार की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी हो रही थी। नदी के पास पहुँच करके वो रुक गया। वहीं जहाँ वो कभी घंटों बैठा रहता था, वो चिनार का पेड़ आज भी नदी के उस पार उसको बुला रहा था। उसी समय पीछे से किसी ने पुकारा, साहब। आरव मुड़ा। एक लगभग 12-13 साल का लड़का हाथ में लांटेन लिए खड़ा था। लड़के ने पूछा, आप पुराने वाले घर में ठहरे हैं ना? आरव ने कहा, हाँ, क्यों? लड़का बोला, दादाजी ने कहा है रात को इस नदी के पास ज्यादा देर मत रुकिएगा। आरव ने मुस्कुरा के पूछा, क्यों, यहाँ क्या है? लड़का कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, यहाँ कुछ नहीं है, मगर जो लोग कुछ देर तक खड़े रहते हैं उन्हें लगता है कि कोई उन्हें याद कर रहा है। ये कह के लड़का मुड़ा और अंधेरे में धीरे धीरे चला गया। आरव वहीं खड़ा उस विशाल चिनार को देखने लगा। हवा अब बिल्कुल थम चुकी थी। इतनी ज्यादा शांति कि अपनी धड़कने भी सुनाई दे। और तभी उसने देखा कि पेड़ के तने पर बहुत पुरानी धुंधली सी नक्काशी थी। शायद वो दो नाम जो उन्होंने उस पे लिखे थे वो अब भी थे, लेकिन दूर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव के होंठ कांपने लगे। उसने उस नाम को छूना चाहा, लेकिन उसी क्षण किसी ने बहुत धीरे से कहा, आरव, इतनी देर लगा दी लौटने में। अचानक हवा फिर से तेज हो जाती है। चिनार के सैकड़ों पत्ते एक साथ उड़ते हैं और फिर पूरा अंधेरा। प्यारे दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: प्यारे श्रोतागण, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो में अपना प्रोग्राम लेट नाइट हॉरर शो, और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। प्यारे दोस्तों, कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं ले जाते, वे हमें हमारे अपने सच तक ले जाते हैं। आज आरब भी ऐसे ही एक रास्ते पे है, जहाँ लौटना शायद वापस आना नहीं, बल्कि अपने आप से मिलना है। धीरे धीरे सुबह हो रही है, आकाश अभी पूरी तरह खुला नहीं था। पहाड़ की चोटियों पर धुंध ऐसे ठहरी थी मानो रात अभी जाने को तैयार नहीं है। आरव धीरे धीरे चिनार के उस पार जाने वाले पुराने रास्ते पर चल रहा था। उसके पीछे यूसुफ चाचा बहुत दूर तक आए, फिर वहीं रुक गए। उन्होंने कहा, आरव, अगर वहाँ कुछ मिले तो उससे सवाल मत पूछना, बस सुनना। कभी कभी जवाब बोलने वाले के पास नहीं, सुनने वाले के पास होते हैं। आरव ने हल्के से सर झुकाया और आगे बढ़ गया। हर कदम जैसे 15 साल पीछे लौट रहा था। उसे याद आया, मीरा इसी पुल पर हमेशा रुक जाती थी। उसकी याद करके वो धीरे से हंसा। मीरा कहती थी, आरव, अगर ये पुल टूट गया तो? आरव कहता था, तो मैं पहले गिरूंगा मीरा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। मीरा हंसते हुए कहती थी, झूठे, तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है। आरव पुल के बीचों बीच रुक गया। उसने रेलिंग को छुआ, उसी जगह जहां कभी मीरा ने चाकू की नोक से 2 अक्षर उकेरे थे, आ और माँ। समय ने उन्हें लगभग मिटा दिया था, लेकिन उंगलियां अब भी उसे पहचान रही थी। पुल पार करते ही जंगल खुल गया।

बीच में एक छोटा सा घास का मैदान और उसके केंद्र में था एक विशाल चिनार का पेड़। उम्र शायद 100 साल से भी ज्यादा होगी, लेकिन आज पहली बार आरव को लगा जैसे ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, एक गवाह है। इतनी खामोशी कि नदी की हर लहर अलग अलग सुनाई दे रही थी। आरव धीरे से पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपने हाथ तने पर रखा। लकड़ी बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक के भीतर एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, बहुत हल्की, मानो पेड़ सांस ले रहा हो। वो घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कर ली। आरव ने टूटती हुई आवाज में कहा, मीरा, अगर तुम कहीं भी हो तो आज पहली बार मैं सच बोलने आया हूँ। आरव ने कहा, सबको लगता है मैं शहर इसलिए चला गया था क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई थी और इसीलिए मैं कभी वापस नहीं आया, लेकिन सच और कुछ था। मैं डर गया था, तुम शादी करना चाहती थी और मैं जिम्मेदारी से भाग रहा था। मैंने कहा बस 1 साल फिर लौट आऊंगा, पर साल बीतते चले गए और मैं काम में उलझता चला गया। मैंने फिर एक भी खत नहीं लिखा, एक भी फोन नहीं किया, क्योंकि हर दिन मुझे लगता था अगर मैं लौटूंगा तो तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत देखूंगा। आरव की आवाज भरा गई। और फिर मीरा, एक दिन वो दर्द भरी खबर आई कि तुम नहीं रही। उस दिन से मैंने हर रात अपने आप को यही सजा दी कि अगर मैं वहाँ गया होता तो शायद तुम जिंदा होती। आरव ने सिर झुका लिया, उसके आंसू गीली मिट्टी पर गिर रहे थे। तभी बहुत हल्की सी पायल की आवाज आई। आरव की सांसें रुक गई, उसने सिर उठाया। सामने कुछ नहीं था, लेकिन पेड़ की दूसरी ओर बहुत दूर सफेद फेरन का एक कोना हवा में लहराकर ओझल हो गया। आरव बिना सोचे उस ओर दौड़ा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घास पे रखी एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया, बिल्कुल पुरानी थी, उसके किनारे घिसे हुए थे। वो झुककर उसको उठाता है, धीरे धीरे खोलता है। अंदर एक सूखा नीला जंगली फूल रखा था, उसके नीचे मुड़ा हुआ एक कागज, इतना पुराना कि छूते ही टूटने लगे। आरव कांपते हाथों से उसे खोलता है, पहचानते ही उसकी सांसें अटक जाती है। वो मीरा की लिखावट थी, लेकिन ये डायरी का पन्ना नहीं था, ये वो खत था जो शायद कभी उसने भेजा ही नहीं। आरव ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मीरा ने लिखा था, आरव, अगर ये खत कभी तुम्हें मिले तो इसका मतलब तुम लौट आए। मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की। शिकायत इंतजार से बहुत छोटी होती है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया। लोग कहते हैं तुम मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, तुम खुद से भागे हो। आरव की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे। पत्र की आखिरी पंक्ति तक पहुँचते ही पहले उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि एक एहसास हो चुका था कि 15 वर्षों से वो जिस सच से डर रहा था वो अब उसके सामने आने वाला है। श्रोतागण, जल्दी मिलेंगे इस कहानी के क्लाइमेक्स में, मगर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। आरव पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ने लगा। आरव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो एक बात अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल देना। मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, मैं तो तुम्हें विदा कर चुकी थी। मैं जानती थी तुम चले गए हो। मैं रोज नदी के किनारे इसलिए आती थी क्योंकि मुझे अकेले बैठकर रोना होता था। कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी को मुस्कुरा के विदा करना बहुत मुश्किल होता है। आरव के हाथ कांप उठे। उसने जल्दी जल्दी अगली पंक्तियां पढ़नी शुरू करी। मेरे साथ जो हुआ आरव, वो हादसा था। न तुम्हारी गलती न मेरी गलती, बस उस दिन पहाड़ ने मुझे रोक लिया। आरव की आंखें बंद हो गई। 15 वर्षों से जिस एक वाक को सुनने के लिए उसका मन तड़प रहा था, वो आज एक पुराने कागज से निकलकर उसके सामने खड़ा था। मीरा आगे लिखती है, आरव अगर तुम कभी लौटो तो मेरे लिए मत रोना। अपने लिए जीना और एक काम जरूर करना, उस चिनार के नीचे अपने अपराध बोध को छोड़ देना। मैं नहीं, वो पेड़ तुमको सबसे ज्यादा सताता रहेगा। पत्र समाप्त हो गया। आरव बहुत देर तक उसी जगह बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने पत्र को मोड़ा, सीने से लगाया और पहली बार फूट फूट के रो पड़ा। वो रोना सिर्फ मीरा के लिए नहीं था, उन 15 वर्षों के लिए भी था जो उसने पल पल अपने को सजा देते हुए बिताए थे। आरव ने कहा, मीरा मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया था, मैंने तो अपने आप को खोल दिया था। आरव ने धीरे धीरे सर उठाया। पेड़ के सामने कुछ क्षणों के लिए धूप और धुंध के बीच उसे एक आकृति फिर से दिखाई दी। सफेद फिरन, खुले बाल, चेहरे पर वैसे ही शांत मुस्कान जिसे वो 15 साल से भूल नहीं पाया था। उस आकृति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे किसी ने किसी को आखिरकार माफ कर दिया हो। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण बादलों के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली। प्रकाश चिनार की शाखाओं से होकर गुजरा और वो आकृति धीरे धीरे रोशनी में खुल गई। आरव मुस्कुराया। परसों बाद उसकी मुस्कुराहट में दर्द नहीं था। वो लौटने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने पीछे से मीरा की वही खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस धीरे से कहा, अलविदा नहीं मीरा, धन्यवाद। जब वो पुल पार करके वापस आया, यूसुफ चाचा वहीं बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ आरव की आंखों में देखा। वहाँ बरसों बाद शांति थी। यूसुफ ने मुस्कुरा के पूछा, मिल आए? आरव ने कुछ पल लगाए, फिर कहा, चाचा मीरा से भी मिलाया और खुद से भी। यूसुफ की आंखें भीग गई और उन्होंने धीरे से कहा, तभी तो आज पहली बार इतने सालों के बाद इस पेड़ की हवा हल्की लग रही है। दोनों के कदम गांव की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद आरव अचानक रुक गया। उसने पूछा, चाचा वो पत्र आपने वहाँ रखा था? यूसुफ चाचा ने हैरानी से पूछा, कौन सा पत्र? जो लकड़ी की डिब्बिया में था, मीरा का। यूसुफ चाचा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा उसमें उसकी कोई चिट्ठी मुझे कभी मिली ही नहीं। हमने तो बहुत ढूंढा, आरव कुछ नहीं बोल पाया। उसने जेब में हाथ डाला पत्र निकालने के लिए, लेकिन जेब खाली था। वो घबरा कर दूसरी तरफ जेब टटोलने लगा। फिर उसने बैग देखा, कुछ नहीं, पत्र गायब था। दोनों बिना कुछ कहे धीरे धीरे मुड़े। दूर का वही विशाल पेड़ सुबह की धूप में एकदम शांत खड़ा था। उसकी सबसे निचली शाखा पे एक सूखा हुआ नीला जंगली फूल हवा में झूल रहा था और एक स्त्री की हंसने की आवाज आ रही थी। प्यारे श्रोता कर्ण, कश्मीर में दरांग जैसा कोई गांव है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हर इंसान के भीतर एक चिनार जरूर होता है। एक ऐसी जगह जहां वो अपने अधूरे शब्द, अपनी भूलें, अपने अपराध बोध सालों तक छिपा कर रखता है। कभी अगर हिम्मत हो तो उससे जरूर मिलिएगा। हो सकता वो आपको आपकी आत्मा से मिला दे और तभी शायद आप अपने आप को माफ कर सके। और फिर इस कहानी का एक प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। जिस पत्र को आरव ने पढ़ा, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, अगर वो सचमुच था तो वापस कहाँ गया? और अगर वो नहीं था तो आरव ने क्या पढ़ा? मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम पर लेट नाइट हॉरर शो। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर कभी किसी पुराने चिनार, बरगद या पीपल के पेड़ के पास हवा अचानक थम जाए तो एक पल के लिए चुप रहिएगा। कभी कभी खामोशी भी बहुत सारी कहानियाँ सुना देती है। शुभ रात्रि।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। यस ऑफ कोर्स, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आप ये खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए। धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक्स को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाय उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाय ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाय की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाय भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाय को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती हैं। वे बॉलीवुड में प्लेक्स तो करती लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपरहिट से भी सुपरहिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया, जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था, जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका, जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का, रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही है। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है, जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कंट्रोवर्सीज क्यों ना हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा, पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद

जुड़ा होता था, वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है, 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाई की आवाज में। आइए सुनते हैं।

तो आज के सफर में अलीशा चनाई के इस प्यारे से बहुत से संगीत के सफर को हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसमें म्यूजिकल स्टाइल के साथ में कंटेंट स्टाइल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अवार्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, हर एक के बारे में हमने आपको बताया। कहते हैं कि प्लेबैक सिंगर का जो करियर होता है वो सिर्फ यूं ही कह देना आसान नहीं होता है। कई ऐसी चीजों के साथ में उन्हें सफर करना पड़ता है जो कि उनकी समझ से कभी कभी परे हो जाती हैं। लेकिन उनका जो भी करियर रहा, राइज इन हिंदी टॉप में यानी कि राइज इन इंडी पॉप से बनने का सफर उनके लिए बहुत ही प्यारा रहा। मैं मिलूंगी अब एक नए सफर में यानी कि फिर से एक नए सिंगर्स के साथ में। तब तक के लिए आपकी अपनी आज ख्वाहिश को दें इजाजत। शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

खून पसीना बिक जाता है, मौत और जीना बिक जाता है।